0: रीना मैम, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, प्रार्थना की, कि मेरे दिमाग में दो सवाल आए हैं। मैं इस बातचीत में पूरी एक साधारण सीधी सादी भोली भाली जनता को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो समझना चाहता है। तो
1: राइट राइट,
0: प्रश्न मेरा यह हुआ कि ठीक है, आपने बताया कि स्तुति और मंत्र पढ़ना और कोई क्रिया करना और ये सब करना और मन पवित्र करना, मतलब आपने फिर धर्म और आस्था के बीच और ये सॉरी धर्म और अध्यात्म के बीच के डिफरेंस और सिमिलैरिटीज एंड कनेक्शंस के बारे में भी बात की। बहुत सारे लोगों के लिए बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती
1: मुश्किल है।
0: तो एक सीधा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, इन सब चीजों को समझने के लिए क्या ध्यान लगाना एक रास्ता है मैम? नंबर वन, दिस इज पहला क्वेश्चन। अगर फर्ज कीजिए मैं ध्यान लगाने बैठ जाऊं और जैसा आपने गाइड किया कि पहले मैं कहूं कि ये शरीर मैं नहीं हूं, मतलब मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये बुद्धि नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, धीरे धीरे नेगेटिव माइनस करते गए, आपने बोला ना, हम डिलीट करते गए चीजों को और फिर हम अपने आत्मशुद्ध आत्मा तक पहुंचे
1: जी।
0: तो साधारण मनुष्य के लिए मैं ध्यान लगाने बैठूं और विचार करता चलूं कि मैं मेरा शरीर नहीं हूं, मैं मेरा मन नहीं हूं, तो क्या यही सही रास्ता है मैम? ये मेरा पहला प्रश्न हुआ।
1: ओके,
0: दूसरा प्रश्न ये है मैम कि ध्यान लगाते लगाते हम माइनस करते करते आत्म शुद्धि आत्मा तक पहुंच गए, फर्ज कीजिए। आपने कहा ना, आप ये सब करके व्यक्ति पवित्र हो जाता है। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि मुझे ये पवित्र की डेफिनेशन बताएं, ये पवित्र की परिभाषा क्या है, मतलब मैं पवित्र हो गया मतलब क्या, इसका मतलब मेरे मन में ऐसा क्या हो गया कि मैं पवित्र हो गया? सो ये दो सवाल है मेरे।
1: ओके, ध्यान लगाना जो है वो मोहब्बत होने वाली जैसी बात है
0: जी।
1: यानी आप ये सोच के नहीं बैठ सकते कि मैं अब ध्यान कर रहा हूं और आंखें मूंद के बैठ गए। मोस्ट ऑफ द टाइम तो लोग सो जाते हैं
0: जी,
1: ध्यान कुछ होता नहीं है उसमें। और ध्यान लगाने के लिए उसके पहले एक क्रिया है कि आपको थोड़ा बहुत अध्ययन किया हुआ होना चाहिए अपने बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में, तब आप उस पे विचार करोगे और तब जाके ध्यान लगेगा आपका, है ना
0: जी।
1: तो आम आदमी के लिए किसी सत्संग में जाना या किसी मंत्र का जप करना एक नियमानुसार, या पीरियोडिकली किसी मंदिर में जाके दर्शन कराना, इन सब चीजों से आस्था बढ़ती है उनकी और मन में एक शक्ति भी मिलती है कि ये जो कर्ता धर्ता ईश्वर हैं वो मेरी देखभाल कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, उसको दृढ़ बनाता जाता है ये सब प्रैक्टिसेस। तो ध्यान लगाना ही उत्तम है ऐसा नहीं है। ध्यान लगाने वाले लोग जो हैं वो दे आर ऑल

0: क्या कहें, मच लर्नेड जो ज्ञानी लोग होते हैं
1: जी,
0: वो ध्यान लगा सकते हैं आसानी से, और मतलब इस शारीरिक एग्जिस्टेंस से वो उस रेल्म में पहुंच सकते हैं जो कि आम आदमी के लिए मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर आप उस क्या कहते हैं, वो शब्द जो है बड़ा आकर्षक है कि हम ध्यान करते हैं, है ना, मेडिटेशन आजकल एक बड़ा स्टाइल स्टेटमेंट,
1: हाँ, बड़ा अट्रैक्टिव, बड़ा फैशनेबल है।
0: हाँ, तो उसमें गाइडेड मेडिटेशन नाम की चीज भी होती
1: है। जी हाँ, जी हाँ, वो भी बड़ा फैशनेबल है।
0: हाँ, तो वो जो आपकी मेंटल कसरत कराते हैं उसमें, है ना, तो दैट इज नॉट मेडिटेशन इन द ट्रू सेंस। ध्यान कैसा होता है कि आपको मोहब्बत कैसे होती
1: जी,
0: किसी को आपने देखा और कुछ तो आपको भा गया उसमें और बस आपको अच्छे लगने लगे, है ना। ऐसे ही ध्यान में जब आप आंख मूंद के बैठते हो तो इमीडिएटली ये सब जो हम ये नहीं है बोल रहे ना, नेति नेति, वो अपने आप माइनस हो जाएगा और अपने स्वरूप में आप फौरन स्थित हो जाओगे। इट्स अ वेरी क्या बोलते हैं उनको, इंस्टेंटली हो जाता है वो।
1: अच्छा,
0: कोशिश नहीं करनी पड़ती,
1: एट द स्पर ऑफ द मोमेंट।
0: हाँ,
1: ओके ओके। और दूसरा सवाल जो मैंने आपसे पूछा,
0: पवित्रता। हाँ, जी, पवित्रता जी। के माने हम मनुष्यों के लिए 6 शत्रु बताए गए हैं शास्त्र में
1: जी।
0: सबसे पहले तो डिजायर, कामना। ओके, अगर वो आपकी पूरी नहीं होती है तो आपको क्रोध आ सकता है, आएगा ही। और अगर कामना पूरी हो जाती है तो लोभ आता है कि ये मैं और करूं और करूं और करूं। जब लोभ आता है तो आप में एक तरह का प्राइड, मद बोलते हैं उसको
1: जी,
0: प्राइड आ जाता है। और अगर वो नहीं फुलफिल होता है आपका लोभ, तो आपको ईर्ष्या, मात्सर्य होने लगता है औरों से, जिनका हो रहा है और आपका नहीं हो रहा है
1: जी।
0: और अगर कामना पूरी नहीं हुई तो आपको क्रोध आएगा, और जब क्रोध आएगा तो आपको सही गलत में फर्क नजर आना
1: बंद
0: हो जाएगा
1: जी।
0: एंड देन इट विल बी योर डिस्ट्रक्शन एक्चुअली। तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मात्सर्य, इनको षटरिपु कहते हैं संस्कृत में, 6 दुश्मन हमारे
1: जी।
0: तो अरे ये सब क्या है, एक के बाद एक कनेक्टेड है। तो अगर हम कामना से दूर रहें तो इन सब से बच सकते हैं। और ऐसा नहीं है, लोग पूछते हैं, स्पेशली जो यंग लोग हैं वो पूछते हैं, सो व्हाट, वी शुड नॉट विश फॉर एनीथिंग।
1: करेक्ट,
0: ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जो आपके लिए जरूरी है, आपके जीने के लिए जो जरूरी है, उसकी कामना करना कोई गलत बात नहीं है
1: जी।
0: कि आपको अपने आत्म की प्राप्ति करनी है, ये भी गलत आशा नहीं है। लेकिन जो नीड और वांट में जो फर्क है ना, वो अगर आपको समझ आ जाए तो आप पवित्र रहोगे। क्योंकि ये सब भावनाएं जब आती हैं तो मन अपवित्र हो जाता है ना, क्योंकि आपको कैसे बनाया, आपको बिल्कुल साफ सुथरा बना के ईश्वर ने भेजा है
1: जी।
0: उसमें आप ये सब क्वालिटीज डालोगे तो अपवित्र होगा ही।
1: ओके मैम, आई एग्री विद योर पॉइंट। बात मुझे एक साधारण मनुष्य के दिमाग के हिसाब से 50% मैं कन्विंस हो पा रहा हूं। 50% अभी अभी आपने कुछ एग्जाम्पल्स दिए यंग जनरेशन की, क्या हम विश करना बंद कर दें वगैरह वगैरह, तो वहां पर भी आप कह रहे हैं कि नहीं, वैसा भी नहीं करना है। तो कई कई मौके आजकल की डेट में ऐसे किसी भी इंसान के साथ आ जाते हैं कि हम बिल्कुल सीधे सीधे चल रहे थे और किसी ने पीछे से हमारी गाड़ी में टक्कर मारी
0: जी।
1: और चलिए टक्कर तक तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि गाड़ी का इंश्योरेंस कराया हुआ है, ठीक करा लेना चाहिए। उसमें लड़ाई झगड़ा की क्या बात है, आफ्टर ऑल इंश्योरेंस कराया ही इसीलिए था। अब गाड़ी सड़क पे चलेगी तो ठुकेगी भी,
0: बिल्कुल।
1: लेकिन इससे आगे बढ़ गई है बात, गाड़ी ठुकी पीछे से ठुकी, मतलब गलती उसकी थी, वो फिर भी आके हमको गेट खोल के बाहर निकाल के मारना शुरू कर देता है
0: जी,
1: कि किस तरह से तू गाड़ी चला रहा था और तू कौन है और मैं बहुत बड़ा हूं। मैम वहां पर कहां रह जाती है पवित्रता मन की, मैंने कोई गलती की नहीं फिर भी मैं पिट रहा हूं। ऐसे अत्याचार में तो फिर भड़क पड़ता है, मन करता है गोली मार दे इसको। वहां पर पवित्र मन का क्या मतलब हुआ, पवित्र मन फिर वहां कैसे काम आएगा? मतलब हुआ ये कि मैं पिटता रहूं उससे पवित्र मन लेके?
0: नहीं नहीं नहीं, वहां पे क्या बोलते हैं, जो सही है वो करना चाहिए
1: जी,
0: और जो गलत है वो नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आपके किसी फॉल्ट के बिना आपके ऊपर वो बरस रहा है या मार रहा है, तो फिर आपका भी हक है कि आप उसको भी सही जवाब दें उसी तरह, नहीं तो उसको भी समझ में नहीं आएगा।
1: हाँ,
0: क्योंकि उसको वही भाषा समझ आती है, तो आपको भी उसको वैसे ही समझाना पड़ेगा।
1: ओके, क्योंकि रेज जो है ना मैम चारों तरफ बहुत बुरी तरीके से बढ़ रहा है। पीछे
0: और उसका भी आप मूल कारण देखिए क्या है।
1: जी जी,
0: व्हेन यू जीरो डाउन कि ये क्यों हुआ, उसके पीछे भी कोई डिजायर ही होगा। अब देखो
1: जी जी, डिजायर शायद ये होगा कि मैं अपने आप को उससे बड़ा साबित करूं।
0: हाँ, कुछ भी हो सकता है
1: जी,
0: फेम का डिजायर, पैसे का डिजायर,
1: पावर का डिजायर,
0: पदवी का डिजायर। हाँ।
1: जी जी जी, ठीक है। तो दोस्तों इस बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है, कहां पर और कितना हमें रिटेलिएट करना है या रिस्पॉन्सिव होना है। रिस्पॉन्सिव होना,
0: मतलब रिस्पॉन्सिव होना बेटर
1: है, मतलब
0: आपके लिए भी और अपोजिट पार्टी के लिए भी।
1: क्योंकि रिस्पॉन्सिबल शब्द को अगर हम तोड़े तो आता है रिस्पॉन्स एबल, मतलब हम रिस्पॉन्स देने लायक हैं।
0: बिल्कुल,
1: रिएक्ट और रिस्पॉन्सिबल में यही फर्क है।
0: हाँ, हाँ।
1: चलिए, वेल मीना मैम, आपने वेदांता भी पढ़ा, आपने कई कॉर्पोरेट्स में काम भी किया, संगीत से भी जुड़ी रही, बहुत आपने ज्ञान भी लिया और मेडिटेशन भी किया और बात को समझा भी।
0: हाँ जी।
1: लेकिन आप आज की दुनिया में हैं, कोऑर्डिनेट कर रही हैं आज की दुनिया से, और आज सोशल मीडिया का जबरदस्त बोलबाला है। अब हम आंख मूंद कर बैठ तो नहीं सकते मैम कि हमको सोशल मीडिया देखना ही नहीं है। तो सोशल मीडिया के बारे में बात करना चाहूंगा आपसे कि सोशल मीडिया का आध्यात्म पर या स्पिरिचुअलिटी पर, या चलिए एक बार को धर्म की बात भी कर लेते हैं, इन पर क्या असर हो रहा है सोशल मीडिया का?
0: सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत ही अच्छा माध्यम है अगर मुझसे पूछे
1: जी,
0: कि विश्व भर में आपके कोई भी कनेक्टेड दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोई भी हैं, उनसे आप पल भर में जुड़ सकते हो
1: जी।
0: पहला तो फायदा ये है। दूसरा, आपको जो अच्छी बात लोगों को बतानी होती है वो भी एक क्लिक करने से सबके पास पहुंच जाती है, है ना, और उसका ही वाइसे वर्स भी पॉसिबल है।
1: बिल्कुल,
0: तो उससे बच के रहना है। ये नहीं है कि हम उसमें बिल्कुल रहे ही ना या वो देखे ही ना, समझ में कैसे आएगा कि दुनिया किस तरफ जा रही है इफ यू डोंट सी। अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए ना, पहले कहां ये स्टार मेकर या कुछ और था जहां हम अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते थे, अब तो हो सकता है। पहले अनलेस एंड अंटिल किसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो ने आपको बुलाया नहीं, ऑडिशन नहीं लिया, तब तक कोई आपको सुन भी नहीं सकता था, पता भी नहीं चलता था। अभी तो यू कैन डू इट। जहां तक अच्छी बातों को फैलाने वाली बात है, सोशल मीडिया इज वेरी गुड। जहां लोगों के साथ कनेक्ट होने की बात है वहां भी अच्छी बात है, और जहां लोगों को सतर्क करने वाली बात है उसके लिए भी सोशल मीडिया बहुत अच्छा है
1: जी,
0: लेकिन उसका गलत इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा है। और दूसरा उसका एक एस्पेक्ट है कि बहुत अपने फोन में उसको अगर देखते रहें तो आपका नुकसान भी एक तरह होता है कि आपकी आंखों की जो रोशनी है उस पर बहुत बुरा असर होता है उसका
1: जी।
0: इसलिए जितना कम इस्तेमाल करें अच्छा है, सिर्फ अपने काम के लिए उसको यूज करें फिर उसको रख दें। अभी आजकल के अगर आप बच्चों को देखें तो सदा स्क्रीन में कुछ ना कुछ स्क्रॉल करते रहते हैं, देखते रहते हैं, पता नहीं क्या।
1: करेक्ट,
0: तो वो गलत बात है, वो नहीं होना चाहिए। और जब आप चार लोगों के बीच बैठे हो तो ये तो मतलब अशिष्ट व्यवहार है, मुझे पूछे
1: बिल्कुल सही कहा
0: कि सामने इंसान बैठा है आप उनसे बात करिए, ये क्या बात हुई उसमें झांक रहे हैं। घरों में भी होता है
1: जी,
0: माँ
1: जी।
0: बाप बच्चे बैठे हैं सब अपने अपने फोन में पता नहीं क्या देख रहे हैं।
1: आपने बिल्कुल,
0: आदतें हैं जो बिगड़ी हुई हैं उनको सुधारने में देर नहीं लगेगी, बस मन होना चाहिए कि अब नहीं करना है।
1: बहुत बहुत प्यारी बात कही आपने मैम, बहुत बहुत प्यारी बात कही। और इसको सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये कह रही हैं एक दूसरे एंगल से कि सोशल मीडिया एक दो धार की तलवार है।
0: हाँ।
1: दोनों तरफ इसकी एजेस हैं, अगर हमने इसको गलत चलाया
0: जी
1: तो हम कट जाएंगे।
0: हाँ।
1: सो वी नीड टू नो कि इसको हमें चलाना कैसे है, किस तरफ से इसको चलाना है।
0: हाँ।
1: और बस वो खतरनाक लाइन कब पार होती है बस वही पता नहीं चल पाता। तो दोस्तों टाइम एंड अगेन इस बारे में बार बार बात हो रही है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत प्यारा है लेकिन हमें सजग होना चाहिए कि कहीं ये हमारे सर पर ना चढ़ जाए।
0: हाँ,
1: चलिए
0: हावी नहीं हो जाए,
1: हावी ना हो जाए क्योंकि हमको गुलाम बनने की बहुत ज्यादा आदत है, फौरन नशे में डूब जाने की आदत हमें बहुत है
0: जी, जी।
1: तो इसलिए थोड़ा संभलिए। चलिए मीना मैम, मुझे ये बताइए, बहुत बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्म की, शुरू शुरू में भी आपने कहा था, प्रैक्टिस करते हैं। हमको चारों तरफ दिखाई देता है, हर फैमिली में कम से कम बुजुर्ग लोग तो हमें ये करते हुए दिखते ही हैं, फिर कुछ यंग लोग भी दिखाई देते हैं। स्पिरिचुअलिटी उनको लगता है बड़ी प्यारी चीज है और उससे हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी, हम शांति पा जाएंगे, स्ट्रेस हट जाएगा, फिजिकली भी हम अच्छे हो जाएंगे, लेकिन फिर वो फिर मॉडर्न दुनिया में उलझ जाते हैं, काम में स्ट्रेस लेने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा घर में परिवार में कलह सब कुछ शुरू हो जाता है।
0: यस,
1: तो आफ्टर ऑल कोई भी इंसान आध्यात्म की प्रैक्टिस कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाता, व्हाई?
0: अपनी चॉइस है ना
1: जी।
0: अभी मुझे देख लो, जब मैं बचपन से इसे जुड़ी हुई हूँ लेकिन फुल टाइम देने का वक्त मुझे तब नहीं मिला, कुछ पढ़ाई भी नहीं की, कुछ सीखा भी नहीं, कुछ भी नहीं। चार पांच श्लोक आते थे वही बोल दिया करते थे, रोज स्नान करके फिर स्कूल भाग जाते थे। लेकिन शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके भी सब 15 साल के हो गए, मेरी बड़ी वाली बेटी, तब जाके मैं इसके अध्ययन में लगी। और फिर ऐसे हुआ कि मतलब उन किताबों से मन हटता ही नहीं था, एक के बाद एक, एक के बाद एक मैं बस सीखती चली गई, सीखती चली गई, सीखती चली। वो तो ऐसा है कि आप जब तक पानी में उतरोगे नहीं तैरना सीखोगे नहीं
1: जी।
0: ऊपर ऊपर से देख के अच्छा लगता है ये तो ठीक है, लेकिन अनुभव करने की बात है, यू हैव टू वॉक द पाथ टू नो द पाथ, है ना।
1: ओके, ओके।
0: किसी के बताने पे आप कितना ही करोगे। और लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन भी है इसके बारे में, जैसा मैंने कहा ना, आप सीधी साधी जिंदगी जियो कि एक डिसिप्लिन के साथ जियो कि सुबह इस वक्त उठना है, इस वक्त स्नान करना है, इस वक्त खाना है, इस वक्त सोना है, तो वो भी एक स्पिरिचुअल लाइफ ही है। स्पिरिचुअलिटी यानी ये नहीं कि आप माला जपते बैठ जाओ या ऑरेंज वस्त्र पहन लो या किसी मंदिर में रोज जाओ, दैट डज नॉट डिफाइन स्पिरिचुअलिटी। आप अपने अंदर का जो आप हो ना, आपका जो व्यक्तित्व है, उसके साथ हमेशा जुड़े रहो, यही स्पिरिचुअलिटी है।
1: ओके बिल्कुल ठीक।
0: अभी कोई दरवाजा खटखटाता है
1: जी,
0: कौन है पूछता है ना,
1: जी हाँ जी हाँ जी हाँ
0: तो आप कहते हो ना मैं हूँ, तो व्हाट मेक्स यू से कि मैं हूँ, थोड़ा सोचिए उसको। तो वो जो अंदर से आवाज आई कि मैं हूँ, वो हमेशा आपको एहसास दिलाता रहता है कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ।
1: ओके
0: उस मैं से हमेशा जुड़े रहिए, अलग मत होइए। तो दैट टेक केयर्स ऑफ एवरीथिंग एल्स। फिर आप गलत बातों में नहीं पड़ोगे, कोई बिना मतलब की बात कर रहा है तो आप अपने आप वहां से उठ के चले जाओगे। दीज थिंग्स विल हैपन ऑटोमेटिकली, कोई एफर्ट नहीं लगता है इसमें। खुशी खुशी रहना, एफर्टलेसली जीना, यही स्पिरिचुअलिटी है। जितनी खुशी आप लोगों को बांट सकते हो बांटो, बिना किसी मोल के, वही तो स्पिरिचुअलिटी है। ह्यूमन एक 18 पुराण है हमारे
1: जी।
0: एक श्लोक है उसके बारे में कि अष्टादश पुराणा नाम केवलम वचन द्वयम, कि 18 पुराणों में दो ही बातें कही गई हैं, वो ये है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, किसी को दुख न पहुंचाएं और जितना उपकार हो सके किसी का भी उतना करें जिंदगी में, तो आप स्पिरिचुअल हो।
1: सुंदर, अति सुंदर। चलिए सिंपल भाषा में सिंपल मैसेज है दोस्तों, विचार करने लायक चीज है। रुकिए ना, एक प्यारा सा भजन सुन लें और फिर हम मीना मैम के पास वापस आते हैं।
2: बहुत मुश्किल है डगर इस संसार की, किसी गुरु की तलाश कीजिए जो हमें इन मुश्किल रास्तों से निकल जाने का उपाय बताए।

0: अगर आपकी बातचीत को सुनकर, हमारे इस प्रोग्राम को सुनकर अगर कोई व्यक्ति कन्विंस हो जाए, सहमत हो जाए कि नहीं ठीक है, आज मुझे कुछ डिफरेंट प्रस्पेक्टिव मिला है अध्यात्म का, रिलीजन का, चलिए जैसा मीना मैम ने कहा मैं प्रैक्टिस शुरू करता हूं, क्यों मैं अपने अंतर मन में बड़ा दुखी इंसान हूं, बड़ा गुस्सा भरा हुआ है मेरे अंदर, मन करता है इसको मार दूं उसको मार दूं, मेरे हिसाब से कभी कुछ हो नहीं रहा वगैरह वगैरह, लेकिन आज मीना मैम ने बोला है चलो मैं शुरू करता हूं ध्यान से और अध्यात्म की तरफ मैं बढ़ूंगा, मन को पवित्र करूंगा, जैसे हम लोग की पीछे बातचीत हुई। तो 1 2 3 4 स्टेप बाय स्टेप आप क्या बताना चाहोगे कि हमें 1 2 3 4 ये करो तो धीरे धीरे आप अध्यात्म की तरफ बढ़ोगे, मतलब हमें मेथड बताइए।
1: हाँ, सिंपल मेथड्स बताती हूँ
0: जी।
1: जब भी मौका मिले किसी मंदिर में जाके दर्शन कीजिए और अकेले जाइए
0: जी।
1: तो जब आपके और उस अंदर मूर्ति के बीच में जो कुछ भी एक्सचेंज होता है उसको आप मन में लेके वापस आइए, जरूर उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आपको कोई कोई भी हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं में कोई भी पसंदीदा है
0: जी,
1: तो उनके नाम का जाप आप कर सकते हो। जैसे अगर आपको शिव जी पसंद है तो ओम नमः शिवाय है ना, सो अबाउट 5 मिनट्स 10 मिनट्स आंख मूंद के उनका नाम जाप करो तो उसमें क्या होगा, माइंड स्टेडी होगा
0: जी।
1: तीसरा, जब कभी कोई महात्मा कहीं भी लेक्चर दे रहा हो किसी भी विषय पे, नीड नॉट बी ऑफ योर इंटरेस्ट, लेकिन अगर कोई महात्मा कहीं कोई सत्संग हो रहा है तो मौका मिले तो जाइए उधर, क्योंकि उस पूरे घंटे 1.5 घंटे में वो लोग जो कुछ भी बताते हैं उनमें कभी कभी हमारे मन में उठ रहे सवालों का भी जवाब मिल जाता है
0: जी।
1: मुझे ऐसी जिंदगी में बहुत सारे जवाब मिले हैं, मैं इंटेंशनली नहीं गई थी लेकिन जाके कुछ पाके आए। तो ये सब चीजें हमको हेल्प करती हैं और फिर आप खुद ही चलने लगोगे कि नहीं नहीं नहीं मुझे ये करना चाहिए। और हमारे शास्त्र क्या हैं, एक आईने की तरह हैं, हमको दिखाते हैं कि हम कितना सही हैं और कितना गलत हैं, किसी कथा के माध्यम से, किसी उदाहरण के माध्यम से या किसी बात की माध्यम से, उनमें जो भी लिखा है, तो वो सब सुनना अच्छी बात है। तो धीरे धीरे परिवर्तन जरूर होगा, ये मेरा विश्वास।
0: सिंपल आसान तरीका है दोस्तों, अपनाने में कोई बुराई नहीं है, थोड़ा हमें अपने आप को अरेंज करना है, वक्त तो वही है 24 घंटे, हमें अपने आप को अरेंज करना है और इन चीजों पर जाना है। नंबर वन ध्यान, नंबर टू कोई अगर कहीं प्रवचन हो रहा हो तो जाके सुनिए। बहुत प्यार से मैम ने कहा कोई जरूरी नहीं आपके इंटरेस्ट की बात हो रही हो, लेकिन कुछ ना कुछ सवालों के जवाब आपको फिर भी मिल ही जाएंगे। नंबर थ्री, कोई भी देवता है, कोई भी डेटी है जिनको आप पसंद करते हैं, उनका ध्यान कर लीजिए क्या फर्क पड़ रहा है, बाकी वक्त तो हम गुजारते ही हैं। तो ये 4-5 प्रैक्टिसेस हैं, मुझे ऐसा लगता है विद और प्रैक्टिकल पर्पसेस अगर हम 5 मिनट 10 मिनट मे बी हाफ एन आवर जितना भी हमको मन लगे करें तो धीरे धीरे उस तरफ हम बढ़ना शुरू हो जाएंगे। बहुत सुंदर मैम, तो बस चलते चलते मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आपके सारे जो श्रोता हैं आज जिन्होंने आपको सुना, आपसे बातें समझी हैं, अपनी प्यारी सी जिंदगी को जीने के लिए, आपने पीछे कहा ना, आपकी नानी ने कहा था कि मनुष्य का एक जीवन मिला है उसको ऐसे बेकार मत करो। तो क्या संदेश है आपका कि हम उसको बेकार कैसे ना करें? बस
1: अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है
0: जी
1: कि अपने आप के पास या अपनी आत्मा के पास फिर लौट जाने के लिए
0: जी
1: शक्ति सिर्फ मनुष्य के पास है। एक श्लोक है जो मैं पढ़ूंगी जो आदि शंकराचार्य का लिखा हुआ है कि दुर्लभम त्रयम एवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः, यानी ये तीन चीजें दुर्लभ है लाइफ में. पहला तो मनुष्यत्वम, ह्यूमन बीइंग पैदा होना. दूसरा मुमुक्षुत्वम, यानी अपने मन में एक चाह हो कि मुझे अब फिर लौट के नहीं आना है इस संसार में, मुझे मोक्ष पाना ही है. और तीसरी बात जो दुर्लभ है वो ये है कि कोई महापुरुष हमारे जीवन में आए और हमें ये सब समझाए कि हम कैसे पार लगाएं. और ये सब मिलता है हमको देवानुग्रह हेतु कम, भगवान की कृपा से ही मिलता है. तो चूंकि हमें मानव शरीर मिला है तो उसका पूरा पूरा उपयोग करें उसको याद करते हुए, तो जरूर हम पार लग सकते हैं. दैट इज द मैसेज. और हमारे पास जो बुद्धि है, अभी एक पक्षी या एक पशु जो है बैठ के ध्यान नहीं कर सकता है, उसको ये सब समझ में भी नहीं आएगा कि यू नो ये जन्म क्यों मिला है या हमें क्या करना है, पास्ट में हमने क्या कर्म किए थे, अब क्यों भुगत रहे हैं, कुछ नहीं समझ आता है. लेकिन मनुष्य के पास वो शक्ति है, अपने सारी जो करण मिले हैं हमको, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय जो मिले हैं, उनको नियंत्रण में रखने की शक्ति मनुष्य के पास है. और अपने आप के पास पहुंचने का रास्ता भी हमारे पास है, बस थोड़ा सूक्ष्म बनना पड़ेगा. वो जैसे कबीर दास का भजन है ना, मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास.
0: जी, अमेजिंग, ब्यूटीफुल.
1: तो अपने साथ रहिए, अपने पास रहिए, जितना हो सके खुश रहिए, जितना हो सके औरों को भी खुश बनाए रखिए. दैट्स ऑल हम मनुष्य के रूप में कर सकते हैं.
0: बहुत सुंदर मैम, आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है कि इतनी प्यारी चीजें आपने हमें बताई हैं सिंपल तरीके से, कोई भी व्यक्ति उसको सुनकर प्रैक्टिस शुरू कर सकता है. आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद.
1: धन्यवाद, धन्यवाद. मुझे भी बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके. आई होप मैंने कुछ तो काम की चीज बताई.
0: जी
1: धन्यवाद.
0: थैंक यू.

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती है।

की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं, तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। ChatGPT पे क्या सर्च करें और क्या नहीं, आज की कहानी थोड़ी हटके है, थोड़ी करंट है और ऑनेस्टली बहुत जरूरी है। कल शाम शायद आप में से कई लोगों ने देखा होगा एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन, जहां बात हो रही थी AI की, ChatGPT की, और हम उसे कैसे यूज कर रहे हैं। और तब मुझे लगा कि ये बात सिर्फ डिस्कशन तक नहीं रहनी चाहिए, इसे हम सबको समझना चाहिए। ChatGPT पर क्या सर्च करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं। दोस्तों, आज के टाइम में ChatGPT सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक दोस्त जैसा है, एक गाइड जैसा है और एक टीचर जैसा है। लेकिन हर दोस्त की तरह इसे यूज करने का भी एक तरीका होता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्या करें, यानी डूज। पहला, क्लियर सवाल पूछें। दोस्तों, अगर आप वेग सवाल पूछेंगे, जैसे करियर में क्या करूं, तो जवाब भी वेग मिलेगा। लेकिन अगर आप पूछते हैं मैं लॉ बैकग्राउंड से हूं, मीडिया में आना चाहता हूं, क्या ऑप्शंस हैं, तो जवाब भी प्रिसाइस मिलेगा। सीख क्या है, जितना क्लियर सवाल उतना क्लियर जवाब। नंबर टू, सीखने के लिए यूज कीजिए। ChatGPT एक शॉर्टकट मशीन नहीं है, ये एक लर्निंग पार्टनर है। अगर आप सिर्फ ये कहेंगे आंसर लिख दो, तो आप लिख तो देंगे लेकिन समझ कभी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप पूछते हैं ये कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज में समझाओ, तो आप सच में सीखेंगे। और दोस्तों, नॉलेज ही असली पावर है। नंबर थ्री, क्रिएटिव काम में यूज कीजिए। स्क्रिप्ट्स में, कैप्शंस में, आइडियाज में, ChatGPT सब में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। लेकिन एक बात याद रखिए, उसे कॉपी पेस्ट मत कीजिए, उसे अपना बनाइए, अपनी आवाज दीजिए, अपना टच दीजिए, तभी वो चीज असली लगती है और आपकी लगती है। नंबर फोर, फैक्ट चेक जरूर करें। दोस्तों, ChatGPT स्मार्ट है लेकिन परफेक्ट नहीं, कभी कभी गलतियां हो सकती हैं, इसलिए अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो डबल चेक जरूर करें, स्पेशली न्यूज, लीगल, मेडिकल, फाइनेंशियल चीजों के लिए। नंबर फाइव, रिस्पेक्ट के साथ यूज करें। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जिस तरह हम इंसान से बात करते हैं वैसे ही AI से भी करनी चाहिए, क्लियर, पोलाइट और रिस्पेक्टफुल, क्योंकि जब आप सही तरीके से बात करेंगे तो जवाब भी बेटर मिलेगा। अब बात करते हैं क्या ना करें, यानी कि डोंट्स। नंबर वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्सनल डेटा शेयर ना करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी अपना पासवर्ड, अपना OTP, अपनी बैंक डिटेल्स या कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ChatGPT पर शेयर ना करें। टेक्नोलॉजी पावरफुल है लेकिन हमें समझदार बनना पड़ेगा। नंबर टू, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करें। अगर ChatGPT ने कुछ बोल दिया तो वो फाइनल ट्रूथ नहीं है, उसे गाइड की तरह मत देखिए, अपना जजमेंट यूज करिए। नंबर थ्री, शॉर्टकट के लिए यूज मत करें। असाइनमेंट्स, एग्जाम, काम, अगर आप सिर्फ शॉर्टकट के लिए यूज करेंगे तो शायद काम हो जाएगा लेकिन आप ग्रो कभी नहीं करेंगे। और दोस्तों, ग्रोथ ही सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर फोर, इमोशनल डिपेंडेंसी मत बनाइए। ये बहुत सटल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी लोग अपनी हर प्रॉब्लम, हर डिस्कशन AI से पूछने लगते हैं, लेकिन याद रखिए, जिंदगी के पर्सनल डिसीजंस सिर्फ आपको लेने होते हैं, AI गाइड कुछ नहीं कर सकता। नंबर फाइव,

0: कंपैरिजन मत करें।
1: एआई बेटर है, ह्यूमन स्लो है, ये सोच गलत है। एआई एक टूल है, इंसान क्रिएटर है, टूल कभी क्रिएटर से बड़ा नहीं होता। एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक लड़का था रोहन, उसने चैट जीपीटी यूज करना शुरू किया हर चीज के लिए, असाइनमेंट्स, ईमेल्स, इवन मैसेजेस टू फ्रेंड्स। धीरे धीरे उसने खुद सोचना एकदम बंद कर दिया। एक दिन उसकी टीचर ने पूछा, ये आंसर तुमने लिखा है? रोहन ने कहा, हाँ। टीचर मुस्कुराए और बोले, लिखा तुमने है या किसी और ने? उस दिन रोहन को समझ आया, यूज करना गलत नहीं है, लेकिन खुद को खोना एकदम गलत है। आज की बात का सार यही है दोस्तों, चैट जीपीटी एक पावरफुल साथी है, लेकिन यूज आप कंट्रोल करें, वो आपको कंट्रोल न करे। सीखने के लिए यूज कीजिए, समझने के लिए यूज कीजिए, क्रिएट करने के लिए भी यूज करिए, लेकिन सोचना कभी मत छोड़िए, क्योंकि आपका दिमाग, आपकी सोच, आपकी क्रिएटिविटी, ये सब यूनिक है और इसी से आप अलग बनते हैं। इसी के साथ आज की ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी और सोचने पर आपको जरूर मजबूर करेगी। ये यहीं समाप्त नहीं होती, इसको कैरी फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। अगली कहानी तक के लिए स्मार्ट बनिए, सेफ रहिए और टेक्नोलॉजी को सिर्फ अपना दोस्त बनाइए, गुलाम नहीं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: मिडिल क्लास प्यार इतना सीधा होता है कि लड़का रोज बस स्टॉप पर खड़ा रहता है, लड़की आती है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और 6 महीने बाद लड़का हिम्मत करके बोलता है, एक्सक्यूज मी, ये 522 यहीं से जाती है? प्यार नहीं हुआ, ट्रांसपोर्ट की इंक्वायरी शुरू हो गई।

सेवन डॉग्स, एक कॉर्गी और दोस्ती का सच। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी ना किसी हीरो की है ना किसी विलन की। आज की कहानी सात

0: डॉग्स की है। हाँ जी, और बिलीव कीजिए ये कहानी आपको हंसाएगी भी, हैरान भी करेगी और एंड में थोड़ा सा चुप भी कर देगी। तो चलिए सीन सेट करते हैं। रात का टाइम है, चाइना का एक शहर चांगचून। ठंडी हवा चल रही है, सड़क पर हल्का सा फॉग है और एक लंबा सुनसान हाईवे जहां एक आदमी लू नाम का अपनी कार चला रहा है। नॉर्मल ड्राइव, हल्का सा म्यूजिक, थोड़ा सा बोर्डम, और फिर एकदम से उसकी हेडलाइट्स के सामने कुछ हिलता हुआ दिखता है। लू आंखें सिकोड़ता है। ये क्या है? पहले लगता है प्लास्टिक के बैग्स होंगे, फिर लगता है शायद कोई जानवर, और फिर जब वो थोड़ा सा और पास आता है तो उसका दिमाग लिटरली फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उसके सामने एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7 डॉग्स चल रहे थे। और सिर्फ चल नहीं रहे थे, डिसिप्लिन के साथ चल रहे थे, जैसे कोई परेड हो, जैसे कोई मिशन हो। और सबसे आगे कौन? रेडी, एक छोटा सा कॉर्गी। हाँ, वो क्यूट सा, शॉर्ट लेग्स वाला, थोड़ा गोल मटोल सा इंस्टाग्राम का सुपरस्टार टाइप डॉग, कॉर्गी। लू के मुंह से बस एक ही बात निकली, ये तो उल्टा हो गया, लीडर तो जर्मन शेफर्ड होना चाहिए था। लेकिन नहीं, यहां तो पूरा सिस्टम ही अलग था। कॉर्गी आगे कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे कह रहा हो, लाइन में रहो सब, मैं देख रहा हूं। उसके पीछे एक हस्की, एक लैब्राडोर और एक बड़ा सा जर्मन शेफर्ड। लेकिन यहां कहानी में ट्विस्ट आता है। वो जर्मन शेफर्ड इंजर्ड था, उसका एक पैर ठीक नहीं था और वो हल्की सी लंगड़ाहट के साथ चल रहा था। और अब जो आगे होता है वो देखकर लू सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, वो अंदर से हिल जाता है। बाकी के सारे डॉग्स उस इंजर्ड डॉग के आसपास चलने लगते हैं, जैसे सिक्योरिटी कवर हो, जैसे बॉडी गार्ड्स हो। कोई आगे जाता, फिर पीछे मुड़कर देखता, तू आ रहा है ना? कॉर्गी बीच बीच में रुकता और लिटरली लगता कि वो कह रहा है कि भाई स्पीड कम करो, सब साथ साथ चलेंगे। दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए, अंधेरी रात, ठंडी हवा और सुनसान हाईवे, और बीच में 7 डॉग्स का एक ग्रुप, एक इंजर्ड दोस्त और बाकी सब उसे छोड़ने की बजाय उसके साथ साथ चल रहे हैं। ऑनेस्टली अगर ये मूवी होती तो बैकग्राउंड में स्लो मोशन होता और म्यूजिक होता तेरा यार हूं मैं। लू ने तुरंत वीडियो रिकॉर्ड किया। अगली सुबह इंटरनेट पर धमाका, लोगों ने नाम रख दिया द 7 डॉग्स गैंग। मीम्स बनने लगे, किसी ने लिखा ये फास्ट एंड फ्यूरियस का एनिमल वर्जन है, किसी ने बोला कॉर्गी इज द बॉस, रिस्पेक्ट, और एक बंदा तो सीरियस होकर लिख रहा था ये डॉग सीक्रेट मिशन पर हैं। दोस्तों इंटरनेट कभी सिंपल चीज को सिंपल रहने कहां देता है। कुछ लोगों ने फैन फिक्शन लिख दिया, एक स्टोरी में कॉर्गी एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था, इमेजिन। दूसरी में ये सब डॉग्स एक माफिया गैंग से भाग रहे थे, और एक वर्जन में तो जर्मन शेफर्ड उनका इंजर्ड सोल्जर था और बाकी सब उसे सेफ जगह लेके जा रहे थे। फिल्मी है ना? बिल्कुल। लेकिन एक बात तो सच है, ये डॉग्स एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे थे। दोस्तों अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, सोचिए अगर ये इंसान होते तो क्या होता। ग्रुप आउटिंग है, एक बंदा स्लो हो गया, कोई कहता भाई तू ऊबर ले ले, कोई कहता हम आगे मिलते हैं, और कोई सीधा बोल देता तू प्रॉब्लम है यार। सच बोलूं, हम फास्ट दुनिया में जीते हैं जहां पेशेंस कम है और साथ चलना एक लग्जरी बन गया है लिटरली। लेकिन उस रात चांगचुंग के हाईवे पर 7 डॉग्स ने हमें दोस्ती का असली मतलब सिखाया। उन्होंने दिखाया दोस्ती का मतलब स्पीड मैच करना नहीं, दोस्ती का मतलब है पेस एडजस्ट करना। अगर दोस्त स्लो हो तो आप रुकते हो, अगर दोस्त गिर गया तो आप हाथ बढ़ाते हो, और अगर दोस्त टूट रहा है तो आप उसके आसपास खड़े हो जाते हो, जैसे वो डॉग्स खड़े थे। और लीडर कॉर्गी, सबसे छोटा, सबसे अनएक्सपेक्टेड, सबसे अंडरडॉग, लेकिन सबसे रिस्पॉन्सिबल। दोस्तों, ये भी एक लेसन ही है, लीडर साइज से नहीं बनता, लीडर एटीट्यूड से बनता है। और वो इंजर्ड जर्मन शेफर्ड, कभी कभी स्ट्रॉन्ग लोग भी गिरते हैं, एंड इन दिस केस सबसे स्ट्रॉन्ग लोग भी। और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, शर्म की बात है जब कोई उन्हें छोड़ देता है, पीछे रहने देता है और आगे बढ़ जाता है। अब कहानी का एक और थोड़ा डार्क साइड, कुछ लोग कहते हैं ये डॉग्स सेफ नहीं थे, कुछ वर्जन्स कहते हैं वो खो गए थे, और कुछ कहते हैं उनका एंड अच्छा नहीं था। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन दोस्तों कभी कभी एंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सफर, और उनका सफर एक मैसेज दे गया। तो आज अपने आप से एक सिंपल सा सवाल जरूर पूछेगा, आप कौन हैं? वो कॉर्गी जो सबको साथ लेकर चलता है, वो जर्मन शेफर्ड जो स्ट्रगल करता है, या वो जो किसी को बीच रास्ते में छोड़ देता है? जिंदगी लंबी रोड ट्रिप है दोस्तों, कभी स्मूथ हाईवे है, कभी ब्रोकन रोड, लेकिन अगर साथ सही हो तो सफर हमेशा खूबसूरत लगता है। और अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपके स्लो होने पर रुक जाते हैं, आपका वेट करते हैं, तो ट्रस्ट में उन्हें कभी मत छोड़िए, क्योंकि आज के टाइम में ऐसे लोग नहीं मिलते, और मिलते हैं तो संभलते नहीं। इसी के साथ आज की ये थोड़ी फनी, थोड़ी फिल्मी और दिल को फिर भी छू लेने वाली कहानी यहीं समाप्त करते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की। अगली स्टोरी तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और याद रखिए, असली दोस्ती वो नहीं जो आगे बढ़ जाए, असली दोस्ती वो है जो रुक कर कहती है चल साथ चलते हैं। नमस्कार।
1: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम चिक चिक बम।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: घर में एसी 24 डिग्री पर चला दो तो पापा तुरंत आकर 26 पर कर देते हैं। बोलते हैं, बेटा ठंड लग जाएगी, पर असली रीजन बिजली का बिल उनके दिमाग में लाइफ टिकर की तरह चल रहा होता है। और जब लाइट चली जाती है, देखा मैंने बोला था ना ज्यादा मत चलाओ, देखा बिजली चली गई। ऐसा लगता है जैसे बिजली डिपार्टमेंट को उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी हो। What?

हर्मिन्यूटिक सिर्फ एक वर्ड नहीं, एक सुपर पावर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक नई कहानी में। आज का एपिसोड थोड़ा हटके है, थोड़ा हैवी लग सकता है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ एंड तक आप हंसोगे भी, सीखोगे भी और थोड़ा स्मार्ट भी फील करोगे, क्योंकि आज का वर्ड है हर्मिन्यूटिक। सच सच बताओ, पहली बार सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ये कौन सी बीमारी है? ये किसी साइंटिस्ट का नाम है या ये किसी एलियन का पासवर्ड है? मैंने तो जब इसे पहली बार ऑनेस्टली सुना तो मुझे लगा ये यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा जाने वाला कोई सवाल है। और अगर किसी ने कैजुअली बोल दिया ये एक हर्मिन्यूटिक इशू है तो आदमी तुरंत सीरियस हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी वही सोच रहा था, अंदर से कुछ समझ नहीं आया ना। चलिए आज इस वर्ड का पोस्टमार्टम करते हैं। हर्मिन्यूटिक होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में हर्मिन्यूटिक का मतलब है सिर्फ सुनना या पढ़ना नहीं, बल्कि समझना। और सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर तक जाके समझना। मतलब वर्ड्स के पीछे क्या है, उनका टोन क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है और इंटेंशन यानी इरादा क्या है। क्योंकि दोस्तों, जो कहा जाता है वो हमेशा वही नहीं होता जो मतलब होता है, और यहीं से शुरू होता है हर्मिन्यूटिक थिंकिंग। चलिए रियल एग्जाम्पल से समझते हैं, जहां हम सब एक्सपर्ट्स हैं, थोड़ा सा मजा लेते हैं। एग्जाम्पल वन, माँ बोलती है बेटा मैं ठीक हूं। लिटरल मीनिंग माँ ठीक है, बट रियल मीनिंग यानी कि

शॉर्टकट है। शॉर्टकट कभी लॉन्ग टर्म में काम नहीं आता, याद रखिए। एक छोटी सी कहानी और सुनते हैं। एक लड़का था अमन, उसकी एक हैबिट थी हर बात को लिटरल लेना। एक दिन उसकी माँ बोली, बेटा घर जल्दी आना। अमन 5 मिनट में घर आ गया। माँ हैरान, अरे इतनी जल्दी कहाँ से आ गया? अमन बोला, आपने ही तो बोला था जल्दी आना। माँ बोली, अरे मेरा मतलब ये था कि लेट मत होना, दोस्तों डिफरेंस समझे। वर्ड सेम, मीनिंग अलग, यही है हर्मेनिटिक। और आज की सबसे बड़ी बात, जिंदगी सिंपल हो सकती है मेरे दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। सिर्फ रिएक्ट ना करें, रिफ्लेक्ट करें। सिर्फ सुने नहीं, उसे फील करें, सोचें और समझें। लोग क्या कह रहे हैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्यों कह रहे हैं। तो अंत में, नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले तू मुझे समझता ही नहीं है, आप सीधा बोलना, मैं तो हर्मेनिटिक लेवल पे समझ रहा हूँ। वो कंफ्यूज हो जाएगा और आप इंटेलिजेंट लगोगे। विन विन सिचुएशन। आज का वर्ड थोड़ा टफ जरूर था दोस्तों, लेकिन उसका मैसेज बहुत सिंपल और बहुत जरूरी। समझना सीखो लोगों को, सिचुएशंस को, और सबसे इम्पोर्टेंट खुद को। क्योंकि जब आप समझने लगते हो तब जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगती, क्लियर लगती है। इसी के साथ आज का ये फन, फनी, थोड़ा इंटेलेक्चुअल और थोड़ा दिल से जुड़ा हुआ एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगली स्टोरी तक सिर्फ सुनिए नहीं, समझने की आदत डालिए। क्योंकि याद रखिए, जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स वर्ड्स से नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग से होती है। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: देसी मिडिल क्लास लग्जरी। इंडियन मिडिल क्लास के पास सब कुछ होता है, बस उसे यूज करने की परमिशन नहीं होती। ड्राइंग रूम का सोफा सिर्फ गेस्ट्स के लिए, नया डिनर सेट सिर्फ खास मौके के लिए। और वो खास मौका कब आता है? जब डिनर सेट का डिजाइन आउटडेटेड हो जाता है। हम लोग चीजें फ्यूचर के लिए संभाल के रखते हैं भाई, और फ्यूचर आता है डीक्लटर करने।

0: तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हम सफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।
1: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए कार्यक्रम बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत।

0: टम्पोर।
1: बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। लेखक प्रोफेसर के.जी. रस्तोगी, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, कार्यक्रम निर्माण वंदना अरिमर्दन। ये बाल गीत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए।

0: आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए।
1: क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। वे सिर्फ एक शिक्षक नहीं रहे बल्कि एक मार्गदर्शक रहे। वे सिर्फ एक निर्देशक नहीं बल्कि अनेक रंग कर्मियों के प्रेरणा स्रोत रहे। वे सिर्फ एक प्रशासक नहीं बल्कि संस्कारों और मूल्यों के संवाहक रहे। हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ रंग कर्मी, शिक्षाविद और समाज सेवी श्री मोहनलाल जी गोयल, अध्यक्ष विकल्प नाट्य संगठन। पंजाब की धरती से शुरू हुई उनकी यात्रा शिक्षा के प्रांगण से होती हुई रंगमंच के विराट मंच तक पहुंची, जहां उन्होंने न केवल नाटक किए बल्कि जीवन को भी एक सार्थक अभिनय में बदल दिया। आज हम उनसे जानेंगे उनकी बचपन की प्रेरणाएं, मंच की यादगार कहानियां, विकल्प की स्थापना और उसकी दिशा, और इस बदलते समय में रंगमंच की भूमिका। तो आइए स्वागत करते हैं आदरणीय श्री मोहनलाल जी गोयल का
2: जिंदगी के रंग गीतों के संग। आज का रंग जो मैं पेश करने जा रहा हूं रंगमंच के ऊपर, मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं, सभी को नमस्ते कहता हूं। दर्शकों, ये रंगमंच की बात है तो आगे बढ़ते हैं, हम कैसे रंगमंच की बात कर रहे हैं।
1: चलिए गोयल जी, फिर शुरुआत से ही शुरुआत करते हैं। कुछ अपने बचपन के दिनों के बारे में बताइए। परिवार, फैमिली, परिवेश, शुरुआती संस्कारों ने आपके व्यक्तित्व को कैसे आकार दिया, कुछ उसके बारे में हमारे साथ कुछ बातें साझा कीजिए। थोड़ा हमें अपनी पुरानी जिंदगी में एक झलक दिखाइए।
2: मेरा जन्म जो है 1945 में नवंबर में हुआ था, 11 नवंबर को। लेकिन जैसे मेरा जन्म हुआ उसके 6 महीने बाद मेरे पिताजी स्वर्गवास हो गए, यानी मैंने अपने पिताजी को देखा तक नहीं है। और मैं गांव में था, उनकी शक्ल भी नहीं देख पाया, उनकी कोई फोटोग्राफ भी नहीं थी, ये मेरी कमी रही। लेकिन फिर भी उनके दिए हुए संस्कार आज भी मेरे पास हैं। जैसे हमारा परिवार एक मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन हमारे परिवार में कुछ जो खास तौर पर मेरे पिताजी का, मेरे माताजी कहा करते थे पिताजी के बारे में कि वो दान में बड़ा विश्वास करते थे, अपने साथियों का बहुत ध्यान रखते थे। ऐसा ही मेरा भी अब तक भी जो परिवेश रहा है उसी में संस्कारों का ये समावेश हुआ, जिसके कारण मैं आज भी थोड़ा बहुत दान पुण्य की तरफ ध्यान रहता हूँ, या थोड़ा बहुत जो भी किसी हेल्प कर सकता हूँ मैं मदद करने की तैयार रहता हूँ। ये मेरे संस्कार जो मेरे पिताजी ने दिए, जिनको मैंने देखा तक नहीं था।
1: बहुत सुंदर, और ये तो बहुत ही जिंदगी में खालीपन सा हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी आप उनके संस्कारों को लेके आगे चलते रहे। तो चलिए थोड़ा सा आगे बातचीत शुरू करते हैं। तो क्या बचपन से ही आपका रंगमंच की ओर झुकाव था, या ये सफर बाद में शुरू हुआ, कुछ इसके बारे में बताइए।
2: मेरा शुरू से ही, जो बचपन में से ही मैं रंगमंच से जुड़ गया, वो इस तरह से जुड़ गया कि उन दिनों में रामलीला आया करती थी, रामलीला के लोग आया करते थे। उनके लिए मैं दिन में तो दाना, आटा वगैरह इकट्ठा करता था, दाल वगैरह इकट्ठी करता था, और शाम को मैं वो बाबू एक पैसा दे दे, ऐसी एक छोटी छोटी जो गीत उन दिनों के गीत होते थे उन पे मैं थोड़ी एक्टिंग करके लोगों को रिझाया करता था, जिससे मुझे थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था, वो दान कर दिया था। ऐसा मेरा शुरू से रहा। तो बचपन से ही मुझे रंगमंच से ऐसा जुड़ना पड़ गया। कारण ये था कि इच्छा थी, इच्छा शक्ति थी उस वक्त की, उस वक्त के मुताबिक जो था उसके मुताबिक मैं करता रहा, इसलिए रंगमंच से शुरू से जुड़ गया था मैं।
1: अरे तो ये तो बहुत ही जोरदार बात है, आप बचपन से ही मतलब रामलीला के माध्यम से रंगमंच से जुड़ गए।
2: जी,
1: एक
2: जी,
1: तरह
2: जी.
1: से कहूं तो मैं
2: जी।
1: तो कोई जीवन में कोई गुरु, शिक्षक या ऐसी कोई प्रेरक शख्सियत जो आपको अभी भी याद हो या जिनका आपके ऊपर इन्फ्लुएंस हो, कुछ उनके बारे में बताइए, बचपन की कोई
2: जी,
1: ऐसे।
2: मेरे मेरे गुरु थे, उनका नाम भी मोहनलाल था। मेरा मुंह
1: अच्छा
2: मोहनलाल है, उनका मोहनलाल था। और उन्होंने मुझे रंगमंच की बारीकियां बताई, उन्होंने मुझे बताया कि कैसे स्टेज पे बोला जाता है, कैसे मैं खास तौर पे मैं एलोक्यूशन में बहुत आगे बढ़ गया, यानी एलोक्यूशन से मैं आगे बढ़ गया रंगमंच की तरफ। तो रंगमंच को लाने वाले मेरे गुरु थे श्री मोहनलाल जी, और
1: अच्छा
2: वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं श्रद्धांजलि रूप उनको कहूंगा कि उनके कारण ही सब कुछ हूं मैं, रंगमंच के कारण। जो भी रंगमंच का मैं कार्य कर रहा हूं उनके कारण ही हूं, चाहे वो थोड़ी उम्र के लिए हम 3-4 साल इकट्ठे रहे, 4 साल, लेकिन 4 साल में भी मेरे जो जितने भी एज ए गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो हमारा बना रहा आखिर तक।
1: बड़ी बात है सर, आप भी आज भी उनको याद कर रहे हैं, देखिए कितनी बहुत बढ़िया बात है। तो एक शिक्षक और बाद में प्राचार्य के रूप में आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई? क्या शिक्षण और रंगमंच साथ साथ चलते रहे? क्योंकि टीचिंग में तो काफी समय भी देना पड़ता है, तो ये कैसे मैनेज करते रहे आप दोनों?
2: ऐसा था सर कि शिक्षक के तौर पे मैं बहुत ज्यादा रंगमंच की तरफ झुक गया था। मैं खास तौर पे, मेरी खासियत थी वहां पर, मैं मशहूर था इस बात के लिए कि मोहनलाल गोयल कभी बच्चों का नुकसान नहीं करेगा। शिक्षण के लिए मैं रात को ही एक एक महीने का पूरा कैंप लगाया करता था रंगमंच के लिए। तो रात को हम रिहर्सल करते, रात के 1-2 बजे तक बैठे रहते, और शाम को उसको बच्चे मुझे छोड़ के जाते घरों में। तो उसके बाद फिर सुबह पे आके फिर पढ़ाया करता था मैं। और अगर मैं बाहर अंदर जाता था, क्योंकि बहुत बार 3-3 4-4 दिन लग जाते थे जब हम कंपटीशन में जाते थे रंगमंच के, तो नाटकों का, खास तौर पर एकांकी नाटकों का पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत चलन था। तो
1: अच्छा
2: एकांकी नाटकों के कारण मैं बहुत मशहूर हो गया वहां पर, लेकिन 3-4 दिन लग जाते थे, एक बार जाते थे। तो फिर मैं संडे को क्लास लगाया करता था, और सभी सभी को समोसा भी खिलाया करता था। इस तरह से मैं समोसे वाला प्रोफेसर बन गया। इस तरह से कहने की बात यह है कि मैंने कभी भी बच्चों का नुकसान नहीं किया एज फार एज शिक्षण इज कंसर्न। शिक्षा पूरा ध्यान भी देता रहा, लेकिन साथ ही साथ मैं पढ़ाता भी रहा, और पूरा रंगमंच के नाम पे मेरा नाम था सारे दिल्ली, राजस्थान, उसके बाद जयपुर, जयपुर के बाद ये तो अब की बात है, लेकिन उन दिनों में मैं हिमाचल, दिल्ली और पंजाब में, खास तौर पे, और हरियाणा में, चारों स्टेट्स में मेरा नाम था रंगमंच के लिए।
1: नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपने कभी अपनी टीचिंग को भी नहीं छोड़ा और बच्चों की भी पढ़ाई का कोई नुकसान किया, और उसके साथ में ये भी करते रहे। ये दोनों नामों के बीच में आपने संतुलन बनाए रखा, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो चलिए, इसी संतुलन के नाम पे और आपके इस पैशन के नाम पे, स्टेज से जो आपका प्यार रहा है शुरू से, इसी के नाम पे रुक के हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं और एक गाना सुनते हैं, बहुत बढ़िया सा।
2: जी जी जी

0: हाँ, तो वेलकम बैक गोयल साहब। तो आप ये
1: जी
0: बताइए कि आपका पहला मंचन या पहले अभिनय अगर आपको याद है तो बताइए, वो कैसा अनुभव था जब आप पहली बार स्टेज पे गए थे, क्या था वो?
1: वो उस वक्त का नाम था आवाज का नीलाम, यानी आवाज का नीलाम। एक आवाज अखबार छपता था उन दिनों में, यानी ऐसा सोचा गया था, ऐसा लेखक ने उसको आवाज दिया था, नाम का अखबार का नाम आवाज रखा था। उसमें नौकर का रोल अदा किया था। मेरे जो सीनियर थे मुझे पिटाई करा करते थे, तुम ऐसे नहीं बोलते, तुम ऐसे नहीं बोलते। तो उस तरह से वो पिटाई मुझे आज तक याद है, और उस वजह से मैं आज रंगमंच में जो मैं नाम बनाया, उस वजह से बनाया। क्योंकि शुरू शुरू में जो जो आदमी सीख लेता है, तो जो सीख मिल जाती है उसके बाद फिर वो कायम रहती है। उसी कायम रहने के कारण ही मैं आज जो थोड़ा बहुत कर पाया हूँ, रंगमंच की सेवा कर रहा हूँ। मेरा आवाज का नीलाम था और नौकर का रोल किया था मैंने शुरुआत में।
0: ये पहले पहले जो प्लेस थे उनमें इस तरह के रोल्स होते भी काफी थे। मुझे याद है
1: बिल्कुल
0: एकांकी
1: बिल्कुल
0: नाटकों में
1: बिल्कुल
0: पहले
1: होते
0: ऐसे
1: थे,
0: रोल्स बहुत होते थे, कभी वो कॉमेडी
1: बिल्कुल।
0: करता था, कभी कुछ करता था, कभी कुछ करता था, इस तरह
1: मुझे
0: के
1: आज भी
0: रोल्स।
1: उसका डायलॉग याद है एक,
0: अरे
1: मैं
0: अच्छा,
1: सुनाना चाहूंगा कि
0: हाँ सुनाइए सुनाइए सुनाइए।
1: सेठ और जो अखबार वाला मालिक है उसके बीच एक चर्चा है। वो कहता है कि अखबार जो छापता है वो गरीब आदमी है, ज्यादा अमीर नहीं है, लेकिन सेठ आदमी का कार्य जो कार्य करता है वो संपादक है, और संपादक और सेठ के बीच एक आपस में संवाद होता है कि गरीब की गुर्बत, गरीब की इज्जत, गरीब की मोहब्बत भी खरीदी जा सकती है सेठ जी, लेकिन आप हमारी उस प्रथा को नहीं सीख सकते जो आप सोच रहे हो। ऐसी कोई बात हुई थी, मुझे याद आया।
0: अच्छा,
1: यानी कहने का मतलब गरीब की हर चीज खरीदी जा
0: हर
1: सकती
0: चीज
1: है,
0: कर,
1: लेकिन गरीब की इज्जत आबरू जो है वो फिर भी कायम रहती है किसी ना किसी तरीके से, चाहे कुछ भी किया जा सके।
0: हाँ, उसका स्वाभिमान कायम रहता है, बाकी हर
1: स्वाभिमान,
0: तरह से बड़े
1: बिल्कुल।
0: होकर।

0: भी गरीब रहे, बिल्कुल सही
1: जी
0: बात।
1: जी जी
0: तो अच्छा आप ये बताइए सर, आपके द्वारा निर्देशित या अभिनीत कौन कौन कौन सा नाटक ऐसा जो है आपको याद रहता है कि यार ये मेरे को बहुत फेवरेट है मेरा, तो ऐसा कौन सा है?
1: मेरे दो नाटक बहुत अच्छे मुझे हमेशा याद रहते हैं। एक तो है बकरी, सर्वेश्वरदास सक्सेना का, और दूसरा नाटक था जो कौन नचाए नाच। कौन नचाए नाच एक हमारे दोस्त थे, उनका लिखा हुआ है। आजकल वो दूरदर्शन पे बहुत ऊंची चीज है, शायद प्रोड्यूसर से भी ऊपर है, रवि जी उनका नाम है, वो कपूरथला से बिलोंग करते थे। उन्होंने लिखा था नाटक कौन नचाए नाच। उसमें क्या है, जो खास बात होती थी कि चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे कहीं भी हो, जनता हमेशा नाचती रहती है, नचाने वाले नचाते हैं,
0: नचाते। अच्छा
1: और हमेशा जनता कठपुतली बनी रहती है। इस वजह से जनता ही हमेशा पिसती है, कभी किसी का नुकसान नहीं होता ऊपर वालों का, तो वो वैसे के वैसे रहते हैं, लेकिन हम जनता ही हमेशा उनको झेलती है, चाहे अच्छा हो चाहे
0: मतलब
1: बुरा हो।
0: हाँ वही कठपुतली वाली बात है, नचाने वाला कोई होता है, हम कठपुतली हैं सब लोग,
1: जी जी
0: वही
1: बिल्कुल,
0: आनंद का जो डायलॉग है, बिल्कुल।
1: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मेरे को याद आ गया कि सब ये भी बहुत ऊंचे राइटर थे, ये इनका
1: बहुत
0: जैसे
1: ऊंचे
0: आपने
1: राइटर
0: मेरे
1: थे।
0: को बहुत ऊंचे
1: इसमें मैं
0: राइटर।
1: खासियत, जो बकरी नाटक मैंने किया था उसमें बकरी जो बनाया था, मैंने लाइव बकरी बनाई थी। एक पतली सी
0: ओके
1: लड़की
0: ओके
1: ली और पतली सी लड़की को मैंने उसका वेशभूषा वैसे बनाई, और वो यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में यूथ फेस्टिवल हुआ करता था, उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था उस लड़की को।
0: अरे वाह वाह वाह,
1: और
0: बहुत
1: उसके सिर्फ सिर्फ भाव भाव थे, वो हाव भाव दिखाती थी अपना, लेकिन बोल तो सकती नहीं थी, म्यां-म्यां करके अलावा इसको जो होता है उसका आवाज होती थोड़ी बहुत, लेकिन अदरवाइज उसने कमाल कर दिया था। लड़की ने हाव भाव ऐसे अपने सिर हिलाती थी, जहाँ पांव फैलाती थी जब उसके साथ कुछ भी होता था, तो वो बहुत अच्छा रहा नाटक वो। और वो अभी अभी मुझे याद है उसके, बकरी को क्या पता था मश्क बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वो कुछ ना कहेगी, पानी भरेंगे लोग और वो कुछ ना कहेगी।
0: अच्छा, मश्क बन के रहेगी, ये
1: जी
0: शब्द
1: जी
0: उसके, मश्क वो नहीं होता है जिसमें पानी भरते हैं,
1: हाँ,
0: वो
1: पानी
0: चमड़े
1: पानी
0: की,
1: भरते हैं, चमड़ा
0: चमड़े
1: होता
0: की
1: ना
0: जो होती है,
1: उसका,
0: चमड़े की जो,
1: उसका शरीर चमड़ा होता है जो, उसी में पानी भरते हैं,
0: वो
1: वही
0: लेके घूमते हैं जिसके जिसका।
1: हाँ, बस वो कुछ नहीं कहेगी, वो क्या कहेगा, मश क्या कहेगी।
0: क्या क्या गोयल साहब, आपने क्या दिला दी, आजकल के बच्चों को तो मश्क क्या होता है पता ही नहीं है, हम
1: नहीं पता, मेरे को नहीं
0: आप तो बात करते
1: पता।
0: हैं, मश देखी नहीं होगी इन्होंने कभी,
1: नहीं,
0: आजकल
1: देखी
0: के
1: नहीं होगी,
0: बच्चों ने
1: वाकई।
0: नहीं देखी, नहीं देखी। पहले वो नाली के अंदर चलाते थे उसको, जब हम छोटे थे तो
1: हाँ
0: मुझे
1: बिल्कुल
0: याद है,
1: बिल्कुल
0: सफाई
1: बिल्कुल
0: करते थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: वाह
1: बिल्कुल।
0: वाह वाह, क्या पुरानी याद दिला दी आपने सर।
1: हाँ जी,
0: तो अब जैसे सिंहासन खाली है या मीरा जैसी प्रस्तुतियां हैं, ये बहुत बड़े बड़े नाटक है, तो इनसे कोई जुड़ी हुई याद हो तो कोई ऐसी बात हो तो
1: मेरा
0: बताइए।
1: सिंहासन खाली है तो एक नाटक था, नाटक किया हमने यूनिवर्सिटी में, सेकंड आया था उसका। लेकिन मीरा जो था उसके साथ मेरी जुड़ी हुई कई बातें हैं।
0: जी
1: पहली बात, मीरा के मैंने 25 शो किए ऑल ओवर इंडिया में,
0: अच्छा,
1: और हम जहाँ डीएवी स्कूल की बस ले जाया करते थे, 45 बच्चे उसमें थे, 45 बच्चे, उन सभी बच्चों को मैं साथ जाता था, मैं डायरेक्ट किया था उस प्ले को। और वो नृत्य नाटिका थी, वो नृत्य नाटिका इतनी मशहूर हुई सारे इंडिया में, 25 जगह पर मैंने किया, क्योंकि डीएवी स्कूल कॉलेज जो हमें स्पॉन्सर कर देते थे। लेकिन खास बात ये थी कि मैंने 5 लाख रुपए कमाए इससे, और 5 लाख ही मैंने अलग अलग जगह पर दान कर दिए। जैसे अमृतसर खेला तो अमृतसर, वहां पर पिंगलवाड़ा है, वहां दिया पैसा, जो जहां जो जय लुधियाना खेला, जहाँ पूना। एक खास बात मैं इसके बारे साझी करना चाहूंगा कि मीरा डांस ड्रामा जब किया था, हमारे एक प्रिंसिपल कॉन्फ्रेंस होती है डीएवीज की एट पुणे, पुणे में होना था, तो मुझे कहा गया था मीरा डांस ड्रामा लाना। मैंने कहा कौन लाएगा इतना, मैं जहाँ के राजस्थान के यानी जो लोकगीतों पर आधारित नृत्य होते हैं वो लेके जा रहा था। तो मुझे रास्ते में आ गया, जैसे मैं अभी चढ़ा जयपुर स्टेशन पे थे हम सब लोग, अभी गए नहीं थे, तो मुझे फोन आ गया कि नहीं नहीं मीरा ही लाना आपने। मैं सब बच्चों को उतारा और फिर दोबारा से बस ले गए, 3 दिन में और 2.5 दिन में पहुंचे वहां पर और फिर प्ले किया वहां पर। उस प्ले को गुलजार ने देखा और एक जो है अपनी नृत्य करती है जिसकी टांग पांव नहीं है,
0: अच्छा सुधा चंद्रन।
1: इन दोनों ने देखा और सबकी आंखों में आंसू आ गए थे उस वक्त। और खास तौर पे जब मैंने मेड़ता और चित्तौड़गढ़ किया, चित्तौड़गढ़ वाले थे लोग मेरे साथ माफी मांगने आए कि सर हम आपसे माफी मांगते हैं, मीरा के साथ बहुत हमने गलत किया। ऐसा एहसास हुआ, ये मुझे एहसास भूलता नहीं है। और मैं मेड़ता में बारिश हो रही थी, खूब बारिश हो रही थी, लोगों ने पानी में खड़े होकर के नाटक देखा। तो इस तरह से ये मीरा के साथ मेरी बहुत ज्यादा जुड़ी हुई बातें हैं सर।
0: बहुत ही बढ़िया सर, ये तो मजा आ गया। तो चलिए, आपके इस मीरा नाटक के नाम पे और ये जो, अच्छा देखिए उस जमाने में मेरे को ये लगता है कि इतनी टेक्निक, साउंड इफेक्ट, लाइट इफेक्ट्स वगैरह भी नहीं थे उस जमाने में, तो बहुत बेसिक रूप से नाटक किया करते थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ सर। अब वापस हम शुरू करते हैं अपनी बातचीत। अब आते हैं हम विकल्प नाट्य संगठन के बारे में चर्चा करते हैं। तो विकल्प की स्थापना का विचार कैसे आया, इसके पीछे आपका मूल उद्देश्य क्या था, कुछ इसके बारे में बताइए हमारे को।
1: विकल्प नाटक संस्थान जो था हमारा बना, नाट्य संस्था, वो 4 लोगों ने बनाई थी उस वक्त। ये 1974 की बात है, 1974, यानी 50 साल पुरानी बात है। उस वक्त एक मिस्टर हरि नारायण थे, अभी भी है हमारे साथ, हरिनारायण शर्मा। दूसरे थे राजेश रेड्डी, जो आपके यानी रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर रहे अल्टीमेटली। उपास एक मिस्टर एक मिस्टर थे भटनागर साहब, और एक थे एक और थे। 4 लोगों ने मिलके आपस में ये नाटक किया करते थे, यूनिवर्सिटी में खेला करते थे, राजस्थान यूनिवर्सिटी में। उनके दिमाग में आया कि हम चारों को इसको कंटिन्यू रखेंगे, इसलिए नाटकों का काम करेंगे, इसलिए संस्था बन गई ये। और संस्था बनते बनते ये लगातार आज 50 साल पूरे कर लिए इसने, 50 साल से ऊपर भी हो गया। हम अभी अभी पिछले दिनों में 1 मार्च 2025 को हमने इसका 50वां जो है दिवस मनाया गया। और उसमें राजेश रेड्डी को बुलाया गया था और हरिनारायण जी को, दोनों को सम्मानित किया था। राजेश रेड्डी एक बहुत लेखक भी है, कवि भी है, नाटककार भी है, बहुत मशहूर आदमी है और इंटरनेशनल स्तर का आदमी है। वो उनके उनकी देख रेख में सारा काम किया हमने।
0: राजेश रेड्डी जी का नाम मैंने भी सुना है। तो आप विकल्प किस दिशा में काम कर रहा है, क्या उसकी पहचान किस तरह से बना रखी है, आप कोई मंथली करते हैं, किस तरह से क्या है?
1: ऐसा है सर, हाँ, इस दिशा में असल में क्या है कि जो हमारी संस्थाएं हैं, ये नाटक की संस्थाएं आर्थिक स्थिति में बहुत कमजोर रहती हैं। सरकार हमें कोई देती नहीं है, लोगों के चंदे के ऊपर, लोगों की जहाँ कंट्रीब्यूशन के ऊपर है, जहाँ आपस में जो मिलजुल के ही काम करते हैं, तो इसलिए कोई रेगुलरिटी तो बन नहीं सकती इसमें। हाँ, इतना जरूर है कि 2-3 महीने में एक नाटक जरूर हो जाता है, लेकिन इसको मैंने इस बार एज ए प्रेजिडेंट ऑफ नाट्य विकल्प नाट्य संगठन या प्रेजिडेंट के नाते मैंने इसको दिशा दी है नई। इसमें हमारे कुछ नए जो सदस्य जुड़े हैं वो नृत्य के और गाने में यानी संगीत में बहुत अच्छे हैं। उनका संगीत का कार्यक्रम मैंने 2-3 कर दिए इस वजह से, और उसके अलावा मैंने 2-3 नाटक भी कर दिए। नाटक में अब मैं एकांकी की तरफ जाना चाहता हूँ, अब फुल लेंथ की बजाय एकांकी चाहे 2 कर लो या 1 कर लो, लेकिन एकांकी की तरफ जा रहा हूँ मैं। जैसे अभी हमने एक नाटक किया था अंधेर नगरी चौपट राजा के ऊपर, एक छोटा नाटक किया था। ऐसे ही हमने एक अनार वो भी बीमार एक नाटक किया था, वो भी छोटा नाटक था। इसका मतलब ये हुआ कि आज एकांकी इसको ज्यादा पसंद करेंगे, तो ज्यादा समय लंबा बैठना दर्शक बैठना नहीं पसंद करते, तो इसलिए एकांकी का ज्यादा रोल होना चाहिए। उस एंगल से मैं इधर काम, और नुक्कड़ नाटक का भी थोड़ा सा ध्यान रख रहा हूँ कि जैसे ये हमारा जो अंधेर नगरी वाला प्ले था, इसमें पानी पे ऊपर हमने वाटर के ऊपर दिया था थोड़ा बहुत आइडिया, जो पानी कैसे बचाया जा सकता है। तो उस एंगल से मैं सोचता हूँ कि सरकार से अगर बात की जाए तो नुक्कड़ नाटक ऐसे बनाए जाएं, कुछ कुछ बातों को लेकर के सरकार से बात की जा सकती है या किसी मंत्री से बात की जा सकती है, जिसके ऊपर हम नुक्कड़ नाटक करें और उसके साथ संदेश भी दे सके।
0: लोगों में पानी की कंजर्वेशन के लिए संदेश जाए तो अगर नाटकों के माध्यम से दिया जाए तो बहुत अच्छा
1: जी,
0: रहेगा।
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: अब इसका मतलब है कुछ चुनौतियां तो है ही, देखिए विकल्प चलाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, आर्थिक आपने बता ही दिया, कलाकारों की उपलब्धता भी होगी, लोगों पे इतना समय भी नहीं होता होगा रिहर्सल वगैरह के लिए आ पाए
1: नहीं, ये एक
0: दर्शक।
1: इसमें मैंने एक तजर्बा किया, इसमें एक मैंने प्रयोग किया कि हमारे एक मिस्टर प्रेमचंद गांधी जी हैं, ही इज ए वेरी गुड राइटर आल्सो, उन्होंने गाथा बंदे में एक नाटक लिखा, उसके
0: अच्छा
1: चार हिस्सों चार कहानियां हैं उसकी, कि चार स्त्रियां जो हैं वो शिकार हो जाती हैं, यानी जिसको बोलते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट का, तो उन चारों ने अपने चारों अलग अलग एरियाज में, जैसे एक लड़की है जो ईसाई लड़की है और वो किसी कारण से किसी के साथ लग जाती है और उसका मर्डर कर देती है, उसका कारण सही होता है, कारण जो मर्डर का वो सही है, जैसे एक ग्रामीण क्षेत्र की लड़की है उसका जो सरपंच है वो उसका दुष्कर्म करता है उसके साथ, उसे मर्डर कर दिया, ऐसे एक बाबा, मैंने बाबा का रोल अदा किया उसमें, यानी जो जैसे आज के जमाने में बाबा काम करते हैं उस बाबा का मर्डर हो गया। तो इस तरह से चार कहानियां थी अलग अलग, लेकिन चार कहानी के पात्र सबके अलग अलग थे, इसलिए हमारे रिहर्सल की प्रॉब्लम नहीं आई, नहीं अदरवाइज तो इकट्ठा नाटक पूरा 3 घंटे का 2.5 घंटे का करना हो तो बड़ा मुश्किल होता है।
0: ये गाथा बंदी मुझे कुछ याद आ रहा है आपका, अभी हुआ था इसी में, क्या वो भगवंत ने इसी में पार्ट किया था क्या?
1: हाँ, इसमें जेलर का रोल अदा किया सबसे ज्यादा,
0: जेलर का, अब याद आ गया मुझे।
1: हाँ जी,
0: अरे मैं भगवंत से
1: अभी दूरदर्शन पे जा रहे हैं, दूरदर्शन पे जा रहे हैं अभी, एक उसका एपिसोड हो गया, दूसरा एपिसोड होना है 5 तारीख को, 5 मार्च को उसकी होनी है, यानी रिहर्सल चल रही है आजकल, हमारी शुरू होगी रिहर्सल, आज शुरू हो रही है। तो इस तरह से भगवंत कौर बहुत अच्छी नाटक कर रहा है, अच्छी अच्छी अभिनेता है, बहुत पुरानी है
0: वो सर, हमारे बैंक में भी बहुत नाटक करती थी, क्योंकि मैं तो उसको जाने कब से कह रहा हूँ, उसका भी रेडियो इंटरव्यू करना है, लेकिन उसकी बड़ी कभी इधर चली जाती है कभी उधर चली जाती है, बिजी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल।
0: भगवंत मेरी बड़ी पुरानी मित्री है, एक तरह से हम लोग नौकरी साथ साथ की है काफी समय,
1: क्या बात है साहब।
0: तो मेरे को तो विकल्प वो बहुत बोलती थी, अब मेरे को विकल्प के अध्यक्ष ही मिल गए, ये तो मेरी खुशकिस्मती है। मैं विकल्प के नाटक मैं जा रही हूँ, मैं वहां बिजी हूँ, ऐसे बहुत कहती रहती थी मेरे से। चलिए तो इसी उस पे हम एक गाना सुन लेते हैं और फिर आगे बातचीत शुरू करते हैं।
1: जी जी जी बिल्कुल।

0: अच्छा गोयल साहब, तो
1: हाँ जी,
0: आपको क्या लगता है कि आजकल जो एक ये सिनेरियो बन रहा है मंच का, तो युवाओं की रंगमंच के प्रति गंभीरता कम हुई है या इसका रूप बदल गया है? नए बच्चे आ रहे हैं, स्टेज से जुड़ रहे हैं, क्या
1: दोनों दोनों
0: आपको?
1: चीजें हैं साहब, दोनों चीजें
0: अच्छा,
1: हैं। इसमें रंगमंच के प्रति गंभीरता भी कम हो गई है, लोग ज्यादा जल्दी ही रिजल्ट चाहते हैं, हर आदमी परिणाम चाहता है, परिणाम ये। लेकिन रंगमंच आप जानते हो कि ये तो एक ऐसी विधा है जहां पर परिश्रम की लोड जरूरत है, जहां पर हर तरह से एक तरह का समर्पण की जरूरत है, वो समर्पण नहीं हो सकता आज के जमाने में, तो इसलिए गंभीरता तो कम हुई। लेकिन जो रूप बदला है इसका, जैसे वेब सीरीज शुरू हो गई है या ओटीटी हो गया है, ऐसा कुछ वहां पर झुकाव तो हो रहा है, लेकिन वो अच्छा नहीं हो रहा। उससे रंगमंच जो हमारा पुराना रंगमंच, जो हमारी जो सब संस्कृति के मुताबिक हम कहें तो अच्छी नहीं है बात, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। युवा बिल्कुल बेकार तो नहीं है इस बात के लिए, लेकिन फिर भी झुकाव तो दूसरी तरफ ज्यादा हो रहा है।
0: तो कुछ ऐसा बताइए, आपने विकल्प से जुड़े से नए कलाकार हैं जिन्हें आपने तैयार किया हो और आपको लगता है कि भाई इन्होंने बहुत अच्छा किया है, ना आपको एक गर्व महसूस होता हो, कोई ऐसे कलाकार
1: बिल्कुल,
0: रूम किए हो आपने बताए
1: मैं
0: हो?
1: आपको बताता हूँ सर कि आलोक जी, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास जो नृत्य के लड़कियां आई हैं, खास तौर पे 60 ईयर अबव की एज की एक मीरा सक्सेना करके लड़की है,
0: अच्छा,
1: लेडी, और इसके अलावा रुनझुन घोष करके की लड़की है, जो कि 125 सिर पे घड़े रख करके नाचती है, बबाई डांस करती है वो, और लोग, हाँ बबाई करती है, और उसकी जो मदर है वो बहुत बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी है और कोच भी है। उसने हमारे दो जो बच्चे थे मीरा, जो बबाई डांस किया 125 सिर पे घड़े रख करके, छोटे छोटे घड़े रख करके, और हमारे दो बच्चे जो थे डीएवी के, वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ। इस वजह से मैं गर्व महसूस करता हूँ उनके बच्चों के लिए जो मैंने तैयार किए थे। उसके अलावा अभी हम जो नाटक कर रहे हैं उसमें नए लोग लिए जा रहे हैं, जैसे एक जुरानी करके लड़का है, तो इस तरह से कुछ नए कुछ पुराने मलामलू के अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा विकल्प जो है, अच्छे नाटक दे सके, अच्छे नृत्य दे सके, अच्छे गीत दे सके। अभी मैंने जगजीत सिंह पर एक उनकी नाइट करनी है, जगजीत सिंह के जो हमारे पास गायक है ना, मेरे अपने गायक, जैसे तीन चार गायक हैं, जैसे ओम गोस्वामी है, प्रबोध गोस्वामी है, ऐसे एक एक और लड़का है हमारे पास, तो तीन चार लड़के हैं, और एक मेरा स्टूडेंट है यूएसए से आया हुआ है यहाँ पर पंजाब का, वो बहुत अच्छा बहुत अच्छा गाता है, क्लासिकल गाता है, वो वहाँ प्रोग्राम देता है, स्टेज शो देता है, वो पर चांस आया हुआ। उनका लेकर 29 मार्च को मैं करने जा रहा हूँ, एक जगजीत सिंह के नाम श्रद्धांजलि समारोह, स्वरांजलि समारोह।
0: चलिए, उसके लिए सर बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, और जगजीत सिंह का
1: बहुत
0: प्रोग्राम
1: धन्यवाद
0: करें
1: साहब,
0: तो हमें भी याद कर लीजिए, हम भी
1: जरूर
0: गजल
1: जरूर
0: के
1: जरूर
0: फैन
1: जरूर
0: हैं,
1: जरूर जरूर जरूर साहब, जरूर आप,
0: गजल
1: मेरा
0: के फैन
1: सौभाग्य
0: हैं।
1: होगा, मेरा
0: हाँ,
1: सौभाग्य होगा सब। अरे
0: मैं साहब तलत महमूद जगजीत सिंह इनका बड़ा फैन हूँ।
1: क्या बात साहब, आपको अच्छा लगेगा, मेरा ऐसा ख्याल है।
0: नहीं, बिल्कुल अच्छा लगेगा सर। तो आपके, आप ये बताइए कि जैसे आजकल रंगमंच और फिल्म अभिनय तो बहुत हो ही गया है, ओटीटी वेब सीरीज वगैरह में, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है एक्टिंग जब हम स्टेज पे करते हैं और जब हम फिल्म के लिए एक्टिंग करते हैं, तो आपको क्या लगता है बेसिक डिफरेंस क्या है?
1: बेसिक डिफरेंस तो यही है कि रंगमंच में जो खासियत ये है कि एक्टर को सब कुछ वहीं दिखाना पड़ता है, उसको सब 100% देना पड़ेगा, तभी वो कामयाब होगा। लेकिन फिल्म में तो कहीं भी कट कर दो, कहीं भी काम कम कर दो, ज्यादा कर दो, आवाज ऊंची कर दो, टेक्निक का बहुत जरूरी हो सकता है। लेकिन रंगमंच में तो जब तक आवाज अच्छी नहीं होती, जब तक हाव भाव अच्छे नहीं देगा बच्चा, कोई भी बंदा, तो काम नहीं हो सकता। इसी रंगमंच का ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। मैं आपको एक, अगर इजाजत दो, घटना सुनाना चाहूंगा। जहां पर
0: हाँ, सुनाइए सर।
1: मेरे, मैं जब बीए फाइनल में पढ़ता था पंजाब में, तो मेरे पास बलासानी आया करते थे, उस तरफ डुड्डी के गांव है जहाँ लाल लाजपत राय का जन्म हुआ था, वहां पर एक नावलकार थे जसवंत सिंह, उनके पास वो दोस्त थे, आपस में दोस्त थे, एक महीने के लिए आया करते बड़ा आसानी। तो मैंने कॉलेज में बुलाया उनको, उनसे पूछा कि रंगमंच में, वो रंगमंच के साथ जुड़े हुए थे तो बड़ा आसानी, मैंने उनसे पूछा कि कैसे मुश्किल होता है। तो उन्होंने 2 बीघा जमीन का एक एग्जाम्पल दी, मुझे घटना सुनाई कि मैं जब 2 बीघा जमीन का जो टांगा लेकर के भाग रहा था, तो मुझे कहता जो मेरा निदेशक था, वो कहता था कि और भागो और भागो, जब तक खून नहीं निकल आए तब तक उसने मुझे छोड़ा नहीं। यानी इस स्थिति तक साधना की जाती है रंगमंच में, तो यानी खून मांगती है रंगमंच, लेकिन फिल्म में वो चीज नहीं। फिल्म में बहुत सारी चीजें सुरक्षित की जा सकती हैं, ऑलरेडी किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन रंगमंच में सब कुछ अपने ही आप ही देना होता है सब कुछ। तो ये मेरा ख्याल यही अलग डिफरेंस है सबसे बड़ा।
0: सही बात है। और बलराज साहनी तो क्या तो करेक्टर एक्टर थे साहब, क्या बात बलराज साहनी के भाई थे भीष्म साहनी, वो भी बहुत अच्छे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: एनएसजी से जो कलाकार निकलते हैं, इनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? कैसे क्या है
1: मैं
0: ये
1: समझता हूँ
0: आपके?
1: सब सबसे बढ़िया निकल रहे हैं जो एनएसजी से
0: अच्छे
1: निकल रहे
0: निकल,
1: हैं, क्योंकि
0: अच्छे।
1: उनको यानी नीचे स्तर तक रह करके, जमीनी स्तर पर रह करके काम करना पड़ता है और एक्टिंग को, बारीकियों को हर तरह से सीखना पड़ता है। इसलिए वो मैं समझता हूँ कि असली जो रंगमंच है वो नाट्य संस्थाओं से जो प्रशिक्षित होकर के आते हैं, निखर के आते हैं, वो ज्यादा अच्छे होते हैं। मेरा ख्याल तो यही है। अलकाजी का नाम आपने सुना ही है, अलकाजी का क्या बात है साहब, बहुत सारे जितने एक्टर हैं, अच्छे एक्टर जितने भी हुए हैं, वो सब हमेशा एनएसजी से निकले हुए हैं। जो ज्यादा अच्छे लगे आपको, मेरा ख्याल है कि दूसरे इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी एक नेचुरल किसी के टैलेंट होता है तो वो आता है ऊपर, आते हैं बहुत सारे आते हैं लोग, लेकिन फिर भी अगर प्रशिक्षित होगा और नेचुरल भी हो तो मिला के और भी अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए एनएसडी से निकले हुए लोगों को मैं अच्छा समझता हूँ।
0: सही है। अब बल्ला साहनी साहब के नाम पे हम एक गाना सुन लेते हैं, कोई उनकी फिल्म कही है
1: हाँ
0: ना,
1: बिल्कुल
0: तो रुक
1: बिल्कुल
0: जाते हैं। आपने बात याद दिला दी उनकी।
1: जी।

0: अब थोड़ा सा इधर आ जाते हैं गोयल साहब, आपकी जो डीएवी कॉलेज के आप प्रिंसिपल भी रहे हैं और इतने विद्वान हैं, तो एक शिक्षाविद और समाज सेवी के रूप में आपकी सामाजिक गतिविधियां रंगमंच से कैसे जुड़ती है, क्योंकि आप सामाजिक गतिविधियों में भी इन्वॉल्व रहते हैं, शिक्षाविद तो है ही आप, एजुकेशनिस्ट तो है ही, तो रंगमंच भी आप थे, तीनों चीजों को कैसे बैलेंस करते हैं, क्या करते हैं आप?
1: हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी समाज की आवश्यकताएं होती हैं उसके मुताबिक हम थिएटर को करें।

0: जी
1: यानी जब चुनते हैं हम कोई भी नाटक, तो कोशिश होती है कि समाज का कोई ना कोई पहलू छुआ जा सके, उसे उसके उसका उद्देश्य पूरा किया जा सके। इस है जैसे नृत्य नाटकाएं हैं, जैसे मीरा नृत्य नाटका है हमारी, मीरा नृत्य नाटका ने बहुत अच्छा काम किया समाज सेवा का। समाज सेवा के साथ साथ एक यानी बहुत अच्छा उसका प्रदर्शन रहा, और उससे जो पैसा कमाया गया वो आगे दिया गया। तो इस तरह से एक तरह का समाज सेवा के रूप में मैं कार्य करता रहा। और हमने एक प्रोग्राम दिया था बाघा बॉर्डर पर, जिसमें मैं नृत्य नृत्य दिए थे सारे, और थोड़ा छोटा मोटा एक प्ले दिया था। वो बहुत पसंद आया था पाकिस्तानियों को भी। मैं पाकिस्तान भी 3 बार गया हूँ वहां पर, वहां का नाटक देखा। तो वहां सामाजिक सरोकारों को ज्यादा जोड़ते हैं पाकिस्तान वाले,
0: अच्छा
1: हम भी
0: अच्छा
1: कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान वाले ज्यादा जोड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, मैं बाहर बैठा था नाटक देख रहा, लड्डू करारे, पंजाबी में था लड्डू करारे, तो वो क्या करते हैं, मुझे उठा लिया जी। पता लग गया कि मैं तो थोड़ा जुड़ा हूँ रंगमंच के साथ, मुझे स्टेज पे ले गए, मुझे अपना एक भूमिका बना दी उन्होंने, मेरी एक एक पात्र बना दिया इमीडिएटली उन्होंने। इस तरह के कार्य करने से समाज को जोड़ना और भी आसान हो जाता है। तो इस तरह से नाटक के तौर पे मैं ये कर पाया हूँ, थोड़ा बहुत समाज सेवा का काम भी करता रहा। जैसे आपको बताया कि मैंने 5 लाख रुपए कमाए और वो आगे बांट दिए, तो बांटने में मजा आता है साहब। जी
0: ये दान की तो प्रवृत्ति आपने शुरू से ही है ना, अपने फादर से आपने लिया है, बातें
1: जी
0: करते ही है। नहीं तो पाकिस्तान का किस्सा आपने अच्छा सुनाया, वाघा बॉर्डर पे भी आपने प्ले किया है, क्या श्रोताओं मतलब
1: पंजाब में
0: पाकिस्तान।
1: सदर
0: बिल्कुल सही बात है, वहां पाकिस्तान में पंजाबी लैंग्वेज ज्यादा यूज आती है नाटकों
1: हाँ
0: में भी,
1: बिल्कुल, पंजाबी
0: हाँ
1: लैंग्वेज ही थी। कठपुतली नाटक एक बहुत अच्छा था मेरा पंजाबी प्ले,
0: अच्छा
1: जो कपूर सिंह कुंभन का लिखा हुआ है। तो इस तरह से पंजाबी प्ले भी बहुत किए मैंने, लेकिन हिंदी प्ले ज्यादा किए मैंने।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: हाँ
0: अच्छा
1: जी
0: क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा शौक है, पाकिस्तानी जो टीवी ड्रामाज आते हैं
1: हाँ,
0: मैं यूट्यूब पे काफी देखता हूँ, वो बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। एक
1: गुरशरण
0: तो
1: सिंह एक अमृतसर में एक बंदा था जी, ही इज डेड नाउ, ही इज ए
0: अच्छा
1: वेरी गुड नुक्कड़ नाटक। मैं NSS के नेशनल सर्विस स्कीम के कैंप लगाया करता था एज ए
0: अच्छा
1: टीचर,
0: अच्छा अच्छा
1: तो वहां
0: अच्छा
1: पर मैं उनको बुलाया करता था। वो सिर्फ आने जाने का खर्चा लिया करते थे मुझसे 500-700 रुपए, और वो यानी समाज की जो असलियत है उनके ऊपर नाटक किया करते थे, और
0: अच्छा
1: वो गांव में 10-10 हजार की गैदरिंग को एड्रेस कर देते थे। और एक बार तो हमारा ऐसा हुआ कि लाइट चली गई, तो हमारे चारों तरफ ट्रैक्टर थे खड़े, मैंने कहा ट्रैक्टर की लाइट जगा लो भाई। ट्रैक्टर की
0: अच्छा
1: लाइट जगा के भी हमने प्ले किया। तो
0: अरे
1: एक
0: वाह
1: सामाजिक सरोकारों का बहुत अच्छा मैं तरीका बनाया था। नेशनल सर्विस स्कीम के हर कैंप में उनको बुलाया करता था, और कैंप कैंपों में प्रोग्राम किया करता था नाटकों के द्वारा। 3-4 नाटक करते थे वो, 5-3 घंटे का प्रोग्राम होता था, बहुत अच्छा होता था। इस तरह से
0: यार,
1: सामाजिक सरोकारों के काम
0: वही
1: करता
0: वही
1: रहा हूँ।
0: मेरा अगला प्रश्न भी यही था कि आपको लगता है कि थिएटर समाज परिवर्तन का प्रभावी माध्यम है।
1: यस बिल्कुल
0: नेचुरली
1: बिल्कुल
0: आपने नुक्कड़ माध्यम के से बता ही दिया कि अगर हम करें तो जुड़
1: हाँ
0: सकते हैं।
1: जी
0: तो
1: जी
0: चलिए, समाज और थिएटर का ये जो संबंध है इस पे रुक के हमें कोई गाना सुन लेते हैं,
1: जी
0: और
1: जी
0: करीब करीब हम बकौल अमीन सयानी आखिरी पायदान पर आ गए हैं, और इसके
1: हाँ
0: बाद में बस एक दो प्रश्न और हैं, फिर अपन समाप्त करेंगे।
2: ये भाई।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है

0: चश्मा कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: गोयल साहब, आप अपने लंबे अनुभव के आधार पर अब युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर उन लोगों के लिए जो अब रंगमंच पे आना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है?
1: उनके लिए मैं चार लाइनें बोलना चाहूंगा सर।
0: अरे वाह, स्वागत है।
1: इसके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि हजारों मुश्किलें हैं इंसान के आगे, सब गुबारा है मुझे ईमान के आगे। रोशनी कहीं बदनाम ना हो जाए इस डर से, रख दिया मैंने दिया तूफान के आगे।
0: वाह, बहुत सुंदर सा, वाह।
1: तो मुश्किलें हमेशा आती हैं इंसान के आगे, और जो दृढ़ संकल्प होते हैं वही लोग रंगमंच में आ सकते हैं। और युवाओं को मेरा संदेश है, अगर रंगमंच पे आना है तो दृढ़ संकल्प होकर के, जुनून को साथ लेकर के, अपनी हर चीज को भूल करके, अनुशासनहीन हो, अनुशासन को अपनाते हुए अगर आप आ सकते तो आना चाहिए, नहीं अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर रंगमंच जो है आपका परिश्रम मांगता है, रंगमंच आपके लिए सबको देने को तैयार है, लेकिन बाद में देता है, पहले लेता है। आप क्या दे सकते हो, वो देने वाली प्रवृत्ति अगर होगी, चाहे अपना समय देना रिहर्सल के लिए समय देना, और उसके अलावा सब कुछ दे देना अपने आप को, यानी दृढ़ संकल्प होकर के कार्य करोगे तो रंगमंच और भी उभरेगा, और नए कलाकार भी आएंगे, नए युवा जुड़ेंगे। युवाओं के लिए मेरा यही है कि मुश्किल हमेशा आती है, मुश्किलें हमेशा आएंगी, लेकिन उसको सामना करना जरूरी है। हर बाधाओं का जो सामना अगर करता है इंसान, वही कामयाब होता है। संघर्ष के बिना जीवन नहीं है। कि लहरों से लड़ो, तूफानों से जूझो, क्या चलते हो किनारे किनारे, किनारे किनारे चलने से कुछ नहीं होता, संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष के बिना कुछ नहीं हो सकता।
0: अच्छा गोयल साहब, मुझे अभी ऐसे बैठे बैठे ख्याल आया कि आप इतने बड़े स्टेज के आर्टिस्ट हो, हमने आपसे कोई डायलॉग नहीं सुना, तो तो मैं, ये तो बड़ी हमारी हमारी तरफ से गलती हो जाएगी।
1: नहीं,
0: आपके इतने प्ले आपने किए, कोई अगर आपका मन हो, कोई
1: मैंने एक डमरू नाथ, एज ए स्टूडेंट मैंने डमरू नाथ प्ले किया था।

0: जिसमें वो जो ओझा होते हैं उसका रोल अदा किया था मैंने।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: तो उसका मैं एक डायलॉग सुना देता हूँ।
1: सुना दीजिए।
0: जय काली काली महाकाली, ब्रह्मा की पुत्री इंद्र की साली, जा बैठी पीपल की डाली, पलट तेरा ध्यान किधर है। जब पलट तेरा ध्यान किधर है बोलता था मैं, चुमटे के साथ खड़काता था तो कई बच्चे उठ जाते थे, नींद से उठ जाते थे। तो अब तो 80 साल का हो गया, मैं उतनी आवाज में वो दम नहीं रहा, लेकिन वक्त था जब दम था।
1: नहीं, आपकी आवाज में अभी भी दम है। और 80 साल पे आपका स्टेज के प्रति पैशन जो है, मतलब अच्छे अच्छे युवाओं को शर्मसार कर दे, मैं तो ये कहूंगा सर। मतलब मेरे को तो बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है। आप
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: अमिताभ बच्चन हैं, वो 83
0: क्या
1: इयर्स पे
0: बात
1: भी
0: है,
1: देखिए क्या केबीसी
0: क्या
1: ऑर्गेनाइज
0: बात है सर,
1: करते
0: उनका
1: हैं।
0: क्या क्या मुकाबला नहीं हो सकता जी। वो
1: तो
0: तो
1: मतलब ऐसे लोग विलक्षण होते हैं,
0: शताब्दी के लोग हैं वो तो साहब,
1: शताब्दी के लोग हैं साहब, मतलब विलक्षण है। इस
0: विलक्षण बिल्कुल।
1: उम्र को जैसे रोक रख के रखा हुआ है,
0: जी
1: कमाल
0: जी
1: है।
0: जी
1: और वही
0: बिल्कुल
1: जोश,
0: सही कह रहे
1: वही
0: हैं।
1: वो जोश पूरा दौड़ के आते हैं अभी भी केबीसी के अंदर, आप देखिए।
0: हाँ बिल्कुल, कभी चल के नहीं आएंगे, दौड़ के आएंगे
1: हाँ,
0: हमेशा।
1: दौड़ के आएंगे, मतलब कभी आप उनको ढीला डाला नहीं
0: मैं भी
1: देंगे।
0: 80 साल की उम्र पे भी थिएटर कर रहा हूँ, तो यही कारण है कि इन लोगों का ही प्रेरणा मिलती है हमें, अमिताभ बच्चन जैसे लोगों से, नहीं तो कैसे आदमी बढ़ पाएगा आगे के लिए।
1: आपको सलाम है सर हमारी तरफ से, हम तो यही कह सकते।
0: मैं जिंदगी के रंग, गीतों के संग, दर्शकों का और खास तौर पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे सुना और मेरे कुछ बातों को ध्यान में रखा होगा। ऐसा मेरा ख्याल है कि इसका शायद कोई फायदा हो सके, तो बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।
1: नहीं नहीं सर, अभी अभी अभी अभी अपन समापन करते हैं। तो गोयल जी, आपसे बातचीत सचमुच एक प्रेरणादायक अनुभव रहा। आपने जिस सादगी, स्पष्टता और आत्मीयता से अपने जीवन के अनुभव साझा किए, उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। आपकी यात्रा हमें सिखाती है कि मंच केवल रोशनी और तालियों का नाम नहीं, बल्कि वह एक साधना है, समर्पण की,
0: जी
1: संस्कारों की और स्मृति जिम्मेदारी की।
0: क्या
1: विकल्प
0: बात
1: जैसी संगठन के माध्यम से नई पीढ़ी को दिशा देना और बदलते दौर में भी रंगमंच की ज्योति को प्रज्वलित रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है। हम आशा करते हैं आपकी ये ऊर्जा और प्रेरणा आने वाली पीढ़ियों तक यूं ही पहुंचती रहे। आपने आज हमारे लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
0: मेरा जिंदगी के रंग, गीतों के संग, कार्यक्रम के लिए सलाम।
1: आज के लिए इतना ही। मैं हूं आलोक कुमार, आप सुन रहे हैं जिंदगी के रंग गीतों के संग। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ। नमस्ते।
2: मगर अब जो आना तो धीरे से आना।
3: और दोस्तों, इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान, एक नई कहानी और नए गीतों के साथ, जिंदगी के रंग गीतों के संग इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: हमारे जल संसाधन।
2: पानी या जल प्रकृति की अनमोल देन है। जीवन और उसके अस्तित्व के लिए यह इतना जरूरी है कि इसके बिना तो जीवन ही असंभव है। जैसा कि किसी ने ठीक ही कहा है, ना होता जल तो जग जाता जल। वास्तव में जीवन की उत्पत्ति जल से ही प्रारंभ हुई है। हमारे शरीर का लगभग 65% भाग पानी ही है। दैनिक जीवन की प्रत्येक घरेलू प्रक्रिया में, जैसे खाना बनाने से लेकर पीने के पानी तक, नहाने से लेकर कपड़े धोने तक, शॉर्ट से लेकर सफाई तक, प्रतिदिन एक व्यक्ति लगभग 120 लीटर पानी खर्च करता है, जिसमें औसतन 2 लीटर पानी पीने के लिए ही चाहिए।
3: हमारे देश में पानी का सबसे अधिक उपयोग कृषि में फसलों की सिंचाई के लिए होता है। मवेशियों को भी काफी मात्रा में पानी चाहिए। इसी प्रकार विभिन्न उद्योगों में भी इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक अच्छा घोलक, शीतक और सफाई का माध्यम है। बिजली बनाने का एक मुख्य साधन पानी ही है, जिसे जल विद्युत या पन बिजली कहते हैं। आज भी परिवहन का सबसे सस्ता साधन नदियों में चलने वाली नौकाएं या समुद्री जहाज ही हैं।
2: काफी हद तक मौसम भी तो पानी और उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। जलाशय और खासकर विशाल सागर, जो ऊष्मा ऊर्जा के बैंक का कार्य करते हैं, जो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और उसे छोड़ते हैं। इस कारण समुद्र तट के क्षेत्रों की जलवायु समुद्र से दूर के क्षेत्रों से भिन्न होती है। समुद्र तट के इलाकों में न तो सर्दी में ज्यादा सर्दी और न ही गर्मियों में ज्यादा गर्मी ही पड़ती है।
3: मगर ये पानी आता कहाँ से है, यानी इसके मुख्य स्रोत क्या क्या हैं?
2: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी पर कुल पानी का लगभग 97% महासागरों और समुद्रों में है, जो कि धरती की 3/4 सतह पर फैले हुए हैं। समुद्र का पानी खारा होता है, इसका उपयोग सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता। शेष 3% ताजे जल के रूप में उपलब्ध है। इस 3% में से 2% जल हमारी पहुंच के बाहर है, क्योंकि ये जमा हुआ है। हिम के रूप में पहाड़ों की चोटियों पर, या ग्लेशियरों के रूप में, या फिर अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और ध्रुवों पर बर्फ की विशाल और मोटी चादर के रूप में, जहां पेंगुइन और सील रहते हैं। इस प्रकार सिर्फ 1% जल ही नदियों और झीलों में है, या फिर भूमिगत जल जो हम कुओं और नलकूपों के द्वारा निकालते हैं, और कुछ हवा में नमी और बादलों के रूप में। इसे यूं समझें कि अगर धरती पर 9 चम्मच पानी जमी हुई बर्फ के रूप में है, तो नदियों में बहता पानी 1 बूंद के बराबर है।
3: सच कहा जाए तो पानी हमारे आसपास चारों तरफ है। यहाँ तक कि रेगिस्तान की सूखी हवा में भी पानी की आर्द्रता अवश्य होती है। हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी में कुछ न कुछ मात्रा में पानी मौजूद रहता है, और उसके नीचे भूमिगत जल।
2: आपने सही बताया, मगर पानी तो वर्षा से भी आता है।
3: हमारे खेतों की फसलों के लिए और पीने का पानी काफी मात्रा में वर्षा से ही आता है। इस विषय पर आप कुछ और बताना चाहेंगे?
2: हाँ, क्यों नहीं। हमारे देश में जलवायु की विविधताएं हैं। कहीं थार जैसे रेगिस्तान हैं, तो कहीं हिमालय जैसे बर्फ से ढके हुए पहाड़। इसलिए वर्षा में काफी असंतुलन और असमानता है। जैसे राजस्थान के जैसलमेर में 20 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा प्रतिवर्ष होती है, तो आसाम के चेरापूंजी में लगभग 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसी तरह मुंबई और पुणे के बीच सिर्फ 160 किलोमीटर की दूरी पर भौगोलिक कारणों से मुंबई में मॉनसून के समय लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है और इतने ही समय में पुणे में लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तभी तो किसी कवि ने कहा है, भारत तेरी अजब कहानी, दो कोस पर बदले पानी और 100 कोस पर वाणी।
3: फिर भी हम वर्षा के मामले में भाग्यशाली हैं। कुल मिलाकर हमारे देश में औसत प्रतिवर्ष 115 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो विश्व के अन्य भागों की तुलना में बहुत अधिक है। भारत सबसे अधिक वर्षा के क्षेत्र में ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर आता है। कई कारणों से कुल वार्षिक वर्षा का 10वां भाग ही हम उपयोग में ला पाते हैं। एक अनुमान के अनुसार अगर स्थितियां बदली नहीं तो आज से 40 वर्ष बाद भी 1/4 से ज्यादा पानी हम उपयोग में नहीं ला सकेंगे।
2: हमारे देश में व्यापक जल स्रोतों का प्राकृतिक खजाना है। कहीं विशाल नदियां, तो कहीं आभूषणों जैसी झिलमिलाती झीलें, कहीं झरझर करते जलप्रपात। और तीन तरफ फैला लंबा समुद्री किनारा। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे देश में पानी की कोई कमी नहीं है।
3: पानी तो एक मुख्य समाचार बन जाता है जब देश के किसी भाग में सूखा पड़ जाता है।

0: या गर्मियों में महानगरों में पानी का अभाव हो जाता है, जीवन के लिए कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं।
1: हमारे देश में पानी की प्रत्यक्ष अधिकता भ्रामक है और हम ऐसा मान लेते हैं कि हमें पानी का अभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पानी का हम दुरुपयोग भी करते हैं और कभी कभी अधिक और अनुचित उपयोग भी करते हैं। परिणाम स्वरूप पानी की गंभीर कमी की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं।
0: हमारे देश में हर एक को आवश्यकता अनुसार पानी क्यों नहीं मिल पाता है, इसके क्या कारण हैं?
1: पानी की कमी के कई कारण हैं। इनमें प्रमुख हैं बढ़ती हुई आबादी की बढ़ती हुई पानी की आवश्यकताएं, पीने के पानी का मुख्य स्रोत भूमिगत जल है। अधिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ये संसाधन तीव्र गति से कम हो रहा है। कई प्रदेशों में भूमिगत जल का बहुत उपयोग होने लगा है। भूमि के नीचे से जल निकालने की दर भूमि में जल रिसने की दर से अधिक है। परिणाम स्वरूप भूमिगत जल स्तर यानी वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है।
0: देखिए, बरसात तो सिर्फ वर्षा ऋतु में होती है ना, इसलिए दूसरे समय के लिए पानी का संचय करना पड़ता है, और पानी का संचय करना कोई आसान काम नहीं है।
1: पानी को जमा करके रखने का एक मुख्य तरीका है बांध बनाना। पानी को बड़े पैमाने पर बांध बनाकर उसे एक जगह पर विशेष उद्देश्यों के लिए रोक लिया जाता है।

0: दुनिया रेडियो टंट्याभील 90.8 एफएम जाबुआ की आवाज।
1: वन में मेरा मन है। पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े इस तलाश।

0: वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच्ची तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन बचाएं। अमित बेटा।
2: जी माँ।
1: मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम दादाजी और सोनिया दीदी के पास जाकर बैठो।
2: ठीक है माँ।
1: और हाँ, देखो उन्हें तंग मत करना।
2: अच्छा माँ, मगर तुम जल्दी आना।
1: हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम जाकर खेलो।
2: अच्छा माँ।

0: सोनू दीदी बोलो, ये देखो मैंने शेर का चित्र बनाया है।
1: अरे वाह, इतना सुंदर।
2: अरे वाह भाई वाह अमित, अरे तुमने तो शेर का चित्र बहुत अच्छा बनाया है।
1: शेर तो जंगल का राजा होता है, पर अमित तुमने जंगल तो बनाया ही नहीं।
0: अरे हाँ सुनू दीदी,
1: हाँ
0: ये जंगल कैसा होता है?
1: जंगल
2: जंगल हमारे गांव के पास ही है बेटे।
1: बिल्कुल ठीक।
2: देखो जंगल का मतलब दूर दूर मीलों तक घने पेड़ पौधे झाड़ियाँ, समझे?
1: हाँ।
2: इसमें ढेर सारे जंगली जीव जंतु जैसे बाघ, हिरण, हाथी, हाँ सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े आदि रहते हैं।
1: और जंगल इन सभी जीवों का घर होता है ना दादाजी?
2: बिल्कुल सही सोनिया बेटी। दरअसल जंगल यानी वन हमेशा हमारे लिए वरदान रहे हैं।
1: अच्छा
2: समझे? हाँ, ये प्रकृति का उपहार है। आज बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण वनों का महत्व और भी बढ़ गया है।
1: अच्छा दादाजी।
2: हाँ भाई, अगर वन न हो तो हम सब पर संकट छा जाएगा। हाँ, और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता ही चला जाएगा।
1: पर्यावरण प्रदूषण ये क्या होता है दादाजी?
2: अरे बेटा, पर्यावरण हमारे आसपास के वातावरण को कहते हैं, समझे? जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पहाड़, पेड़ पौधे, ये सब कुछ अगर ये प्रदूषित हो जाएं, यानी गंदे हो जाएं, तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं, समझे? हमारे ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है।
1: अच्छा, वो कैसे दादाजी?
2: भाई जैसे गंदा पानी पीने से अनेक बीमारियां होती हैं, वैसे ही प्रदूषित वायु में सांस लेने से सांस संबंधी बीमारी हो जाती है।
1: अच्छा।
2: और बेटे, अगर वन ना हो तो सभी जीवों का जीना दूभर हो सकता है।
1: वो कैसे दादाजी?
2: सुनो, वन वातावरण प्रदूषित होने से बचाते हैं और हमें शुद्ध हवा देते हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ, पेड़ पौधों के अंदर जो नमी होती है वो वर्षा कराने में सहायक होती है।
1: अच्छा।
2: भाई इन सब के अलावा वनों से हमें ढेरों कीमती सामान भी मिलते हैं। जैसे अनेक जड़ी बूटियां, फल, लकड़ी, रबर, गोंद और पत्तियां और पेड़ों की छालें, जिनका उपयोग हम दवा, फर्नीचर, खाद्य पदार्थ आदि के रूप में करते हैं।
1: अच्छा दादाजी। वन इतने उपयोगी हैं, फिर इनका विनाश क्यों हो रहा है?
2: अरे बेटे, इसके बहुत से कारण हैं। जैसे हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा हो गई है।
1: अच्छा।
2: लोगों के पास रहने की जगह कम पड़ने लगी है। और भाई लोगों को रहने के लिए जगह तो चाहिए, इसलिए लोग वनों को काटकर अपने रहने की जगह बना रहे हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ, बड़े बड़े कारखानों के लिए भी जगह की जरूरत है।
1: अच्छा।
2: इसके लिए भी वन काटे जाते हैं।
1: अच्छा।
2: और पेड़ों की लकड़ियाँ प्रमुख साधन है। इसके अलावा झूम खेती से भी वनों का विनाश हो रहा है।
1: अच्छा दादाजी। दादाजी, ये झूम खेती क्या है?
2: देखो बेटा, झूम खेती हमारे देश के उत्तर पूर्वी राज्यों तथा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, समझे? भाई इस प्रकार की कृषि में लोग भूमि के एक टुकड़े पर कुछ दिन खेती करने के बाद दूसरी जगह वनों को साफ कर खेती करना शुरू कर देते हैं।
1: अच्छा, ऐसा करते हैं?
2: हाँ, इसके कारण नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम जैसे राज्यों में
3: वन लगातार कम होते जा रहे हैं।
1: दादाजी, इन वनों को बचाया कैसे जाए?
2: अरे बेटा, वनों को तो हम कई तरीकों से बचा सकते हैं।
1: वो कैसे?
2: जैसे ईंधन के लिए लकड़ी का प्रयोग न कर कोई अन्य वस्तु जैसे गोबर गैस, प्राकृतिक गैस और सौर ऊर्जा का उपयोग करें।
1: अच्छा।
2: हाँ, और इमारत और फर्नीचर में लकड़ी का उपयोग न करके फाइबर, शीशे, लोहे का उपयोग कर सकते हैं।
1: दादाजी,
2: बोलो बेटे।
1: हम पेड़ काटने से पहले पेड़ लगा भी तो सकते हैं।
2: अरे वाह वाह अमित भाई, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो बेटे। सोनिया बेटी।
1: हाँ जी।
2: देखो जरा कौन आया है।
1: हाँ दादाजी, मैं अभी देखती हूँ।

0: रेंजर चाचा आप? आइए नमस्ते।
1: नमस्ते बेटी नमस्ते। काका नमस्ते।
2: अरे भाई रेंजर, आओ आओ भाई, और सुनाओ कैसे हो? आओ आओ इधर आओ, इधर
1: सब ठीक है काका।
0: चाचा जी नमस्ते।
1: नमस्ते बेटा, और सुनाओ बच्चों, दादाजी से क्या बातें हो रही थी?
0: हम जंगल के बारे में बात कर रहे थे चाचा जी।
1: अच्छा
0: रेंजर चाचा, आप तो जंगल में रह चुके हैं।
1: हाँ?
0: आप हमें बताइए कि वनों को बचाने के लिए लोगों को कैसे बताया जाए?
1: बच्चों ये बातें अनेक तरीकों से बताई जा सकती हैं।
0: वो कैसे?
1: जैसे टीवी रेडियो पर वनों के महत्व को बताकर, अखबारों में वनों के महत्व पर लेख लिखकर,
3: बिल्कुल,
1: और पोस्टर बैनर के जरिए वन बचाने का संदेश देकर।
0: अच्छा चाचा जी, वनों को बचाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है?
1: बच्चों पेड़ों को बचाने के लिए अनेक आंदोलन हुए हैं।
0: अच्छा।
1: वर्षों पहले उत्तराखंड के लोगों ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की। इसमें गांव के सभी लोगों ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें कटने से बचाया।
2: देखा बच्चों?
0: हाँ जी।
1: ठीक इसी प्रकार कर्नाटक के सिरसी जिले के सालकड़ी गांव के निकट एक जंगल में अप्पिको आंदोलन शुरू हुआ। वहाँ वन विभाग ने जब पेड़ काटने शुरू किए तो गांव के स्त्री पुरुष और बच्चे पेड़ों से चिपक गए।
0: अच्छा।
1: इससे मजबूर होकर पेड़ काटने का काम रोकना पड़ा।
2: देखा?
1: इसी तरह राजस्थान के खेड़जली गांव और उत्तरकाशी क्षेत्र के तिलाड़ी गांव के लोगों ने वनों को बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया है।
2: अच्छा भाई रेंजर, ये बताओ कि इस विषय में हमारी सरकार क्या कर रही है?
1: काका हमारी सरकार ने भी वनों को बचाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।
0: वो कौन सी कदम है चाचा जी?
1: जैसे बिना इजाजत पेड़ काटने वालों को जुर्माना और सजा भुगतनी पड़ती है।
0: अच्छा।
1: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वनों की कटाई पर नजर रखता है और इसके अलावा सरकार ने सामाजिक वानिकी नाम की एक योजना भी बनाई है जो अब कई जगह चल रही है। इस योजना के तहत लोगों को ये बताया गया है कि गांव के लोग खुद पेड़ लगाएं।
0: अच्छा।
1: और वन काटने के बजाय इन्हीं पेड़ों से अपनी जरूरतों को पूरा करें।
0: अच्छा।
1: और झूम खेती करने वालों के लिए सरकार ने एक स्थायी कृषि प्रणाली बनाई है ताकि लोग झूम खेती छोड़ दें।
0: अच्छा।
1: इन सब के अलावा जंगलों की रक्षा से संबंधित शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए हमारी सरकार ने अनेक शिक्षण संस्थान भी खोले हैं।
0: अच्छा।
1: जैसे

0: हर एक जन्मदिन पर एक पेड़ लगाऊंगी और अपने सभी साथियों को भी पेड़ लगाने को कहूंगी।
1: बहुत अच्छे।
2: अरे वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बगीचे में चलकर इसकी शुरुआत आज ही से करें।
3: चलो, चलो। मैं भी पेड़ लगाऊंगा।
4: हाँ, मैं भी।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज।
1: दो गौरैया।
2: इस घर में हम तीन लोग रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। आंगन में आम का पेड़ है और तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं।

0: कुत्ते, कौवे और गोरैयों से पेड़ आबाद रहता है। सुबह होते ही कबूतरों का गुटरगू संगीत सुनाई देने लगता है। अब एक दिन अचानक क्या हुआ कि दो गोरैयां सीधी घर में घुस आई और बिना किसी से पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी। मैंने पिताजी को आवाज लगाई, पिताजी देखिए ना, गोरैया घर में क्या ढूंढ रही हैं?
1: ये मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि रहने योग्य है भी या नहीं।
0: अच्छा,
1: देखो देखो, कभी खिड़की पर बैठ रही हैं तो कभी रोशनदान पर।
0: हाँ, अरे हाँ पिताजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
2: दो तीन दिन बाद क्या देखते हैं कि गोरैया के जोड़े ने बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में तिनके और घास फूस से घोंसला तैयार कर लिया है और मजे में चहचहा रही है। माँ और पिताजी सोफे पर बैठे उन्हें ताक रहे हैं।
1: अब ये देखो, इन्होंने तो डेरा ही जमा लिया, उड़ाना पड़ेगा इन्हें यहाँ से।
3: अब तो ये नहीं उड़ेंगी, इन्हें पहले उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ पर घोंसला बना लिया है।
1: अरे ऐसे कैसे नहीं उड़ेंगी, देखता हूँ यहाँ रहती कैसे हैं। गोरैया मेरे आगे चीज क्या है, मैं अभी निकाल कर बाहर करता हूँ।
3: छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को क्या निकालोगे।
1: ये बात है, देखो अभी कैसे उड़ाता हूँ। चल उड़ उड़ यहाँ से। इसमें हंसने की क्या बात है?
3: चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि ये आदमी कौन है और ये नाच क्यों रहा है।
1: देखो मुझे गुस्सा ना दिलाओ, बस देखती जाओ।
3: ठीक है,
1: चल चल हट हट।
3: ये अब नहीं निकलेंगी।
1: निकलेंगी कैसे नहीं, अभी डंडा लेकर आता हूँ।
2: इस खेल का खूब मजा ले रहा था। पिताजी डंडा लेकर पंखा ठकोरते तो गोरैया उड़कर कभी पर्दे के डंडे पर जा बैठती तो कभी किचन के दरवाजे पर। उधर माँ को चिठोली सूझती।
3: तुम भी बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गोरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो और बाकी सारे बंद करो, तभी ये निकलेंगे। हाँ
1: ठीक है ठीक है। अरे अब तू खड़ा क्या देख रहा है
0: जी?
1: जल्दी से दोनों दरवाजे बंद कर दे
0: जी।
1: वो सिर्फ किचन वाला दरवाजा खुला रख
0: जी। अच्छा पिताजी।
1: हट, हट, हट।
2: अब पिताजी लाठी उठाकर फिर गोरैया से लोहा लेने को लग गए। एक बार तो लाठी माँ के सर पर लगते लगते बची।
3: अरे अरे,
1: अरे
3: क्या करते हो जी?
1: गलती से लग गया।
3: आराम से।
2: गोरैया चीची करती, कभी एक तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिरकार दोनों किचन की तरफ खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल गए।
3: मजा आ गया, आखिर तुमने कर ही दिखाया।
2: माँ तालियां बजाने लगे और पिताजी लाठी दीवार के साथ टिकाकर छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे और दरवाजा बंद रखने का हुक्म दे डाला।
1: एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी अपने आप।
2: सभी इत्मीनान से बैठे ही थे कि पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज सुनाई पड़ी। माँ खिलखिलाकर हंस दी।
1: अरे
3: वो देखो, फिर से आ गई घर में।
2: दोनों गोरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। गोरैया दरवाजे के नीचे की खाली जगह से फिर अंदर घुस आई थी। माँ की हंसी रुक नहीं रही थी और पिताजी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ता जा रहा था।
4: देखता हूँ मैं इनको।
3: अरे सुनो सुनो, देखो जी इन चिड़ियों को बाहर मत निकालो, अब तक तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे।
1: बाहर मत निकालो तो क्या मैं इन्हें कालीन बर्बाद करने दूँ और खुद तमाशा देखता रहूँ?
3: सुनो तो। रुक जाओ।
2: उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए और लाठी झलाते हुए चिड़ियों पर टूट पड़ा और उन्हें बाहर खदेड़ दिया।
1: गई।
2: दोनों पिछले आंगन के दीवार पर जा बैठे। दूसरे दिन रविवार की छुट्टी थी। हम लोग बैठक में आए तो देखते क्या है कि कि गोरैया फिर से पंखे पर बैठी मल्हार गा रही है। अब तो ये रोज का खेल हो गया।
4: मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, अभी सुन कर ये।
2: दिन में गोरैया बाहर निकाल दी जाती और रात होते ही वो न जाने कहां से अंदर आ जाती। पिताजी की सहनशीलता भी अब जवाब दे चुकी थी। वो लाठी और स्टूल उठाकर ले आए और घोंसला ही निकालने का फरमान सुना दिया। पहले प्रयास में दो तीन तिनके बाहर आ गिरे। माँ हंस दी।
3: तुम्हारे बस की नहीं है।
5: फिर कोशिश करता।
2: तभी मेरी नजर बाहर बैठी गोरैया पर पड़ी। वो कुछ कुछ दुबला गई थी और कुछ कुछ काली भी पड़ गई थी। अब वो पहले की तरह चहक भी नहीं रही थी।
4: क्या देखो,
2: घोंसला लाठी के साथ खिंचता चला आने लगा। सहसा ची ची का शोर सुनाई दिया। पिताजी ठिठके। बाहर देखा तो दोनों गोरैया वहीं बैठी थी। फिर ये आवाज अंदर कैसे आई?
5: पिताजी देखो देखो देखो ऊपर देखो। माँ पिताजी
3: हाँ?
5: वो देखो गोरैया के छोटे छोटे बच्चे।
3: अरे हाँ बेटी।
2: अरे पिताजी चौंक कर स्टूल से उतरे। हम सभी आश्चर्यचकित से देख रहे थे। गोरैया के नन्हे नन्हे बच्चे चोंच खोले अपने आगमन की सूचना दे रहे थे। चींची करते हुए मानो कह रहे हो कि हमारे माँ बाप कहाँ हैं? कहाँ हैं हमारे माँ बाप? माँ कुर्सी से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए।
3: ये लो, ये दरवाजा भी खोल दिया। आ जाओ गोरैया।
2: और तभी गोरैया झट से उठकर अंदर आ गई और ची ची करते अपने बच्चों से जा मिली।
1: अरे
2: वो उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डाल रही थी। हम इस दृश्य को देखते ही रह गए। कमरा पक्षियों के कोलाहल से गुंजायमान था। अब पिताजी उनकी तरफ देख देख कर मुस्कुरा रहे थे।
1: सच में
6: छोटे और बड़े।
7: अरे छोटे बड़े।
8: जी दादाजी।
7: मैंने तुम्हारे लिए एक जगह बना दी है ताकि तुम यहाँ आराम से रह सको।
8: जी दादाजी।
7: यहाँ जगह भी अच्छी है और खाने को भी कितना कुछ है। जाओ बेटा अब तुम खेलो। हाँ जाओ बेटा।
9: ओ भाई छोटे।
10: हाँ भाई बड़े।
9: आज हम पार्टी करते हैं।
10: हाँ हाँ भाई क्यों नहीं, लेकिन पार्टी किस खुशी में?
9: हम यहाँ इतने दिनों से रह रहे हैं बिना किसी परेशानी के।
10: हाँ भाई बड़े ये तो तुमने सही कहा, यहाँ हमें कोई परेशानी नहीं। हमें तो यहाँ खाना भी कितना अच्छा मिलता है और हमारी तो रहने की जगह भी बढ़ती जा रही है।
9: सही कहा भाई तुमने, अब हम अपने और दोस्तों को भी यहाँ रहने के लिए बुला सकते हैं।
10: हाँ भाई बड़े मैं भी अपने सारे दोस्तों को बुला लूँगा।
9: सभी मिलजुल कर रहेंगे, रोज पार्टी करेंगे।
10: हाँ हाँ हम सब खेलेंगे और खूब पार्टी करेंगे।
11: इस तरह छोटे और बड़े वहाँ बड़े आराम से रहने लगे। क्या आप जानते हो वो छोटे और बड़े कौन थे और वो कहाँ रहने लगे? सोचो। सोचो सोचो। नहीं समझ आया तो चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ। वो छोटे और बड़े कोई और नहीं बल्कि चीनू के दांत में रहने वाले कीटाणु थे। और चीनू चॉकलेट खाकर बिना ब्रश किए जो सो गई थी, इसलिए आज छोटे और बड़े अपने और दोस्तों के साथ पार्टी मना रहे थे।

0: मेरे को तो चॉकलेट और मिठाई मिली,
1: तो रोटी और चावल मिले,
0: बहुत स्वादिष्ट है। छोटे?
2: हाँ भाई बड़े।
0: चलो और कुरेदते हैं दांतों में।
2: हाँ लगता है कुछ और खाने को मिले।
0: एक कुरेद दो।
3: कीटाणुओं के शोर करने से चीनू के दांत में दर्द हो जाता है और उसकी नींद टूट जाती है और वो इसकी शिकायत अपनी मम्मी से जाकर करती है।
4: आ, आ, आ, मम्मा मेरे दांत में बहुत तेज दर्द हो रहा है।
5: क्या दांत में दर्द? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना रोजाना ब्रश किया करो।
4: मम्मा मैं तो रोज ब्रश करती हूँ।
5: तुम सिर्फ सुबह ब्रश करती हो ना, रात को तुमने चॉकलेट खाई थी तब किया था ब्रश?
4: नहीं मम्मी।
5: देखा अब दिखाओ जरा कहाँ हो रहा है दर्द? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ तुम्हें। परेशान मत हो, दर्द ठीक हो जाएगा, बस जल्दी से ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा।
3: चीनू की माँ और चीनू डॉक्टर के पास जाते हैं।
5: नमस्ते डॉक्टर साहब।
6: अरे नमस्ते नमस्ते कमला जी, आइए आइए।
5: देखिए ना डॉक्टर साहब, इसके दांत में दर्द हो गया है।
6: बस बस घबराओ मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। नाम क्या है तुम्हारा?
4: चीनू।
6: चीनू, लगता है चीनी ज्यादा खाती हो हैं? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अच्छा मुँह खोलो मुँह खोलो। हाँ थोड़ा सा और। एक सेकंड बस, ये लो इस पे दवा लगा देता हूँ। हाँ इसे खा के कुल्ला करो बस। अब कुछ दर्द कम हुआ बेटा? हुआ ना? हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। देखो बेटा ये जो तुम्हारा दर्द है ना, ये कीटाणु की वजह से है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कीड़ा लगना कहते हैं। और ये इसलिए लगता है क्योंकि आप समय से दो बार ब्रश नहीं करते होंगे, क्यों है ना कमला जी?
5: जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
6: देखो बेटा कभी भी लापरवाही मत करना, क्योंकि दांत जो है हमारी सुंदरता का प्रतीक है ना, कितने अच्छे लगते हैं दांत। तो इसीलिए हमेशा दो बार, एक तो हमें सोकर उठने के बाद ब्रश करना चाहिए और उसके बाद सोने से पहले यानी रात को भी ब्रश करना चाहिए। और हमें कैसे करना चाहिए, सही तरीका क्या पता है? ऊपर नीचे ब्रश को ऊपर नीचे करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि खाने का कोई भी अंश दांतों में फंसा ना रह जाए, समझे? और हाँ समय समय पर डॉक्टर से दांतों की जांच भी करवानी चाहिए। कमला जी आगे से आप भी ध्यान रखिएगा।
5: जी बिल्कुल।
6: है ना
4: डॉक्टर साहब, क्या मैं कभी चॉकलेट नहीं खा सकती? कभी नहीं मीठा खाऊंगी मैं।
5: डॉक्टर साहब इसको मीठा बहुत पसंद है, ये मीठा के बगैर नहीं रह सकती।
6: समझ गया। देखो बेटा ऐसी बात नहीं है कि तुम मीठा नहीं खा सकती, तुम मीठा बिल्कुल खा सकती हो, चॉकलेट भी खा सकती हो, मिठाई भी खा सकती हो, लेकिन हाँ खाने के बाद हमेशा कुल्ला करना और दांत अच्छे से साफ करके सोना, जैसे मैंने बताया दो बार ब्रश। समझ गए ना? और एक बात और, अगली बार जब आओगी ना तो हमारे लिए भी चॉकलेट लेकर आओगी? लाओगी चॉकलेट? ये हुई ना बात। शाबाश, जाओ शाबाश।
3: ये सारी बातें सुनकर चीनू के दांत के कीटाणु परेशान हो जाते हैं और आपस में बातें करते हैं।
0: अरे भाई छोटे।
4: हाँ भाई बड़े।
0: आप तो हमारे आराम के दिन गए।
4: हाँ
0: हम तो अब भूखे ही रह जाएंगे।
4: हाँ, चलो दादाजी से चलकर।
0: हाँ चलो चलो दादाजी।
7: दादाजी भूख लगी है, बहुत भूख लगी है,
4: भूख लगी है।
8: हाँ बेटा मैं समझता हूँ। बेटा ये जगह अब बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है और यहाँ खाने को भी अब कुछ नहीं रहा। चलो हम किसी और दांत में चलकर वहाँ जगह बनाते हैं। चलो
0: चलो आओ दादा, चलो
4: चलो
0: दादा, चलो।
3: इस इस तरह सारे कीटाणु चीनू का दांत छोड़कर नए घर की तलाश में निकल जाते हैं। चीनू भी अब रोज रात को ब्रश किए बिना नहीं सोती। बच्चों, अगर आप नहीं चाहते जो कीटाणु अभी अभी बेघर हुए हैं वो आपके दांत में आकर अपना घर बना लें, तो आप भी चीनू की तरह रोज रात को ब्रश करने की आदत डाल लें।

0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आप ही के रेडियो साथी आरजे राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
2: हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
3: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
2: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं और जैसा कि आपने बताया इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
3: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है। फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
2: यानी कि आपके कहने के आधार पर क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो विसंगतियां हमारे शरीर में आ जाती हैं फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती हैं?
3: एक बार जब विसंगति आ जाती है जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है हाथ या पैर हो, तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है। इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र है।
2: जी जी जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए
3: आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसको, लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके इसके लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूर होता है उससे।
2: जी डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
3: ये हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह 2 चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये 2 तो हमारे खत्म हो चुके हैं लेकिन अगले वर्ष फिर से यह शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
2: जी बिल्कुल, और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर, उनके मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
3: जी, ये 2 वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
4: जी मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति ही खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
2: जी बताइए डॉक्टर।
3: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
2: जी डॉक्टर साहब की तरफ से ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की खोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है? ये
3: दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभाव से रोका जा सकता है, और इसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए,
2: तो दोनों को ही खानी
3: है। और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं, तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वहां पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
2: अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं।
3: जी
2: और डॉक्टर साहब एक
5: क्या फाइलेरिया की दवाई एक बार खा लेने से साल में पूरे साल इससे बचा जा सकता है?
2: बताइए डॉक्टर।
3: जी नितिन जी, ये एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
2: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
3: ये जब अभियान चलता है हम सभी से यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें, जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग उनमें सहयोग प्रदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें।
2: जी और डॉक्टर साहब एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण, मौसम या उम्र में ही होता है?
3: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो कीटाणु है वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है, या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता इसके जो कीटाणु हैं वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में 10 बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं।
2: अच्छा।
3: तो जब किसी का कोई भी अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
2: अच्छा। जी जी रात के 10 बजे से 2 बजे तक दबा ज्यादा
3: वह सबसे ज्यादा दिखते हैं। जी
2: जी
5: और मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फाइलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
2: जी बताइए।
3: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहां पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए।
2: जी
1: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज पर।
0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
6: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
7: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया बिल 90.8 FM सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कार्यक्रम आपका मन पसंदीदार कार्यक्रम है जिसका नाम है खेतीबाड़ी कार्यक्रम, और खेतीबाड़ी कार्यक्रम में हम अपने किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फिलहाल आपको बता देना चाहते हैं कि खेतीबाड़ी कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत को हम लेकर आते हैं, वो छोटी छोटी बातें हम अपने किसान साथियों तक पहुँचाते हैं जो हमारे किसान साथियों की आय में वृद्धि कर सके, उनकी आमदनी, उनकी खेती में मुनाफा कमा सके, ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातों को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से लेकर आते हैं। हम कोशिश करते हैं कि किसान साथियों को वो महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचे, जिससे हमारे किसान साथी अपनी खेती में बदलाव कर सके। क्योंकि हम और आप देख रहे हैं गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे गर्मी के मौसम में फिलहाल किसान साथी अपनी तैयारी में लग चुके हैं और गहरी जुताई तो किसान साथियों की हो ही गई है, ये सभी को पता है। अब इंतजार कर रहे हैं कि कब पानी गिरे और कब हम अपनी बोनी इस सीजन की कर सकें। लेकिन समस्या यहाँ पर ये आती है कि यहाँ पर चूंकि झाबुआ अगर जिले की बात करें, यहाँ पर पथरीला इलाका है, खासतौर पर ऊंची नीची जमीन है और ऐसे में हमारे किसान साथी अपनी खेतों में बीज लगाते हैं तो बहुत बड़ी समस्या आती है। हम अपने किसान साथियों से कहना चाहते हैं कि ऐसे में सहारा किसका लेना चाहिए, आप नजदीकी जो हमारे कृषि विभाग है वहां पर जाकर संपर्क करना चाहिए, साथ साथ में केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र जो होता है वहां पर जो वैज्ञानिक बैठते हैं वो आपको सही सलाह सही मार्गदर्शन आपको देंगे कि कौन सा बीज आपको लगाने के लिए आप तैयार करना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, कितनी दूरी पर उसको लगाना चाहिए, कौन सी विधि को अपनाना चाहिए, साथ साथ में वो फसल चक्र को भी बताते हैं क्योंकि फसल चक्र हमारे जो भूमि के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, खासतौर पर किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि वो इतनी मेहनत करते हैं अपनी खेती में, लागत लगाते हैं, बहुत ज़्यादा लागत भी लगती है, पानी देते हैं और जब मुनाफा की बात आती है, पैदावार की बात आती है तो कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हम छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? कि हमें पता ही नहीं रहता है। लेकिन आपका रेडियो टांटा व्हील 90.8 एफएम के माध्यम से आपको बता देना चाहते हैं, हम छोटी छोटी बातों पर जिक्र करेंगे, प्रकाश डालेंगे, वो कैसे हम अपने किसान साथियों की आय में वृद्धि कर सके वो हम छोटी छोटी बातें इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बताएंगे। खासतौर पर आज आप हमारे इस खास कार्यक्रम में, खेती बाड़ी कार्यक्रम में, आज कुछ हमारे किसान साथियों की बातचीत को हम लेकर आएंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से वो अपनी खेती करते हैं। इसके बाद हम आधुनिक खेती के बारे में यानी वैज्ञानिक विधि से हम किस तरीके से खेती कर सकते हैं उस पर भी जिक्र करेंगे, जैविक खेती कैसे कर सकते हैं उस पर भी एक प्रकाश डालेंगे, साथ साथ में इस मौसम में चूंकि गर्मी का मौसम है, आने वाले बरसात के पहले हम किस तरीके से बागवानी कर सकते हैं, वैज्ञानिक विधि से बागवानी कर सकते हैं उस पर भी हम एक नजर डालेंगे। लेकिन इससे पहले हम अपने कुछ किसान साथियों की बातचीत को हम सुनते हैं, आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में हमारे किसान साथियों को।
8: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम, आपरो रेडियो आपरी बातें।
9: ते सबुन राम राम
10: राम राम।
9: हाँ, ते हमो रेडियो टंटिया भील 90.8 चैनल था आया है ना, तो आज आपको बातें करूँ कि किकम तौर थी आपू पेलखा जेम खेती करता अन हावनी खेती मा केतरो अंतर आवी गयो। ते धुमा भाई मतलब थोड़ो बता रही किकम पेलखा आपू किकम खेती करता अन हमने किकम खेती करी रहा, इनमा हूँ अंतर आयो हमने
10: पहला डगरा नो खातर मतलब करते ला
9: खरी
10: तो ये बस आप डगरा न हरवा फरवा ने जगह कम पड़ गई पूरी खेड़ ले दी, तीने काम कम था गया डगरा, तीने बाद फिर ये धान पाकवा नहीं लगी, कम कम जोर था लगी और सरकार
11: खेती भी कम पड़ी
10: निकाली खातर बीज तीन ही फिर आदमी आगल बढ़ता है।
9: बिल्कुल तोला भाई मतलब तन हूँ लगे कि आप खातर हाउ खातर था डगरा ढांडा कम था गया खातर भी कम पड़ी गयी है ना, अनापो पहले यूरिया ने वो नाके नाके नाव जगह भी थोड़ी बड़ी भट्टावा लगी है कि नहीं, ते मतलब तार हूँ कहूँ के हूँ करवो जो है अपन हाव
11: अपन हूँ करवो जो है भाई अपन
9: पासा डगरा पालवा जो है के
11: अभी पालवा जो है
9: खरी
11: इनमा सुगवाड रेवो जो है के आपको अनुभव रेवो जो है के अपन कन के हमने पैसा वाला है ते आपको टास भर सके घर भर सकी
9: खरी
11: तो पासे जगह
9: सके
11: अगर खातर में मतलब जगह भटी रही अगर हमने पानी पड़ी गयो ने पानी तो फसल हुकवा वाले
9: है ना, तो पानी जैसे कि अपन की पानी नहीं घनी समस्या है
11: समस्या
9: है ना, तो पानी नहीं घनी समस्या आपू खाली जेर पहले अपन पानी ऊपर नो पानी पड़े तो तीन मास आपू जत्री कमाई आवी है ती आवे
11: है
9: ना, पहले कहते ऊपर वाला नी मेहरबानी थी जत्री पड़े जत्रु पाके त्यू खरू है ना, तो आर की मतलब तमो तालाब हरू या इनी योजना नहीं मिला आर की तोलिया भाई एम बताड़ो के वरे साल अपन धान जो आपू करी रहा है इनमा मतलब वद्दी रो के जो घटतू रही रो
12: पानी पड़े तो वद्दे
9: पानी पड़े
12: पानी नहीं पड़े तो घटे
9: घटे
12: हाँ इनमा खदवार दबर पड़ी रही
9: हाँ
12: खदवार दबर पड़ी रही तो जेतरा वो बोझी
13: हाँ ये कोई कन पैसो है तो दवा संटे तो धान वद्दे अन कीड़ खाई जाए अन खातर ने रुपयों जड़े कोई गरीब कन नहीं मिल रुपया तो फिर खातर नहीं मिले फिर रुपया कहां तो था बन के मार पाके मारन पाके पण पलगन में सगवड़ नहीं मिले भाई तो कहां तो धान पाके
12: खाई जाए मतलब
13: खाई जाए दवा
12: नहीं मतलब कीट कीड़ा नेवा पड़े नहीं और दवा भी अपन समय समय पर करनी पड़े है ना तो तिना
13: लेवे पड़े
12: हां
13: तो कोई कन रुपया से कोई कन नहीं मिले गरीब बोलन ते नहीं मिले कहां ते ले तो बेदन में भी खाई जाए कीट पूरी ते
12: लगातार आठ दिन तक लगातार नंगले तक दवा साठी पड़े बाकी
9: जैसे की इल्ले भी पड़े है ना तो इन्हें दवा साठवी जरूरी
12: जरूरी जेतर पौधो आप बोवी नहीं तेज दवा सलो करी पड़े ते पाकी की पीला पत्रा फरी गया पर दवा बंद था धान हर धान नहीं पाके हर धान दवा साठी
9: पड़े बिल्कुल हाँ ये बता दो कि पेलखा आपू जैसे की पेलखा तो जर आप पेलखा खेती करता तेती दवाईयो नहीं तो नहीं खातर होता
12: है ना
9: जनवर नहीं
12: खाली पड़ती एक बार खाली अब अपने दवा साठवा मलेरिया वाला दवा साठेगा खाली फुकाट देता अरे ये असली मानी दवा त्या लावी साठे त्या हवेरा त्या साठे हवेरा देखे ती लग देवी ती
13: कैसे ना हजार पंद्रह सौ रुपये ले
12: मतलब
13: ने पाने मरी कर भी रहे तेरे में लेवा जाए तेरे में रुपये नहीं है ते खाई जाए तो आदमी कहीं थे ना वो टाइम
9: खरी
12: जर ने आसपास दवा जो रही
9: बिल्कुल बिल्कुल आते आपको देख एक बात यू भी देखी कि पेलखा आपू सोयाबीन होयाबीन तो करता नहीं है ना पेलखा आपू करता अपन कोदरो है राणो है पूरी है ना बादली है
13: वना खातर
12: क्यों वना खातर
9: क्यों वना खातर ने वगैरह दवा नु पाकी जाता

खाद की समस्या रहती है, तमाम प्रकार की समस्या रहती है, तब भी हम किसान साथियों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि तब भी हमारे किसान साथी इतनी छोटी जमीन में, पथरीले इलाका में और ऊंची नीची जमीन है, तब भी हमारे किसान साथी खेती करते हैं। लेकिन साथियों घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटा व्हील 90.8 FM खुल गया है, तो आपको भरपूर जानकारी हम उपलब्ध कराएंगे। बस आपको सीखने की आवश्यकता है, आपको ट्रेनिंग्स की आवश्यकता है, आपको बात करने की आवश्यकता है। आपको लगता है कि हम वैज्ञानिकों से या कृषि विभाग के अधिकारियों से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यहां पर रेडियो स्टेशन पर आइएगा और हमसे बात करिएगा, अपनी बात को रखिएगा, अपने सवाल छोड़िएगा, जैसा कि हमारे कुछ साथियों ने, किसान साथियों ने बताया है। अब बात आती है कि किसान साथियों की आय कैसे दुगनी हो। हम अपने श्रोता साथियों को बता देना चाहते हैं कि जैविक खाद का इस्तेमाल जो हमारे पूर्वज करते हुए थे, किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से आय में वृद्धि कर सकते हैं, साथ साथ में बागवानी भी हमारे किसान साथी कैसे कर सकते हैं, आइए सुनते हैं इस खास रिपोर्ट को। लेकिन साथियों रिपोर्ट को सुनने से पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम, आइए सुनते हैं इस प्यारे से बीली गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटा भील 90.8 FM, आपका रेडियो अपनी बात है।

0: स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: उनकी लागत को हम कम कर सकते हैं, दोनों जो विषय है हमारे इस पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है कि कैसे हमारे किसानों की जो लागत है वो कम हो सकती है। साथ ही यहाँ डॉक्टर अब्बास आपसे हम सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरीके से हमारे जो किसान है वो बायोगैस लेवी की बात जब की जाती है तो कुछ किसान ऐसे हैं जो इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लाभ भी ले रहे हैं, लेकिन जब एक किसान को पता चलता है कि इसके जरिए हमारी जो फसल है उसकी ज्यादा पैदावार हमें मिल सकती है तो क्या उसी माध्यम से अब किसान इसको और अपनाने लगे हैं?
2: आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो भी आज हमारा किसान है कोई भी खेती कर रहा है तो पौधों के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसकी आपूर्ति होना बहुत जरूरी है। हम कोई भी रासायनिक खाद लें उससे एक या दो पोषक तत्व ही मिल पाते हैं, लेकिन बायोगैस सलरी एक ऐसा खाद है जो जैविक भी है और साथ साथ में इसके अंदर पोषक तत्व जो एक पौधे को 16 से 17 की आवश्यकता होती है वो सभी के सभी संतुलित मात्रा में इसमें विद्यमान है। इसके साथ साथ में इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारी जमीन को उपजाऊ बनाने में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं और साथ ही साथ में जो किसान की लागत है वो कम की जा सकती है। और किसान की एक और घर में आवश्यकता होती है एनर्जी की, इन्हीं को खाना बनाने के लिए उसको ऊर्जा चाहिए और आज आपने देखा होगा कि इसके भाव काफी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बायोगैस सलरी से जो हमें गैस मिलती है वो किसान की जो घरेलू आवश्यकता है ऊर्जा की उसको पूरा कर सकती है और साथ ही साथ में ये ऊर्जा जो है ये वातावरण हितैषी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है और वातावरण में किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, रादर दुष्प्रभाव को कम करती है और किसान इसको अपना के आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इसका ये बहुत ही सेफ है, सुरक्षित है, इससे आग लगने का भी खतरा कम हो जाता है और प्लांट जो बनता है उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एक्सेस गैस अपने आप बाहर निकल जाए, किसी प्रकार से ना तो प्लांट को नुकसान हो ना ही किसी प्रकार से घर में जो किसान की महिला जो हमारी महिलाएं खाना बनाती हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान हो और इससे घर भी साफ सुथरा रहता है क्योंकि इसके अंदर धुआं ना होने की वजह से और ये महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभदायक है। तो ये एक ऐसी तकनीकी है जो हर किसान को जो भी पशुपालन करता है उसको अपनानी चाहिए और इसके अंदर जो उपयोग है चाहे हम मुर्गी पाल रहे हैं चाहे बत्तख पाल रहे हैं या हम भैंस या गाय पाल रहे हैं, सब्जी का जो हमें सह उत्पाद है जो उसका वेस्ट है उसको हम वेल्थ बनाने का काम कर सकते हैं। इससे दोनों चीजें मिलेंगी, खाद भी मिलेगा और साथ ही साथ में अच्छी गुणवत्ता की गैस मिलेगी तो किसान की दोनों आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी और जो खाद की गुणवत्ता है वो दूसरी किस्म की खादों से बेहतर होती है और काफी अच्छी होती है और ये मिट्टी के तीनों गुणों में लाभदायक होती है, चाहे रासायनिक हो, भौतिक हो या जैविक हो, तीनों में लाभप्रद होती है,
1: लाभ है वो किसानों को मिल सकता है। और वेस्ट टू वेल्थ की अगर बात की जाए, देखिए यहाँ आपकी जो लागत है ना सिर्फ कम हो रही है बल्कि वो शून्य के बराबर आप उसको एक तरीके से देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो आपको फायदा मिल रहा है वो काफी अधिक। तो इसके जरिए किस तरीके से फायदा आपको हो सकता है इस बारे में आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर।

0: बायोगैस स्लरी फसलों के लिए काफी काम की चीज है। दरअसल बायोगैस संयंत्र में गोबर गैस की पाचन क्रिया के बाद 25% ठोस पदार्थ का बदलाव गैस के रूप में होता है और 75% ठोस पदार्थ का बदलाव खाद के रूप में होता है और इसे ही बायोगैस स्लरी कहा जाता है। बायोगैस स्लरी को किसान अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जब खाद सड़ जाती है तो उसमें किसी भी तरह की खाद या बीज नहीं होता है, जो खेतों के लिए काफी फायदेमंद रहता है। 2 घन मीटर के बायोगैस संयंत्र में रोजाना 50 किलो के हिसाब से 18.25 टन गोबर एक साल में डाला जाता है। उस गोबर में 80% नमी युक्त करीब 10 टन बायोगैस स्लरी जैविक खाद मिलती है। ये खेती के लिए काफी अच्छी खाद साबित होती है। इसमें 1.5 से 2% नाइट्रोजन, 1% फॉस्फोरस और 1% पोटाश होता है। मिट्टी का आहार जीवांश और अच्छी खाद होता है। जीवांश गोबर पौधों व जीवों के अवशेष को खाद के रूप में मिट्टी को मिलते हैं। जीवांश खादों के इस्तेमाल से पौधों को समस्त पोषक तत्व मिल जाते हैं। साथ ही इनके इस्तेमाल से उगाई गई फसलों पर रोगों और कीटों का प्रकोप बहुत कम होता है, जिससे हानिकारक रसायन कीटनाशकों के छिड़काव की जरूरत नहीं रह जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि फसलें पूरी तरह से रसायन मुक्त और स्वस्थ होती है।
1: तो जाना आपने किस तरीके से आप की जो फसलें हैं वो रसायन मुक्त हो सकती हैं, उनमें लागत आपकी बेहद कम हो सकती है और इसके साथ ही आपका जो मुनाफा है वो दोगुना नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा आपको मिल सकता है। साथ ही आपकी तमाम जो आवश्यकताएं हैं, घरेलू आवश्यकताएं, वो भी इसके जरिए पूरी होती हैं, जिसकी जानकारी डॉक्टर भास हमें यहां दे रहे थे। लेकिन यहां अब डॉक्टर पटेल आपके पास भी हम आना चाहेंगे। अगर बागवानी में खासतौर से अलग अलग फलों की हम बात करते हैं, फलदार वृक्षों की बात करते हैं, कितना महत्व कि उसकी नर्सरी की जानकारी एक किसान को हो और उसमें भी अगर वैज्ञानिक विधि उनको पता है तो कितना लाभ उनको आने वाले समय में आगे चलकर उसके जरिए मिल पाता है।
2: देखिए, बागवानी पौधों में नर्सरी की बहुत ही बड़ी उपयोगिता है और नर्सरी के पौधों की जो मांग है, राज्यों को देखेंगे और देश में देखेंगे तो मांग भी काफी बढ़ी है
1: जी।
2: और नर्सरी की उपयोगिता इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाती है इसमें कि जो हम पौधे लगाते हैं बागवानी फसलों की, खास करके फल वृक्षों की
1: जी,
2: तो इसमें करीब 4 से 5 वर्ष के बाद फलन अच्छे से आना शुरू होता है। वैसे 3रे वर्ष से फलन आता है। तो अगर हमारी जो पौधे की गुणवत्ता अच्छी नहीं हुई
1: जी,
2: तो जो 3-4 साल के बाद फल लगने वाला है उसमें, या 5 साल के बाद 3-4 साल के बाद जो फल आया वो बहुत खराब होगा। वो हमारी गुणवत्ता को जो हम चाहते हैं वो नहीं होगा। तो इसलिए सही किस्मों को पौधा हो, रोग मुक्त हो और पौधा बहुत स्वस्थ हो, तो जिससे कि उसमें आने वाले दिनों में अच्छे फल लग पाए और किसानों को जो फल के बाग लगाते हैं उनको अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सके
1: जी। बिल्कुल,
2: तो इसलिए बहुत जरूरी है कि नर्सरी से जहां से पौधे लिए जाएं या जो खुद किसान भाई बनाना चाहते हैं वो गुणवत्ता वाले हों और अच्छे हों
1: जी। तो देखिए, इस बात का ख्याल आपको रखना होगा और आगे भी आपको विस्तार से हम जानकारी देंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी।
0: इस समय किसान कई तरह के फलदार पेड़ों की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। फलों के नए बाग लगाने के लिए इस महीने बाग का रेखांकन करके गड्ढे खोद लेने चाहिए। पौधशाला के पौधों की नियमित सिंचाई, गुड़ाई और निराई करते रहना चाहिए। बाग में 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। मॉनसून के दौरान अनार के नए बाग लगाने के लिए रेखांकन और गड्ढे खोदने का काम मई और जून में ही पूरा कर ले। आमतौर पर 4 से 5 मीटर की दूरी पर अनार की रोपाई की जाती है। पौध रोपण के एक महीने पहले 60-60-60 सेंटीमीटर के आकार के गड्ढे खोदकर उन्हें 15 दिनों के लिए खुला छोड़ दें। इसके बाद गड्ढे की ऊपरी मिट्टी में 10 से 15 किलो गोबर की सड़ी खाद, 1 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट, 50 ग्राम क्लोरोपाइरीफॉस चून मिट्टी में मिलाकर गड्ढों को सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दें। लीची की बात करें तो लीची के लिए बाग का रेखांकन भी इस महीने कर ले। रेखांकन के बाद 3x3 फीट आकार के गड्ढे खोद ले और उन्हें एक महीने बाद गोबर की खाद, रासायनिक खाद व मिट्टी की बराबर मात्रा से भर ले। आम के लिए मॉनसून आने से पहले नए बाग लगाने के लिए इस महीने उचित दूरी पर बाग के रेखांकन के बाद गड्ढे खोद लेने का काम पूरा करें। नर्सरी में बीजू पौधों की जरूरत के अनुसार सिंचाई करें और खरपतवार निकाल दें। इस तरह आप सही समय पर फलदार पेड़ों की नर्सरी तैयार करके आने वाले समय में अच्छा मुनाफा ले सकते हैं।
1: ऊर्जा की आवश्यकता भी पूरी हो रही है और आपके स्वच्छ वातावरण बनाने में काफी मदद मिल रही है, तो इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और मैं यही कहना चाहूंगा कि बायोगैस प्लांट के अंदर वो सभी गुण उपलब्ध हैं जो आपके दूसरे अमृत में उपलब्ध हैं, सभी के सभी इसके अंदर भी उपलब्ध हैं। हाँ, अगर इसको फर्दर इनरिच करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर जैसे ट्राइकोडर्मा विल्डी वगैरह है उनको ऐड कर सकते हैं, या कुछ सूक्ष्म जीव जैसे हमारे ये एजोडोबैक्टर है इनको ऐड कर सकते हैं, वो डाल सकते हैं, तो उससे और थोड़ा इनरिच हो जाएगा और बेटर हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बायोगैस सलरी या बायोगैस प्लांट ही आपके लिए बेहतर तकनीकी है और ये हमारे सभी किसान भाइयों को अपनानी चाहिए और ये सभी फसलों में अच्छा काम करती है।
3: जी, साथ ही डॉक्टर अब्बास जानना चाहेंगे आपसे, जो बायोगैस सलरी की हम बात कर रहे हैं या प्लांट की हम बात करें, तो क्या एक जो किसान है अपने स्तर पर इसको बना सकता है या किसी विशेषज्ञ के दिशा निर्देश के अनुसार ही उनकी देखरेख में ही इसका निर्माण कराया जाए?
1: नहीं, जो भी प्लांट बनेगा तो प्लांट बनाने के लिए कुशल कारीगर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो प्लांट बनता है ये एयरटाइट बनता है, इसके अंदर न केवल पानी बल्कि हवा भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अगर हवा भी बाहर निकल जाएगी तो आपकी गैस इकट्ठी नहीं होगी और आपका प्लांट फेल हो जाएगा। प्लांट तभी सक्सेसफुल होगा जब इसके अंदर अच्छी किस्म की सामग्री का उपयोग किया जाए, एक कुशल कारीगर इसको बनाए और साथ साथ में इसका सही से मेंटेनेंस या प्रबंधन किया जाए, जिससे आपको अच्छी खाद भी मिलती रहेगी और अच्छी गैस भी मिलती रहेगी। दूसरी बात यह, जो हमारा खाद है हम उसी खाद को तैयार मानेंगे जिस खाद के अंदर कोई किसी किस्म की बदबू नहीं आ रही है और मच्छर मक्खी नहीं बैठ रहे हैं। अगर मच्छर मक्खी बैठ रहे हैं और बदबू आ रही है तो हमारी खाद कच्ची है, कच्ची खाद अगर खेत में ले जाएंगे तो उसका थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन जिस खाद में बदबू नहीं आ रही है, मच्छर मक्खी नहीं बैठ रहे हैं, यानी कि खाद पूरी पक चुकी है, तो वो खाद जो है आपके खेत में जब जाएगी तो जो जमीन के अंदर बहुत सारे ऐसे हानिकारक कीट है जैसे दीमक ही है, तो उनके प्रकोप को कम करेगी, खत्म करेगी और उसको भी कम करेगी, साथ साथ में आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएगी और सबसे अच्छी बात है कि आपका लागत को बचत करेगी, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, तो इसको आप जरूर अपनाएं और आगे बढ़ाएं।
3: जी, ये काफी महत्वपूर्ण कि देखिए आपकी जो लागत है कम होगी और मुनाफा बढ़ सकेगा।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
5: रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमने जानी कि किस तरीके से जो बायोगैस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर गोबर गैस जिसे हमारे गांव क्षेत्र में कहा जाता है, गोबर गैस का इस्तेमाल और जो उससे निकलने वाला जो मल रहता है उसका इस्तेमाल हम किस तरीके से खेतों में कर सकते हैं और जिससे जो लागत लगती है हमारे खेतों में, खासतौर पर हम रासायनिक खाद उसमें डालते हैं जिससे उसकी उर्वरा शक्ति जो रहती है वो कम होती चली जाती है, लेकिन जो उन्होंने पद्धति को बताया है कि किस तरीके से बायोगैस हम लगा सकते हैं जिससे हम घर पर हम लोग खाना पका सकते हैं और जो उससे निकलने वाला जो मल रहता है उसका हम अपने खेतों में उसको डाल सकते हैं जिससे हमारी लागत कम हो सकती है, तो ये छोटे छोटे उपाय जो हमारे विशेषज्ञों ने बताए हैं खासतौर पर ध्यान देने वाले बातें हैं कि किस तरीके से हम अपनी आय को हम इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आय को हम बढ़ा सकते हैं। और खासतौर पर उन्होंने बागवानी पर भी एक जिक्र किया है कि किस तरीके से हमारे किसान भाई बागवानी पर भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि मौसम अच्छा है, बागवानी के लिए उपयुक्त समय है और ऐसे मौसम में हमारे किसान साथी क्या करें, यदि बागवानी लगाना चाहते हैं, पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं तो गड्ढे खोदकर डाल दें, 15 दिन तक डले रहने पर इसके बाद हम अपने गड्ढों में रुपाई करना स्टार्ट कर देंगे, इसके बाद हम जो पानी गिरेगा उससे उत्पादन हमारा अच्छा रहेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे किसान साथियों को सोचने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। एक बार फिर से पुनः हम कहना चाहेंगे अपने किसान साथियों को कि ये छोटी छोटी बातें जरूर हैं लेकिन फायदेमंद जरूर हैं, क्योंकि हम जब मिट्टी परीक्षण कराएंगे, स्वास्थ्य का परीक्षण उसका मिट्टी का कराएंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमारे मिट्टी में किस तत्व की कमी है और उस तत्व को किस दवाइयों द्वारा किस हम वैज्ञानिक पद्धति से इसको भरपाई कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि फसल चक्र को अपनाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। जिन किसान साथियों ने पिछली साल जिन खेतों में जैसे मूंगफली करी थी, तो उस खेत में हमारे किसान साथी कपास की खेती कर सकते हैं, जिन खेतों में सोयाबीन किया था मूंगफली कर सकते हैं, मूंगफली जहां पर की थी वहां सोयाबीन कर सकते हैं। तो फसल चक्र का अपनाना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम रहता है और किसान साथी ऐसे ही अपने पैसे को बचा सकते हैं। दूसरा, कृषि विभाग की ओर से तमाम प्रकार की योजनाएँ हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। जैविक विधि का इस्तेमाल हमें करना चाहिए जिससे लागत कम हो आमदनी अधिक हो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे किसान साथियों को सोचने और समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमें विश्वास है कि हमारी इन बातों का हमारे किसान साथी गौर करेंगे और ख़ास तौर पर हम अपने किसान साथियों को इस कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे, विषय विशेषज्ञ की सलाह लेंगे जिससे हमारे किसान साथियों के जो भी सवाल हैं उन सवालों का जवाब उनको सही और समय पर मिल सके। साथियों, हमें आशा है कि इस कार्यक्रम को सुनकर आप जरूर एक नया कदम उठाएंगे, नई ऊर्जा के साथ नई पद्धति के साथ अपनी खेती की तैयारी करेंगे। फिलहाल में यदि आपके आसपास कोई तालाब है उसका पुनरुद्धार करा सकते हैं, साथ साथ में साफ सफाई करा सकते हैं, कुओं की साफ सफाई करा सकते हैं, क्योंकि उपयुक्त समय है। ऐसे में किसान साथी पानी को संरक्षण करने के लिए जो भी उपाय हैं उसको अपना सकते हैं और जो भी बरसात का पानी है जो ढलान जगह है वहाँ से निकलकर सीधा नदी तालाबों में चला जाता है जिससे वो हमारी जो मिट्टी रहती है उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि वो ढलान द्वारा कहीं पर भी चला जाता है पानी और रुकता नहीं है। तो ऐसे में किसान साथी समतलीकरण अपनी खेतों का करा सकते हैं, एक से खेत करा सकते हैं, आसपास मेड़ बंधान कर सकते हैं, तालाब का गहरीकरण कर सकते हैं, तालाब के आसपास मिट्टी डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि तालाब लीकेज है तो उसका भी पुनरुद्धार करा सकते हैं। तो ये तमाम प्रकार की बातें हैं जो हमारे किसान साथियों को समझने की बातचीत है, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है। ऐसे में किसान साथी बागवानी के साथ साथ खेती पर भी विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में भी आपका अहम योगदान रहता है। तो चूंकि जंगल यहाँ पर हैं काफ़ी अच्छा हरा भरा है, लेकिन कुछ पौधे हैं, कुछ प्लांटेशन हैं, कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अपना पर्यावरण भी ना डगमगा पाए और हम अपने अच्छी हरी भरी हवा हमें मिलती रहे, सांस अच्छी मिलती रहे और कोई समस्या हमें ना आए। पानी को भी उबाल कर हमें पीना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पानी में भी बहुत ज़्यादा समस्या है, तो हमें पानी को बचाना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि हमारे किसान साथी जो बरसात का जल रहता है उसको अपनी छतों से कहाँ एक गड्ढे खोद कर उसमें उतार देते हैं और उस गड्ढे में जो पानी रहता है उसका हम इस्तेमाल अपने गाड़ी धोने में या तमाम प्रकार की चीज़ों में कर सकते हैं। तो ये पानी बचाने के सरल तरीके हैं जो हमारे किसान साथियों को लोग अपनाना होगा और करना होगा, अपनी आजीविका को बनाना होगा, बढ़ाने के लिए आप मुर्गी पालन बकरी पालन ये कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूह एक माध्यम हो सकता है, जो हमारी महिलाएं किसान महिलाएं हैं, क्योंकि कदम से कदम मिलाकर हमारी किसान महिलाएं आगे बढ़ती हैं, साथ देती हैं, किसानी करती हैं, हल बखर चलाती हैं। तो उन किसान महिलाओं को हम कहना चाहेंगे कि आप भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और स्वयं सहायता समूह का विशेष तौर पर ध्यान रखें किस तरीके से आपको चलाना है। हमारे भी तमाम प्रकार के कार्यक्रम इसका रेडियो के माध्यम से चलाए जाते हैं, तो उसको गौर से सुनो कि किस तरीके से स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बचत जमा की जाती है और उस बचत से आप किस तरीके से अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपन व्यवसाय कर सकते हैं, क्या आजीविका के साधन हो सकते हैं, आप सोचिएगा समझिएगा और अपने जीवन में अपनाइएगा। इसी के साथ साथियों वक्त हो चुका है आज के हमारे इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 94251436303। इस नंबर पर कॉल करके आप हमें अपने जो भी आपके विचार हैं या फिर जो भी आपकी समस्या है उसको आप पूछ सकते हैं। हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम मुलाकात और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: दोस्तों, जिंदगी के रंग कभी तेज होते हैं, कभी बिल्कुल शांत, कभी शोर में मिलते हैं और कभी खामोशी में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस शोर के बीच भी एक गहरी छाप छोड़ जाते हैं, आपके जहन में, आपके जीवन में, बिना आवाज ऊंची किए, सिर्फ अपने कलम से लिखे शब्दों के जरिए। आज का सफर ऐसी ही एक शांत सोच से भरी आवाज के साथ है। आज जिंदगी के रंग गीतों के संग पर SN रेडियो के इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिनके लिए शब्द सिर्फ लिखने का जरिया नहीं, जिंदगी को समझने का एक तरीका है। डॉक्टर दीपा वंजानी, PMB गुजराती साइंस कॉलेज इंदौर के इंग्लिश डिपार्टमेंट की हेड, इंग्लिश लिटरेचर में PhD और 3 सालों से टीचिंग, लर्निंग, राइटिंग, सोशल वर्क और स्टूडेंट्स के सपनों का हिस्सा। उनका लिखना क्लासरूम की 4 दीवारों तक सीमित नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे नेशनल डेली से लेकर लंदन से पब्लिश होने वाली कॉन्फ्लुएंस साउथ एशियन पर्सपेक्टिव्स तक उनका काम पढ़ा गया है और महसूस किया गया है। उनकी पोएट्री बुक शिफ्टिंग सैंड्स हांगकांग से पब्लिश हुई और उसी सिलसिले में रेडियो और टेलीविजन हांगकांग पर उनका लाइव इंटरव्यू भी हुआ, जहां उनके शब्दों ने समुन्दर पार भी अपनी जगह बनाई। बच्चों के लिए लिखा गया उनका 1 एक्ट प्ले जेम्स रॉबिन, 20 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स, ट्रांसलेशन और एडिटिंग का काम और 5 PhD स्टूडेंट स्कॉलर्स को गाइडेंस देना। उनका ये सफर सिर्फ एकेडमिक नहीं है, एक गहरा जिम्मेदारी भरा और इंसानियत भरा सफर है। फर्स्ट प्राइज विनर ऑल इंडिया एसे राइटिंग बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन डिप्लोमैट्स से लेकर नेशन बिल्डर अवार्ड बाय रोटरी इंटरनेशनल, नारी शक्ति को प्रणाम अवार्ड और सीनियर जर्नलिस्ट अवार्ड बाय वुमेन्स प्रेस क्लब तक, ये सभी सम्मान उनके इस सफर को रोशन करते हैं। लेकिन शायद उनका सबसे बड़ा सम्मान वो विश्वास है जो उनके स्टूडेंट्स और उनके रीडर्स उन पर करते हैं। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आज हम डॉक्टर दीपा वंजानी से उनके अचीवमेंट्स नहीं, उनके एहसास, उनकी जर्नी और उनके शब्दों के पीछे के इंसान को जानेंगे। वेलकम डॉक्टर दीपा वंजानी हमारे आज के इस खास एपिसोड पर जिंदगी के रंग गीतों के संग के साथ।
1: थैंक यू सो मच तनुषा फॉर हैविंग मी ऑन द शो।
0: हम बहुत बहुत बहुत खुश हैं आज आपको इस इंटरव्यू में अपने साथ पाकर। हम अपने सफर को आगे ले जाते हैं एंड डायरेक्ट डाइव करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। डॉक्टर दीपा, आपने इंग्लिश लिटरेचर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, लेकिन वो पहला पल अगर आपको याद हो जब किसी पोएम ने, किसी लाइन ने या किसी टीचर ने आपके अंदर वो एक एहसास जगाया हो, उस पल में आपने डिसाइड किया कि शब्द ही आपका घर हैं और आपको ये एहसास हुआ कि वर्ड्स आर एक्चुअली द प्लेस आई बिलोंग, मैं यहीं के लिए बनी थी और वर्ड्स में मैं अपना यूनिवर्स पा सकती हूँ, कोई ऐसा एक पल हो जो एक टर्निंग पॉइंट हो आपके जीवन का?
1: तनुषा, व्हेन आई लुक बैक तो ऐसे दो चीजें बहुत एम्बेडेड है मेमोरी में। एक ये था कि व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड तो मुझे मिसेस नाजरेथ सेंट मैरीज कॉन्वेंट अजमेर में इंग्लिश पढ़ाते थे
0: जी,
1: और मिसेस नाजरेथ का प्रोनंसिएशन वाज फ्लॉलेस, वो बहुत सुंदर तरीके से शब्दों को प्रोनाउंस करती थी और मैं क्लास में वंडर स्ट्रक होती थी केवल उनका लिप्स का मूवमेंट देखकर कि वो कैसे कब मुंह कम खोलती हैं, कब लिप्स को एक्सपैंड करती, क्योंकि उनके प्रोनंसिएशन रियली बहुत अच्छे थे। तो वो जो शब्दों के प्रोनंसिएशन से लगाव था वो आई थिंक जब आप ना मेमोरी में जाते हो वापस तो समझ आता है कहाँ से आया, तो ये मिसेस नाजरेथ से आया। और दूसरा कि बुक्स इंटीग्रल पार्ट थे हमारे घर का, क्योंकि मेरे फादर बहुत एविड रीडर थे, तो उनको तो हमारे मेरे को याद है कि मैं बड़ी ही ऐसे हुई कि ड्राइंग रूम में एक बड़ा रैक है और उसमें बहुत सारी बुक्स अरेंज्ड हैं।
0: जी
1: तो मेरे ग्रोइंग अप इयर्स में मतलब रीडिंग वाज ऐसे इंटीग्रल पार्ट कि ये नॉर्मल होता है, लोग ऐसे ही करते हैं। तो आई फेल इन लव विद बुक्स। तो स्कूल टाइम में ही 9th ऑनवर्ड्स जो एलिस्टर मैकलिन, फ्रेडरिक फॉसेट, सिडनी शेल्डन, ये पढ़ना स्टार्ट हो गया। एंड 12th में आई रेड क्राइम एंड पनिशमेंट दोस्तोयेवस्की का,
0: जी
1: जो मेरे पापा की ही थी, ओरिजिनल कॉपी थी उनके पास।
0: जी
1: तो वो पढ़कर, तो मतलब दोस्तोयेवस्की पढ़ने के बाद इट वॉज नॉट द सेम एवर। तो आई थिंक दैट वॉज द फर्स्ट लव।
0: जी, बहुत ही सुंदर और बहुत गहरे आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, और ये हमें बताता है कि कैसे आपकी स्कूलिंग, आपकी टीचर्स, आपके गाइड्स, आपके पेरेंट्स जो घर में माहौल आपको देते हैं, उसी से आपकी आगे की जर्नी मैप होती है। बहुत सुंदर। हम आगे चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। आप 30 सालों से, 3 डेकेड से टीचिंग के इस फील्ड में हैं, और आपने जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन को बदलते देखा है। आज के स्टूडेंट्स, पहले के स्टूडेंट्स, सब, मतलब यू हैव गॉन थ्रू अ होल जर्नी विथ स्टूडेंट्स इन योर लाइफ। तो आपकी लाइफ में आपको क्या लगता है कि पहले किस तरह से स्टूडेंट्स थे, अब क्या चेंजेस हैं, और कोई ऐसी एडवाइस जो आपको, आप यंग माइंड्स को, क्योंकि आप एक मेंटोर हैं, एक गाइड हैं, आप एक एजेंट फॉर चेंज हैं फॉर स्टूडेंट्स, तो कोई एक, पहली तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या चेंजेस आप एक्सपीरियंस करते हैं। आई एम श्योर बहुत सी चेंजेस आपने एक्सपीरियंस किए होंगे। और दूसरा सवाल उसी से रिलेटेड मैं चाहूंगी कि आप इन यंग माइंड्स को, कोई यंग एस्पायरिंग राइटर्स, एकेडमिशियंस को अगर देना चाहें तो वो क्या होगा?
1: चेंज तो मैसिव आया है, और ये चेंज जो है ये और भी ज्यादा प्रोनाउंस्ड हुआ है पोस्ट कोरोना,
0: जी
1: क्योंकि कोरोना का जो इम्पैक्ट रहा है वो आई थिंक काफी हद तक इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल
0: जी
1: दोनों जो वेरिएंट्स हैं लाइफ के, उसके ऊपर बहुत प्रभाव डाला है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समय जो स्कूल कर रहे होंगे, और फिर क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ तो फिर वो कॉलेज जाते हैं,
0: जी
1: तो वो कहीं पर वो इम्पैक्ट रिफ्लेक्ट होता है। क्योंकि अब जो वो ट्रेंड था कि एकेडमिक्स में आप सिर्फ ग्रेजुएशन पे फोकस कर रहे हो, क्योंकि डिग्री बहुत इम्पोर्टेंट है,

0: एनर्जी जा रहा है
1: जी
0: तो यहाँ पे फोकस कम है। और एक बहुत बड़ा ट्रेंड जो चेंज हुआ है क्योंकि एआई जनरेटेड इतना कंटेंट अवेलेबल है
1: जी
0: असाइनमेंट बनाने के लिए, आंसर्स रेडी करने के लिए,
1: जी
0: तो हम सिर्फ बोलते हैं और जवाब आ जाते हैं। और ये समझ में आने लगा है स्टूडेंट्स को बाय एंड लार्ज कि इतना लिखने से आंसर रेडी हो जाता है,
1: जी
0: तो बस इतना अगर पासिंग मार्क्स आ गए तो ठीक है। और लाइब्रेरी में बैठना, बुक्स इशू कराना, नोट्स बनाना, पहले के स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में बैठ के नोट्स बनाते थे, बुक्स इशू कराते थे, उनको टेक्स्ट बुक्स रेफरेंस बुक्स का एटलीस्ट डिफरेंस पता था। अभी रेफरेंस बुक्स तक जाने वाले स्टूडेंट्स बहुत कम हैं और वो सीरियसनेस जो थी क्लासरूम की वो ऑफ कोर्स बहुत ही कम हुई है टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। ये एक मैसिव शिफ्ट है स्टूडेंट्स के बिहेवियर में। और एडवाइस तो आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स कि ये जो जल्दी है ना आप लोगों को
1: जी,
0: जल्दी में नहीं होता, वो कबीर दास जी की एक लाइन है, उनका एक बहुत फेमस दुआ है, इफ आई एम रिमेम्बरिंग इट करेक्टली, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा रुत आए फल होए।
1: जी जी जी
0: तो धीरे धीरे ही सब होता है, आप जब सही मौसम आएगा तभी फल आएगा तभी फूल आएगा, भले हम 100 घड़े पानी उसमें पौधे में डाल रहे हों।
1: जी जी
0: तो वो कंटेंटमेंट एक अंदर लाके और फिर कि एक यू नो एक फर्म डिटर्मिनेशन से कि अभी पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई पे ज्यादा फोकस होना है।
1: जी
0: तो ऐसा अगर आई थिंक जर्नी हो तो वो ज्यादा
1: जी बिल्कुल
0: इंटीग्रेटेड एक बोलते हैं जो अप्रोच वो होता है।
1: जी जी इतनी डिस्ट्रैक्टेड जर्नी ना हो, आप थोड़े से फोकस्ड रहें, जैसे पहले पढ़ाई पे फोकस करें फिर शायद कमाने पे, बट अब जैसे हम जानते हैं कि समय इतना चेंज हो गया है, सब कुछ इतना बदल गया है और प्रेशर्स इतने अलग हो गए हैं, तो ये चेंजेस कहीं ना कहीं हम स्टूडेंट्स को तो कह ही सकते हैं बट इसका सोर्स भी कुछ और हो सकता है। मतलब अब डायरेक्टली स्टूडेंट्स ये बात ना समझ पाए शायद, बट कहीं ना कहीं ये जो बदलाव की जो लहर है उसको कहीं सोर्स पे टैप करें तो शायद, खैर ये बातें तो चलती रहेंगी। दोस्तों बातों के बीच एक खूबसूरत गीत सुनते हैं क्योंकि जिंदगी के रंग गीतों के संग ही और गहरे होते हैं।

0: Welcome back, Dr. Deepa. Times of
1: Thank
0: India.
1: You.
0: Times of India or Hindustan Times के लिए आपने लिखा. International Magazine, Confluence, South Asian Perspectives के लिए regular columns भी लिखे. इन सभी के बीच आपने क्लासरूम लेक्चर्स और टीचिंग भी कंटिन्यू करी थ्रू आउट योर लाइफ. तो इन सब डाइवर्स फील्ड्स में आपको बैलेंस बनाना किस तरह से आपके लिए कैसा रहा? क्या ये चैलेंजिंग था? क्या ये इजी था? क्या आपको फोकस रखना, टाइम मैनेजमेंट, इन सब चीजों से आपने कैसे डील किया व्हेन यू वर डूइंग एक हमेशा आप यू हैव हैड अ पैरेलल फील्ड जो चली है अलोंग विथ योर टीचिंग. तो इन सब एरियाज ऑफ लाइफ को जो डाइवर्स भी हैं, कहीं ना कहीं कनेक्टिंग भी हैं, तो उनको कैसे आपने मैनेज किया मैम?
1: अभी तनुषा, यू यूज दिस वेरी एप्रोप्रिएट वर्ड इन योर क्वेश्चन, टाइम मैनेजमेंट.
0: हाँ जी,
1: वो ही क्रक्स है.
0: जी जी,
1: क्योंकि एवरीथिंग इन लाइफ इज मैनेजिंग योर टाइम.
0: हाँ जी,
1: क्योंकि आप देख अपने पास, इफ यू सी कि सभी के पास वही 24 आवर्स हैं जिसमें सब करना है.
0: जी,
1: अब अपनी प्रायोरिटीज को डिसाइड करके इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करेंगे मैक्सिमम आउटपुट के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. टाइम असेट है, इसको वैल्यू करना है, इसको रिस्पेक्ट करना है और इसको मैनेज करना है.
0: ब्यूटिफुल.
1: अगर ये समझ में आ गया लाइफ में, तो आई थिंक बाय एंड लार्ज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ.
0: हाँ जी,
1: बस यही करना है. और इनिशियली ये डिफिकल्ट हो सकता है किसी के लिए, ये स्ट्रगल होगा, चैलेंज होगा, मे बी नींद देर तक सोने की आदत या जो भी कारण, सबके अलग अलग होंगे. पर एक बार मैनेज हो जाए
0: जी,
1: तो देन एक रिदम जो होती है ना लाइफ के साथ, ये उसके साथ चलते हो फिर आप.
0: जी जी.
1: एंड एक्चुअली आप देखो, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय हो जाता है जो.
0: जी,
1: तो अपने को म्यूजिक भी इंजॉय करना है ना, थोड़ा अच्छा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम जिसमें भी हमारी रुचि हो, या सिनेमा
0: जी,
1: कुछ भी, या फ्रेंड्स, तो ये सब को भी टाइम देना है. तो वी हैव टू डू सो मेनी थिंग्स, इतना सारा है लाइफ में. तो टाइम मैनेज करेंगे तो बहुत चीज मैनेज हो जाती है. तो फिर बैलेंस रखना इज ऑल्सो इजी एंड और यू एंजॉय. हाँ, ये ही प्रोसेस रहा.
0: जी जी, बहुत बहुत बहुत सुंदर. आपने पोएट्री, आपकी जो फर्स्ट पोएट्री बुक थी वो थी शिफ्टिंग सैंड्स, एक पोएट्री एंथोलॉजी, एंड ये बात करती है बदलाव की, इनो शिफ्ट्स की, एक सबलाइम इमोशनल जर्नी की. तो इस किताब को लिखते वक्त क्या आपने कभी खुद को भी थोड़ा सा खोया कहीं पे, थोड़ा पाया, या कुछ नए एक्सपीरियंसेस, कुछ नए एपिफनीज हुई आपको जिनसे आपकी लाइफ की ट्रैजेक्टरी चेंज हुई, या कोई एक नया एक्सपीरियंस डेवलप हुआ हो? कैसा था ये एक्सपीरियंस शिफ्टिंग सैंड्स को लिखने का मैम?
1: शिफ्टिंग सैंड्स में उस बुक में बहुत सारी पोएम्स जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल है.
0: जी,
1: तो बहुत सारा राइटिंग उसका, नॉट द होल बुक, पर बहुत सारा पार्ट जो है वो पर्सनल लाइफ से आया है. तो वो पोएम्स लिखने में आई थिंक बहुत सारे इमोशन वेंट आउट हो गया. तो अभी मेरे ख्याल में ये जरूरी भी है, आई थिंक राइटिंग प्रोसेस में हम लोग सभी जो है थोड़ा सा सब्जेक्टिव उससे स्टार्ट करते हैं, अपनी पर्सनल से. लेकिन वो एक लैडर है टू मूव टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिविटी, जो कि इम्पोर्टेंट है राइटिंग की जर्नी में, क्योंकि आप पर्सनल से इम्पर्सनल तक पहुंच पाते हो. तो आई देन रियलाइज कि अभी ये पार्ट को ड्रॉप कर देना है
0: जी,
1: अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिविटी की ओर बढ़ना है. तो एज अ राइटर जो भी थोड़ा बहुत लिख पाई हूँ लाइफ में, उसमें ये एक लर्निंग प्रोसेस रहा मेरा शिफ्टिंग साइंस से. आई लर्न दिस, क्लेंजिंग ऑफ इमोशन भी हो गया, जो कहीं पे जीवन के सफर में जो हम लोग यू नो स्ट्रगल्स देखते हैं या दुख दर्द जीवन में आते हैं, वो ह्यूमन जर्नी है. तो वो सब भी एक्सप्रेस करने की एक अपॉर्चुनिटी होगी. तो सॉर्ट ऑफ एक हम बोलते हैं कैथार्टिक राइटिंग होता है, तो क्लेंजिंग हो गया. दैट वे शिफ्टिंग साइंस हेल्प मी.
0: बहुत ही खूबसूरती से आपने हमें बताया कि कैसे एक यंग राइटर या एक अस्पायरिंग राइटर एट एनी एज जब शुरू करता है तो शायद सबसे पहले अपने पर्सनल थॉट्स को वेंट आउट करता है, बिकॉज कहीं ना कहीं जो लिखता है वो मैं मानती हूँ एक इमोशनल सोल है. तो वंस यू स्टार्ट फ्रॉम दैट, तो आप धीरे धीरे उस प्रोसेस से आगे बढ़ के मैच्योर होते हैं एंड देन यू मूव टुवर्ड्स मोर ऑब्जेक्टिव टॉपिक्स ऑफ राइटिंग. ब्यूटिफुली सेड एंड ब्यूटिफुली पुट. जो सिर्फ एक राइटर, जो एक मंझावा राइटर और एक रीडर बता सकता था हमें. थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपा. हम आगे चलते हैं. आपके जीवन में बहुत सारे ग्लोबल मोमेंट्स ऑफ रिकॉग्निशन भी रहे हैं, जैसे कि हांगकांग में आपकी पहली बुक पब्लिश होना, रेडियो टीवी हांगकांग पर आपका इंटरव्यू, और स्पेन में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आपका पेपर सेलेक्ट होना. ये सभी ऐतिहासिक ग्लोबल मोमेंट्स हैं किसी भी एक व्यक्ति के जीवन में. तो इन सबके बीच कोई ऐसा पल जो आपके दिल के बहुत करीब हो या जो आज भी आप याद करते हैं तो आपको एक मोमेंट ऑफ प्राइड होता है, एक मोमेंट ऑफ जॉय होता है कि मैंने ये सब पा लिया. तो इस एक्सपीरियंस के बारे में, क्योंकि नेशनली तो हम सब लाइक रिकॉग्नाइज होते ही हैं जब हम काम करते हैं, बट इंटरनेशनली टू टेक दैट फर्दर स्टेप एंड अपने काम को इतना बेहतर करना कि आप एक इंटरनेशनल स्तर पा सके, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपके लिए?
1: वो जब जब शिफ्टिंग सैंड्स में मैन्युस्क्रिप्ट शेयर किया मैंने पब्लिशर के साथ
0: जी,
1: और वो एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, और फिर जो प्रोसेस है पूरा एडिटिंग एंड एक लंबा 9-10 months का कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ उनके साथ. और मजे की बात ये, बात कभी नहीं हुई फोन पर टेलीफोनिकली, सिर्फ मेल से ही काम होता था. और उस प्रोसेस में ऑफ कोर्स मैंने बहुत लर्न किया, क्योंकि ब्रिटिशर है वो मैम जो रन करती हैं प्रोवर्स, तो एक हार्ड टास्क मास्टर भी हैं. तो वो भी एक लर्निंग जर्नी थी. और दूसरा वो मोमेंट की जब आपकी बुक रिलीज हो रही हो, वहां पे माइक पे बात कर रहे हो और सब नेशनलिटीज के लोग वहां बैठे हुए हैं, एंड देन आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने कंट्री को, अपने वो दैट मोमेंट ऑफ प्राइड व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग योर नेशन, वो वहां जाके जो फीलिंग होती है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है. एंड मैंने आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं वेस्टर्न आउटफिट नहीं पहनूंगी, आई गो इन माय इंडियन आउटफिट, इंडियन ज्वेलरी, एंड दे वर वेरी हैप्पी एक्चुअली.
0: जी जी,
1: दे रियली अप्रिशिएट, वो अप्रिशिएट भी करते हैं इन चीजों को. और फिर ये कि उस समय ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, इवन जब मैं इंटरव्यू दे रही थी रेडियो एंड टेलीविजन हांगकांग पे, तो आई स्टार्टेड विद द भागवत गीता.
0: ब्यूटिफुल.
1: तो ये मैंने सोचा नहीं था, पर वो फर्स्ट क्वेश्चन, एंड आई डिडंट नो व्हाट ही वाज गोइंग टू आस्क, क्योंकि वो लाइव था. तो वॉट एवर ही आस्क मी, तो वो फर्स्ट क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसी थी कि ऑटोमेटिकली वो गीता से रिलेट हो गया. तो आई फेल्ट लाइक ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन इंडियन टुवर्ड्स माई कंट्री ऑल्सो, सो दैट रियली मेड मी फील वेरी प्राउड अबाउट स्टैंडिंग देयर एंड
0: हाँ. आप एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं, तो उसके बारे में हम आगे खैर बात करेंगे. बहुत ही अच्छा आपने एक्सपीरियंस शेयर किया कि एक्चुअली जब आप ऐसे की खैर बात करेंगे, बहुत ही अच्छा आपने एक्सपीरियंस शेयर किया कि एक्चुअली जब आप ऐसे प्लेटफॉर्म से पहुंचते हैं तो आप नेशन रिप्रेजेंट करते हैं. वो सिर्फ उसी मोमेंट पे समझ आता है जब वो आपका नाम लेते हैं और आपको इंट्रोड्यूस करते हैं कि आप इस कंट्री से हैं. तो बहुत ही सुंदर. और अब हम एक गाना सुनते हैं, क्योंकि इन सब सुकून भरी बातों के बीच एक गीत हमें और थोड़ा जज्बातों से जोड़ देगा. तो चलिए एक गाना सुनते हैं खूबसूरत सा.

0: वेलकम बैक डॉक्टर दीपा. जी, राइटिंग फॉर चिल्ड्रन एक बहुत अलग एक्सपीरियंस अगेन रहा आपके जीवन में. एक वन एक्ट प्ले जेम्स रॉबिन बच्चों के लिए आपने लिखा. उस वक्त आपने अपने अंदर क्या चेंजेस महसूस किए? क्या आपको उसके लिए एक बच्चा बनना पड़ा? आपके पर्सपेक्टिव को चेंज करना पड़ा? और ये क्यों डिसाइड किया आपने कि आप एक वन एक्ट प्ले फॉर चिल्ड्रन लिखना चाहेंगे? क्या इसके पीछे कोई एक स्टोरी है जो आप हमारे लिसनर के साथ शेयर करना चाहेंगे?
1: गुड यू आस्क्ड दिस तनुषा, क्योंकि इसके पीछे एक स्टोरी है. मैं जिस कॉलेज में पढ़ाती हूँ उसके प्रिंसिपल डॉक्टर राकेश त्रिवेदी, जो कि जूलॉजिस्ट थे, एनवायरमेंटलिस्ट थे
0: जी.
1: और जर्नलिस्ट भी थे
0: जी.
1: तो उनको रीडिंग का शौक था और उनको एक बार एक आर्टिकल मिला एक बच्ची का यूएस में. और वो उसको एक जैसे रॉबिन मिलता है और वो डेड रॉबिन की स्किन को मिलवाओकी म्यूजियम ले जाती है. और वो एक बहुत छोटा सा आर्टिकल था, उन्होंने मुझे पढ़ने को दिया और बोले इसका दीपा कुछ कर पाए अपन तो मैंने रख लिया. और उसके बाद सडनली ही पास्ड अवे. या वो उनकी उनकी डेथ बहुत ही सडन थी. उनको एक हार्ट अटैक आया. वो गाना गा रहे थे एक स्टूडियो में, गाते गाते उनको हार्ट अटैक आया एंड ही पास्ड अवे. और वो रह गया आर्टिकल मेरे पास. और उसको एक्चुअली मैं बहुत साल में उसको भूल भी गई थी आर्टिकल को.
0: जी.
1: एक बार किताबों की सफाई में वो आर्टिकल फिर निकला
0: जी.
1: और देन आई रिमेम्बर्ड कि त्रिवेदी सर ने कहा था इसका कुछ कर पाए तो. और फिर मैंने उसको सोचा इसको एक फॉर्मल शेप देती हूँ और बच्चों में एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैसे जनरेट करें क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन एंड ऑल दैट. तो एक बच्चा किस पर्सपेक्टिव से समझेगा,
0: बिल्कुल,
1: उसको कैसी भाषा चाहिए, कैसी किताब होनी चाहिए कि बच्चा अट्रैक्ट हो. तो विजुअल्स बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं
0: जी.
1: तो फिर उसको विजुअल्स के साथ इंटीग्रेट करना, अच्छे ब्राइट कलर्स यूज करना उन इलस्ट्रेशंस में ऐसा
0: जी.
1: तो फिर वहां पे उस तरफ सोचना स्टार्ट किया. तो हाँ, लैंग्वेज को बहुत सिंप्लीफाई करना, अपने मैसेज को प्रीची और मॉरल ना बनाते हुए एक बात को सिंपली बोल देना ताकि बच्चा उससे कोरिलेट कर पाए, ये नहीं बोले कि कोई मॉरलाइज कर रहा है
0: जी.
1: तो वैसा टोन लाके और फिर पब्लिशर से बात करके कि अब उसको इलस्ट्रेटिव बुक कैसे बनाए
0: जी
1: तो बच्चों को अट्रैक्ट करे, वैसा करके फिर वो फाइनली जेम्स रॉबिन जो है
0: जी.
1: वो बॉम्बे से उसको पब्लिश कराया. तो हाँ जी, और मैं सोचती हूँ कि ये फिर से करना चाहिए बच्चों के लिए कुछ और ऐसा लिखने का प्रयास.
0: तो एक तरह से ये आपका ट्रिब्यूट था टू राकेश जी जिन्होंने ये आर्टिकल आपसे शेयर किया था और कहीं ना कहीं ये बात आपके जहन में रही और आपने उसको आगे तक पहुंचाया. ये भी एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि अक्सर हम बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में आती हैं, हम पढ़ते हैं, हम उसके बारे में सोचते भी हैं बहुत उस समय में, बट हम भूल जाते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं समय और जीवन के साथ. बट जैसे मैंने कहा कि मैं जानती हूँ आपको कि आप एक बहुत ही स्पिरिचुअली अलाइंड और स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं, इसीलिए मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि आप आपके जीवन की सभी शैलियां एक तरफ और इंसानियत एक तरफ. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. आप रिसर्च का काम, ट्रांसलेशन, इन सब से जुड़े हुए हैं. एनजीओस आप फॉर एनिमल राइट्स, एनजीओस फॉर एनिमल राइट्स के साथ भी काफी समय से जुड़े हुए हैं. तो आप अपने इस पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, अपने इस साइड ऑफ लाइफ, पर्सपेक्टिव नहीं, आपकी इस पर्सनालिटी आपकी जो है, जो सेंसिटिव है, जो स्पिरिचुअल है, जो इंसानियत और ह्यूमैनिटी से इतनी अफेक्टेड है, तो ये जो आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स डेवलप हुई हैं, क्या इसके पीछे कोई एक मोमेंट रहा है या सीरीज ऑफ इवेंट्स रहे हैं, या आप शुरुआत से ही एक ऐसे पर्सनालिटी थे जो थोड़ा सॉफ्ट थे, सेंसिटिव थे एंड ह्यूमैनिटी की तरफ आपका झुकाव था? ये साइड ऑफ पर्सनालिटी आपका कैसे डिड इट आपका आपकी जो रीडरशिप है, आपकी जो रीडिंग है, डिड दैट शेप यू एज अ पर्सन लाइक दिस, और इट वाज सम मोमेंट्स और सीरीज ऑफ इवेंट्स जो आपके जीवन में घटे जिनसे आप ऐसे बने? तो कोई इस पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में, इस साइड ऑफ योर पर्सनालिटी के बारे में अगर आप हमें बता सकें.
1: एनिमल्स से जो लगाव है स्पेशली डॉग्स से,
0: जी
1: वो चाइल्डहुड ट्रेट है,
0: जी
1: वो चाइल्डहुड में भी था, ऑल्दो ऐसा बहुत अफेक्शन या डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन मैंने पेरेंट्स की साइड से नहीं देखा था डॉग्स या एनिमल्स के प्रति, पर समहाउ आई थिंक मे बी पास्ट लाइफ या मे बी यू नो कहीं पे फैमिली में रहा होगा, तो आई वॉज कैरिंग इट, तो वो मेरे को बचपन से था. एंड इफ यू हैव द टाइम आई टेल यू दिस स्टोरी.
0: जी जी बिल्कुल
1: जबलपुर में व्हेन माय फादर वाज ट्रांसफर्ड, मैं सेकंड स्टैंडर्ड में थी, और घर के बाहर ही बहुत सुंदर गार्डन था. जबलपुर की सॉइल बहुत फर्टाइल है, तो बहुत अच्छे डहलिया वगैरह उगते थे, तो वहाँ क्यारी में एक ब्लैक रंग की डॉगी थी, वो
0: जी
1: हमारे घर आके बैठती थी, और उसने एक ऐसा गड्ढा खोद के वहां एक पपी को बर्थ थी, जस्ट हैड वन पप, और वो पप डार्क ब्राउन कलर का, बहुत ही सुंदर पप.
0: जी
1: तो वो काली डॉग, उसको फीड करना और देखना कि उसका पपी ठीक रहे, ये मेरी जिम्मेदारी हो गई थी तब से, सेकंड स्टैंडर्ड से. और वो पपी इतना ब्यूटीफुल था कि कोई हमारे गेट में आके उसको चुरा के ले गया. हाँ जी, और वो जो ट्रॉमा था ऑफ लूजिंग दैट पप,
0: जी
1: वो द वे आई हैड क्राइड, एंड हैट्स ऑफ टू माय फादर कि वो कार उठा के मुझे बिठा के, और हमारे घर एक काम करने व्यक्ति आते थे, उनका नाम पंडित था,
0: जी
1: वो पंडित को साथ में लेके हम उसकी ढूंढाई करने निकले 2-3 दिन,
0: जी जी
1: और फाइनली उन्होंने, पंडित ने स्पॉट कर लिया कि कौन से घर में वो है पपी, और हम उसको लेकर आए घर वापस.
0: वाह
1: तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट था कि वो मेरे फादर ने जो मेरे को कोऑपरेट किया, उन्होंने उस मेरे को स्नब नहीं किया इस बात पे कि हाँ स्ट्रे डॉग का पप है, वो ही एक्चुअली केयर्ड कि नहीं ये रो रही है, इसके लिए इम्पोर्टेंट है, ये करना चाहिए. तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा लेसन था टुवर्ड्स सेंसिटिविटी. अपन बच्चे होते हैं तो हम लोग समझते नहीं है कि ये छोटी छोटी बातें कितनी इम्पोर्टेंट है.
0: एक्ट कर सकती हैं जी
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी बहुत ही हम इससे समझ सकते हैं कि अगेन पेरेंटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है. आपको जो घर में माहौल मिलता है वो कितना लंबा जाता है आपके सफर में. तो वही मैं दोबारा वही कहूंगी कि हम बहुत चीजें यूथ से एक्सपेक्ट करते हैं, बट हम सोर्स को टैप नहीं करते कि वो कहाँ से सीखें. बहुत सारी चीजें वो सीख ही नहीं पाते अपने घर से, जो माहौल शायद हम को मिल जाता है, कुछ लोगों को मिल जाता है जो बहुत फॉर्चुनेट होते हैं. मैं समझूंगी कि आप में बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमें ऐसे एक्सपीरियंसेस मिले जिन्होंने हमें ऐसे शेप किया. बट हाँ, चलिए दोस्तों, इसी बात पे एक और गीत, अपना सफर हम आगे बढ़ाते हैं और एक गीत के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं.

0: वेलकम बैक डॉक्टर दीपा वंजानी, आपसे बात करना एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस, एक ऐसा लग रहा है कि हम एक बहुत अच्छी प्याली चाय की पी रहे हैं और बात कर रहे हैं, इसी सफर को आगे बढ़ाते हैं। आप एक लिटरेरी ग्रुप शब्द शिल्प के नाम से जो 2016 से है, मेरे जहां तक जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, तो उसकी फाउंडर मेंबर हैं। तो ये लिटरेचर ग्रुप किस तरह से ऑपरेट करता है, इसको इसकी फाउंडिंग मेमोरीज क्या हैं, रीजन आपका क्या रहा इसको टू मेक दिस ग्रुप क्या हैं, रीजन आपका क्या रहा इसको टू मेक दिस ग्रुप, इस ग्रुप के बारे में थोड़ा सा अगर आप हमें बताएं शब्द शिल्प के बारे में, तो हमारे लिसनर्स को हम बहुत जानना चाहेंगे शब्द शिल्प के बारे में। जी
1: तनुषा, चाय का नाम लेकर तो यू हैव ब्रॉट इन दिस क्रेविंग कि अभी गरम प्याली चाय के सामने आ जाए। यू डोंट नो हाउ मच आई लव टी। और शब्द शिल्प की बात है तो शब्द शिल्प 2012 में आई स्टार्टेड
0: जी,
1: और रीजन ये था कि मैं एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर जिसको EMRC बोलते हैं
0: जी,
1: वो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसमें टीचिंग डिपार्टमेंट है, वहाँ पे MSc इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक इंटीग्रेटेड कोर्स कर चलता है। मैंने 12 साल वहाँ विजिटिंग फैकल्टी पढ़ाया एज अ विजिटिंग फैकल्टी
0: जी जी।
1: तो वो मेरा फर्स्ट या सेकेंड ईयर, आई थिंक सेकेंड ईयर था पढ़ाने का, और बच्चे क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाती थी और स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि लिखते रहे होंगे पर वो बता नहीं पाए किसी को या रीड नहीं करवा पाए, तो क्योंकि लिटरेचर सब्जेक्ट था तो वो मेरे साथ जुड़ गए और फिर वो क्लास के बाहर आके मुझे अपनी डायरी देते थे कि ये लिखा, ये शॉर्ट स्टोरी, ये शायरी। तो वो मुझे समझ में आया कि बच्चे बहुत लिखते हैं लेकिन उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ वो शेयर कर सके, जहाँ वो लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिले।
0: जी।
1: तो देन वहीं पे EMRC में ही आई डिसाइडेड कि एक ऐसा लिटरेचर क्लब बनाते हैं जो बच्चा जुड़ना चाहे अपने मन से, स्टूडेंट हो प्रोफेशनल हो, उनको हम एक जगह पे एक संडे को मंथ में मिलके बैठेंगे
0: जी,
1: चाय कॉफी पियेंगे और राइटिंग से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करेंगे, रीडिंग से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करेंगे, ऐसे ये सफर

0: स्टार्ट हुआ, और क्योंकि अच्छे लोग जुड़ते चले गए इस ग्रुप में, तो वो उस को कैरी फॉरवर्ड भी कर पाए। उसमें बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है शब्द शिल्प में। हाँ, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया और बहुत अच्छी एक्टिविटीज को प्लान भी किया।
1: जी, जब जब लिटरेचर ग्रुप्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, जब कोई बातचीत नहीं थी, जब सोशल मीडिया नहीं था, तब 2012 में आपने एक लिटरेचर ग्रुप शुरू किया, तो ये दिखाता है कि आप कितने विजनरी हैं और आपकी रीडिंग ने, आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ ने आपको कितना एनरिच और फर्टाइल किया है कि आप इतने विजन से सोच सकते हैं। और उस जमाने में जब ऐसे कोई ग्रुप्स नहीं हुआ करते थे, ये तो अब है कि हम हर जगह देखते हैं कि ये ग्रुप वो ग्रुप, हर चीज के लिए यू नो देयर इज अ प्लेटफॉर्म एंड देयर इज अ वे एंड देयर इज अ मीडियम। बट बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लगा मुझे शब्द शिल्प के बारे में जान के। और मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहूंगी कि अगर आप चाहें तो आप शब्द शिल्प से जुड़ सकते हैं। मैं आपको जो हमारे डिटेल्स होंगे उसमें मैं आपको दीपा वंजानी जी, डॉक्टर दीपा वंजानी जी से कनेक्ट करूंगी, जिससे कि आप इस ग्रुप का हिस्सा बन सकें। चलिए डॉक्टर दीपा, हम आगे चलते हैं क्योंकि हमारा समय जाता जा रहा है, तो हमें भी अपने अपने शो को आगे बढ़ाना होगा। आप एक पीएचडी गाइड भी रहे हैं, 5 PhD स्कॉलर्स को आपने गाइड किया है, और सिर्फ अकेडमिक्स नहीं, आपने उन्हें एक पर्सनल मेंटर के रूप से उनकी जर्नी को आई थिंक एनरिच किया है और गाइड किया है। तो इसी से रिलेटेड आप मुझे बताना चाहेंगे कि मेंटोरशिप का रोल जो है वो किसी भी, टीचर्स बहुत हैं, लेक्चरर्स बहुत हैं कॉलेज में, स्कूल में, बट एज अ गाइड, एज अ मेंटोर, बिकॉज आप PhD स्कॉलर्स को भी गाइड कर चुके हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि क्या, कितनी इम्पोर्टेंस है एक टीचर की, एक स्टूडेंट की लाइफ में, और कैसे जो यंग टीचर्स हैं, एस्पायरिंग टीचर्स हैं, वर्किंग यंग टीचर्स हैं, वो इस बात की इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं और अपने टीचिंग के सफर को बियॉन्ड सिर्फ टेक्सचुअल टीचिंग ले जाके एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। हाउ इज इट एन एक्चुअल इम्पैक्ट, एक्चुअल इन्फ्लुएंसर मेरे हिसाब से टीचर ही होता है, ट्रू इन्फ्लुएंसर। सो अगर हम इस सोशल मीडिया लैंग्वेज से इसको कनेक्ट कर सकें तो।
0: हाँ, राइटली सेड, टीचर का बहुत इम्पैक्ट है और हर स्टेज ऑफ लाइफ पे है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो रियली दे लुक अप टू यू। तो जितनी हम कमर्शियलाइजेशन की ओर जा रहे हैं, और बहुत दुख है होता है मुझे ये देखकर कि एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एक कमर्शियल लेन देन का केवल प्लेटफॉर्म ना बने, ये कभी भी नहीं होना चाहिए एकेडमिक्स में। तो जब जब ये आ जाएगा बीच में, तो जो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप है वो जो है वो डिक्लाइन होगा ही, क्योंकि भारत ऐसा देश है जहाँ पे आप गुरु वर्ड यूज करते हो अपने टीचर के लिए, और आप बोल रहे हो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। तो जहाँ पे हम ऐसा पेडेस्टल पे टीचर को रखते हैं, तो कम से कम वो एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर टीचर को भी उठानी पड़ेगी, क्योंकि हाथ ताली हमेशा दो हाथों से बजती है। तो हम सिर्फ ये ना बोलें कि यंग जनरेशन को रिस्पेक्ट नहीं है या ना उसको नहीं समझते मॉरल वैल्यूज, तो वो पहले मुझे अपने अंदर इंटीग्रेट करके दिखाना पड़ेगा, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो पॉसिबल नहीं है कि आप एक मेजर शिफ्ट या एक मेजर चेंज जो आप चाह रहे हैं वो आ सके, क्योंकि टेक्सचुअल रीडिंग इज नॉट द एंड ऑल एंड बी ऑल वहां पे, क्योंकि आप कह रहे हो कि इंटीग्रेटेड होलिस्टिक पर्सनालिटी बनानी है, तो खुद भी वैसा एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। पीएचडी गाइड होने के लिए भी आपको आपके एथिकल वैल्यूज हाई रखने पड़ते, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों के पीएचडी करते समय, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, अपन दोनों ही सुनते हैं। तो उससे जो है ना एक इम्प्रेशन आप ओवरऑल बनाते हो कि है ना सब चलता है एकेडमिक्स, वो सब चलता है एटीट्यूड नहीं, सब नहीं चलता है ना। एक रिस्पेक्ट होती है नॉलेज की, वो सैंक्टिटी मेंटेन करना मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मेरी पहली स्टूडेंट थी पीएचडी की,
1: जी
0: वो अब खुद पीएचडी गाइड हो गई है।
1: बताएं।
0: तो वो जब उसने पहली पीएचडी इनरोल करी तो वो जब मुझे बताई कि मेरा मैंने इनरोल किया है स्टूडेंट को, तो वो स्टूडेंट डर रही होंगे या ऐसा थोड़ा सा रहता है कि कैसे ये 4 साल निकलेंगे करके। तो जब मिलने आई उनसे तो उन्होंने कहा अरे मेरी पीएचडी गाइड ने मुझे कभी परेशान नहीं किया, मैंने वो ही सीखा उनसे, तो मैं थोड़ी ना तुम्हें करूंगी, तुम रिलैक्स हो जाओ।
1: हाउ अमेजिंग जी।
0: तो जब वो लाइन उसने बोली तो मेरे को लगा कि चलो कहीं मैंने कहीं कोई इम्पैक्ट एज अ टीचर एज अ ह्यूमन बीइंग भी छोड़ा है
1: एज अ गाइड यस
0: कि वो कैरी फॉरवर्ड कर पा रही है।
1: बिल्कुल बियॉन्ड द टेक्सचुअल पीएचडी जो उन्हें आपके अंडर मिली आपने उनके, यही मेरा अगला सवाल भी था, आपने मुझे पहले ही एक बहुत खूबसूरत सा जवाब दे दिया कि आपको इतने अवार्ड्स मिले हैं, इतने रिकॉग्निशंस मिले हैं, इतने रिवॉर्ड्स मिले हैं, नेशन बिल्डर, नारी शक्ति को प्रणाम अवार्ड, जर्नलिज्म ऑनर्स, लेकिन यही बात कि किसी स्टूडेंट की कही भी कोई बात या किसी रीडर की कही भी एक बात जो अवार्ड से बहुत गहरी लगी हो आपको, वो शायद ये थी कि आपकी जिनको आपने गाइड किया वो पहली बात वो खुद गाइड बने, पीएचडी गाइड बने, और फिर उन्होंने जो उनके अंडर थे उनको ये एक एक्सपीरियंस कैरी फॉरवर्ड किया कि मैं आपको परेशान नहीं करूंगी एंड आई एम अ गाइड फॉर यू, आई एम अ हेल्प फॉर यू एंड ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, दिस इज हाउ एक्चुअली टीचर्स कैन शेप एंड दे आर द ट्रू एजेंट्स ऑफ चेंज लाइक आई मेंशन बिफोर, कि आप कैसे अपने पूरी एक पीढ़ी को इंस्पायर कर सकते हैं सही गाइडेंस से। बहुत बहुत ही सुंदर आपसे बातचीत हुई डॉक्टर दीपा। इसी से हम आगे चलते हैं और हमारे आखिरी सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप 3 डेकेड से 30 ईयर्स ऑफ जर्नी, इस पूरी जर्नी को अगर आप एक सिंपल सी लाइन में, बिकॉज आप एक राइटर हैं, एक पोएट हैं, तो कुछ लाइन, एक कोई एक लाइन या कुछ पंक्तियां जो जिनसे आप इस सफर को कंक्लूड करना चाहें या कुछ ऐसा कहना चाहें जो एक इम्पैक्ट छोड़ सके हमारे लिसनर्स पर, तो वो क्या होगा मैम? इफ यू कैन जस्ट गिव अस अ फ्यू लाइन्स टू यू नो समराइज दिस जर्नी, दिस ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ 3 डेकेड्स ऑफ योर लाइफ, जो भी आपको लगता है मैम।
0: ये बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट, क्योंकि मुझे पोएट्री से बहुत प्यार है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट हैं और ये बहुत कॉमनली कोटेड लाइंस हैं, बहुतों ने पढ़ी भी होंगी सुनी भी होंगी, पर समहाउ आई फील कि ये जो है ये क्रक्स ऑफ लाइफ है, क्योंकि लाइफ में बहुत टेम्पटेशंस हैं, बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं और बहुत चैलेंजेस हैं, बट डिस्पाइट ऑल दैट लाइफ बहुत ब्यूटिफुल है और उसको शेप करना, उसको सही डायरेक्शन देना वो हमारे हाथ में है। तो हम जो है अपना जो बेस्ट है, व्हाट मस्ट बी डन मस्ट बी डन, इट इज एज सिंपल एज दैट, ये हमेशा हम लोग को अपहोल्ड करके रखना है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये बोला है अपनी एक लास्ट स्टैंजा है उनकी बहुत खूबसूरत पोएम का, जिसमें वो लिखते हैं द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। सो बिफोर वॉट एवर टाइम वी हैव ऑन दिस प्लैनेट, वो जर्नी जो है वो हम फ्रूटफुल बनाए
1: जी,
0: जो हमने क्योंकि हम ऋण लेकर आए हैं समाज का, इस देश का, अपने पेरेंट्स का, तो उसको हम चुकाएं
1: जी।
0: तो बेस्ट जो कर सकते हैं
1: जी
0: वो अपनी जर्नी में करते चले जाएं
1: जी,
0: जो जो मिलेगा वो नेचुरल आउटकम है
1: जी,
0: मिल गया तो बहुत अच्छा
1: जी,
0: तो नहीं तो भी हमें अपना करते जाना है बेस्ट
1: जी जी। बहुत बहुत ही सुंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइंस हमें बहुत लेसन्स देती हैं, बहुत सिंपल लाइंस हैं बट इनका मीनिंग इज इटर्नल एंड बियॉन्ड टाइम इट विल लिव. तो थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपा. आज आपसे बात करना सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था, जैसे मैंने कहा एक चाय की तरह था, जो बातें चलते चलते ठंडी तो हो जाती है मगर अपना स्वाद फिर भी छोड़ जाती है. एक शांत गहरी गुफ्तगू जिसमें सवालों से ज्यादा एहसासों ने जवाब दिए, मुझे ऐसा लगा. थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपा मंजानी.
0: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो तनुषा. आई एम ग्लैड वी कुड हैव दिस कॉन्वर्सेशन.
1: जी जी बिल्कुल. तो दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे तनुषा, आपके तरानों की हम सफर, और ये था जिंदगी के रंग गीतों के संग सिर्फ SN रेडियो पर. अगली मुलाकात तक थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा महसूस कीजिए, और जिंदगी के रंग जल्दी में नहीं गहराई से जीने की कोशिश कीजिए. और हाँ, सृजन से हमेशा जुड़े रहिए. नमस्कार.
2: जिंदगी के रंग हजार.
3: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही. कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे, आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर. सुनना ना भूलिएगा.

0: आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए।
1: क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। वे सिर्फ एक शिक्षक नहीं रहे बल्कि एक मार्गदर्शक रहे। वे सिर्फ एक निर्देशक नहीं बल्कि अनेक रंग कर्मियों के प्रेरणा स्रोत रहे। वे सिर्फ एक प्रशासक नहीं बल्कि संस्कारों और मूल्यों के संवाहक रहे। हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ रंग कर्मी, शिक्षाविद और समाज सेवी श्री मोहनलाल जी गोयल, अध्यक्ष विकल्प नाट्य संगठन। पंजाब की धरती से शुरू हुई उनकी यात्रा शिक्षा के प्रांगण से होती हुई रंगमंच के विराट मंच तक पहुंची, जहां उन्होंने न केवल नाटक किए बल्कि जीवन को भी एक सार्थक अभिनय में बदल दिया। आज हम उनसे जानेंगे उनकी बचपन की प्रेरणाएं, मंच की यादगार कहानियां, विकल्प की स्थापना और उसकी दिशा, और इस बदलते समय में रंगमंच की भूमिका। तो आइए स्वागत करते हैं आदरणीय श्री मोहनलाल जी गोयल का
2: जिंदगी के रंग गीतों के संग। आज का रंग जो मैं पेश करने जा रहा हूं रंगमंच के ऊपर, मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं, सभी को नमस्ते कहता हूं। दर्शकों, ये रंगमंच की बात है तो आगे बढ़ते हैं, हम कैसे रंगमंच की बात कर रहे हैं।
1: चलिए गोयल जी, फिर शुरुआत से ही शुरुआत करते हैं। कुछ अपने बचपन के दिनों के बारे में बताइए। परिवार, फैमिली, परिवेश, शुरुआती संस्कारों ने आपके व्यक्तित्व को कैसे आकार दिया, कुछ उसके बारे में हमारे साथ कुछ बातें साझा कीजिए। थोड़ा हमें अपनी पुरानी जिंदगी में ले एक झलक दिखाइए।
2: मेरा जन्म जो है 1945 में नवंबर में हुआ था, 11 नवंबर को, लेकिन जैसे मेरा जन्म हुआ उसके 6 महीने बाद

0: क्लास फैमिली से था, लेकिन हमारे परिवार में कुछ जो खास तौर पर मेरे पिताजी का, मेरे माताजी कहा करते थे पिताजी के बारे में कि वो दान में बड़ा विश्वास करते थे, अपने साथियों का बहुत ध्यान रखते थे। ऐसा ही मेरा भी अभी तक भी जो परिवेश रहा है उसी में संस्कारों का ये समावेश हुआ, जिसके कारण मैं आज भी थोड़ा बहुत दान पुण्य की तरफ ध्यान ध्यान रहता हूँ, या थोड़ा बहुत जो भी किसी हेल्प कर सकता हूँ मैं मदद करने की तैयार रहता हूँ। ये मेरे संस्कार ये मेरे पिताजी ने दिए, जिनको मैंने देखा तक नहीं था।
1: बहुत सुंदर। और ये तो बहुत ही जिंदगी में एक खालीपन सा हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी आप उनके संस्कारों को लेके आगे चलते रहे। तो चलिए थोड़ा सा आगे बातचीत शुरू करते हैं। तो क्या बचपन से ही आपका रंगमंच की ओर झुकाव था, या ये सफर बाद में शुरू हुआ, कुछ इसके बारे में
0: नहीं,
1: बताइए।
0: मेरा शुरू से ही जो बचपन से ही मैं रंगमंच से जुड़ गया, वो इस तरह से जुड़ गया कि उन दिनों में रामलीला आया करती थी, रामलीला के लोग आया करते थे। उनके लिए मैं दिन में तो दाना आटा वगैरह इकट्ठा करता था, दाल वगैरह इकट्ठी करता था, और शाम को मैं वो बाबू एक पैसा दे दे ऐसी एक छोटी छोटी जो गीत, उन दिनों के गीत होते थे, उन पे मैं थोड़ी एक्टिंग करके लोगों को रिझाया करता था, जिससे मुझे थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था, वो दान कर दिया था। ऐसा मेरा शुरू से रहा। तो बचपन से ही मुझे रंगमंच से ऐसा जुड़ना पड़ गया। कारण ये था कि इच्छा थी, इच्छा शक्ति थी उस वक्त की, उस वक्त के मुताबिक जो था उसके मुताबिक मैं करता रहा, ये रंगमंच से शुरू से जुड़ गया था मैं।
1: अरे तो ये तो बहुत ही जोरदार बात है, आप बचपन से ही मतलब रामलीला के माध्यम से रंगमंच से जुड़ गए,
0: जी जी
1: एक तरह
0: जी
1: से कहूं तो मैं।
0: जी
1: तो कोई जीवन में कोई गुरु शिक्षक या ऐसी कोई प्रेरक शख्सियत जो आपको अभी भी याद हो, या जिनका आपके ऊपर इन्फ्लुएंस हो, कुछ उनके बारे में बताइए बचपन की, कोई
0: जी
1: ऐसे।
0: मेरे मेरे गुरु थे, उनका नाम भी मोहनलाल था, मेरा मोहनलाल है, उनका मोहनलाल था, और उन्होंने मुझे रंगमंच की बारीकियां बताई। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे स्टेज पे बोला जाता है, कैसे मैं खास तौर पे मैं एलोक्यूशन में बहुत आगे बढ़ गया, यानी एलोक्यूशन से मैं आगे बढ़ गया रंगमंच की तरफ। तो रंगमंच को लाने वाले मेरे गुरु थे श्री मोहनलाल जी, और वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं श्रद्धांजलि रूप उनको कहूंगा कि उनके कारण ही सब कुछ हूं मैं, रंगमंच के कारण। जो भी रंगमंच का मैं कार्य कर रहा हूँ उनके कारण ही हूँ, चाहे वो थोड़ी उम्र के लिए हम 3-4 साल इकट्ठे रहे, 4 साल, लेकिन 4 साल में भी मेरी जो जितने भी एज ए गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो हमारा बना रहा आखिर तक।
1: बड़ी बात है सर, आप भी आज भी उनको याद कर रहे हैं, देखिए कितनी बहुत बढ़िया बात है। तो एक शिक्षक और बाद में प्राचार्य के रूप में आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई? क्या शिक्षण और रंगमंच साथ साथ चलते रहे? क्योंकि टीचिंग में तो काफी समय भी देना पड़ता है, तो ये कैसे मैनेज करते रहे आप दोनों?
0: ऐसा था सर कि शिक्षक के तौर पे मैं बहुत ज्यादा रंगमंच की तरफ झुक गया था। मैं खास तौर पे मेरी खासियत थी वहां पर, मैं मशहूर था इस बात के लिए कि मोहनलाल गोयल कभी बच्चों का नुकसान नहीं करेगा। शिक्षण के लिए मैं रात को ही एक एक महीने का पूरा कैंप लगाया करता था रंगमंच के लिए। तो रात को हम रिहर्सल करते, रात के 1-2 बजे तक बैठे रहते, और शाम को उसको बच्चे मुझे छोड़ के जाते घरों में, तो उसके बाद फिर सुबह पे आके फिर पढ़ाया करता था मैं। और अगर मैं बाहर अंदर जाता था, क्योंकि बहुत बार 3-3 4-4 दिन लग जाते थे जब हम कंपटीशन में जाते थे रंगमंच के, तो नाटकों का खास तौर पर एकांकी नाटकों का पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत चलन था, तो एकांकी नाटकों के कारण मैं बहुत मशहूर हो गया वहां पर। लेकिन 3-4 दिन लग जाते थे, एक बार जाते थे, तो फिर मैं संडे को क्लास लगाया करता था, और सभी सभी को समोसा भी खिलाया करता था। इस तरह से मैं समोसे वाला प्रोफेसर बन गया। इस तरह से कहने की बात
1: सही।
0: यह है कि मैंने कभी भी बच्चों का नुकसान नहीं किया एज फार एज शिक्षण इज कंसर्न। शिक्षा पूरा ध्यान भी देता रहा, लेकिन साथ ही साथ मैं पढ़ाता भी रहा, और पूरा रंगमंच के नाम पे मेरा नाम था सारे दिल्ली, राजस्थान, उसके बाद जयपुर, जयपुर के बाद ये तो अब की बात है, लेकिन उन दिनों में मैं हिमाचल, दिल्ली और पंजाब में खास तौर पे, और हरियाणा में, चारों स्टेट्स में मेरा नाम था रंगमंच के लिए।
1: नहीं, पहले तो

0: बहुत बड़ी बात है कि आपने कभी अपनी टीचिंग को भी नहीं छोड़ा और बच्चों की भी पढ़ाई का कोई नुकसान किया और उसके साथ में ये भी करते रहे। ये दोनों नावों के बीच में आपने संतुलन बनाए रखा, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो चलिए, इसी संतुलन के नाम पे और आपके इस पैशन के नाम पे, स्टेज से जो आपका प्यार रहा है शुरू से, इसी के नाम पे रुक के हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं और एक गाना सुनते हैं, बहुत बढ़िया सा।
1: जी जी जी

0: हाँ, तो वेलकम बैक गोयल साहब। तो आप ये
1: जी
0: बताइए कि आपका पहला मंचन या पहले अभिनय अगर आपको याद है तो बताइए, वो कैसा अनुभव था जब आप पहली बार स्टेज पे गए थे, क्या था वो?
1: वो उस वक्त का नाम था आवाज का नीलाम, यानी आवाज का नीलाम। एक आवाज अखबार छपता था उन दिनों में, यानी ऐसा सोचा गया था, ऐसा लेखक ने उसको आवाज दिया था, नाम का अखबार का नाम आवाज रखा था। उसमें नौकर का रोल अदा किया था, मेरे जो सीनियर थे मुझे पिटाई करा करते थे।

0: अरे अच्छा,
1: मैं सुनाना चाहूंगा
0: हाँ सुनाइए सुनाइए सुनाइए।
1: कि सेठ और जो अखबार वाला मालिक है उसके बीच एक चर्चा है। वो कहता है कि अखबार जो छापता है वो गरीब आदमी है, ज्यादा अमीर नहीं है, लेकिन सेठ आदमी का कार्य जो कार्य करता है वो संपादक है, और संपादक और सेठ के बीच एक आपस में संवाद होता है कि गरीब की गुर्बत, गरीब की इज्जत, गरीब की मोहब्बत भी खरीदी जा सकती है सेठ जी, लेकिन आप हमारी उस प्रथा को नहीं खरीद सकते जो आप सोच रहे हो। ऐसी कोई बात हुई थी, मुझे याद
0: अच्छा,
1: आया।
0: सही बात,
1: यानी कहने का मतलब गरीब की हर चीज खरीदी जा
0: हर
1: सकती
0: चीज
1: है, लेकिन गरीब की इज्जत आबरू जो है वो फिर भी कायम रहती है किसी ना किसी तरीके से, चाहे कुछ भी किया जा सके।
0: हाँ, उसका स्वाभिमान कायम रहता है, बाकी
1: स्वाभिमान,
0: बड़े से बड़े
1: बिल्कुल
0: हो कितना
1: बिल्कुल,
0: भी गरीब रहे। बिल्कुल सही
1: जी
0: बात।
1: जी जी
0: तो अच्छा, आप ये बताइए सर, आपके द्वारा निर्देशित या अभिनीत कौन कौन कौन सा नाटक ऐसा जो है आपको याद रहता है कि यार ये मेरे को बहुत फेवरेट है मेरा, तो ऐसा कौन सा है?
1: मेरे दो नाटक बहुत अच्छे मुझे हमेशा याद रहते हैं। एक तो है बकरी, सर्वेश्वरदास सक्सेना का, और
0: अच्छा
1: दूसरा नाटक था जो कौन नचाए नाच।
0: अच्छा
1: कौन नचाए नाच एक हमारे दोस्त थे, उनका लिखा हुआ है। आजकल वो दूरदर्शन पे बहुत ऊंची चीज है, शायद
0: अच्छा
1: प्रोड्यूसर से भी ऊपर है, रवि जी उनका नाम है, वो
0: अच्छा अच्छा
1: कपूरथला से बिलोंग करते थे। उन्होंने लिखा था नाटक कौन नचाए नाच। उसमें क्या है, जो खास बात हो रही थी कि चाहे राजनैतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे कहीं भी हो, जनता हमेशा नाचती रहती है, नचाने वाले नचाते हैं,
0: नचाते। अच्छा,
1: और हमेशा जनता कठपुतली बनी रहती है। इस वजह से जनता ही हमेशा पिसती है, कभी किसी का नुकसान नहीं होता ऊपर वालों का, तो वो वैसे के वैसे रहते हैं, लेकिन हम जनता ही हमेशा उनको झेलती है, चाहे अच्छा
0: मतलब
1: हो चाहे
0: ये,
1: बुरा
0: हाँ
1: हो।
0: वही कठपुतली वाली बात है, नचाने वाला कोई होता है, हम कठपुतली हैं सब लोग,
1: जी जी
0: वही
1: बिल्कुल,
0: आनंद का जो डायलॉग है, बिल्कुल।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा, तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मेरे को याद आ गया कि साहब ये भी बहुत तो ऊंचे राइटर थे, ये कहा जाता
1: बहुत
0: है
1: ऊंचे
0: आपने
1: राइटर
0: मेरे
1: थे
0: को, बहुत ऊंचे
1: इसमें,
0: राइटर।
1: खासियत जो बकरी नाटक मैंने किया था उसमें, बकरी जो बनाया था मैंने लाइव बकरी बनाई थी, एक पतली सी लड़की ली, और पतली सी लड़की को मैंने उसका वेशभूषा वैसे बनाई, और वो यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में यूथ फेस्टिवल हुआ करता था, उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था उस लड़की को,
0: अरे वाह वाह वाह,
1: और
0: बहुत
1: उसके सिर्फ सिर्फ हाव भाव थे, वो हाव भाव दिखाती थी अपना, लेकिन बोल तो सकती नहीं थी, म्यां-म्यां करके अलावा इसको जो होता है उसका आवाज होती थोड़ी बहुत, लेकिन अदरवाइज उसने कमाल कर दिया था लड़की ने, हाव
0: अच्छा,
1: हाव ऐसे अपने सिर हिलाती थी, जहाँ पांव हिलाती थी जब उसके साथ कुछ भी होता था, तो वो बहुत अच्छा रहा नाटक वो। और वो अभी अभी मुझे याद है उसके, बकरी को क्या पता था मश्क बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वो कुछ ना कहेगी, पानी भरेंगे लोग और वो कुछ ना कहेगी।
0: अच्छा, मश्क बन के रहेगी, ये
1: जी
0: शब्द
1: जी
0: उसके, मश्क वो नहीं होता है जिसमें पानी भरते हैं,
1: हाँ,
0: वो
1: पानी
0: चमड़े
1: पानी
0: की,
1: भरते हैं, चमड़ा
0: मच्छर
1: होता
0: की
1: है
0: जो
1: ना
0: होती है,
1: उसका,
0: चमड़े की जो,
1: उसका शरीर चमड़ा होता है जो, उसी में पानी भरते हैं
0: वो लेके
1: वही।
0: घूमते हैं जिसके जी।
1: हाँ बस, वो कुछ नहीं कहेगी, वो क्या कहेगा,
0: अरे
1: मश क्या कहेगी।
0: क्या क्या गोयल साहब, आपने क्या याद दिला दिया, आजकल के बच्चों को तो मश क्या होता है पता ही नहीं है,
1: नहीं पता
0: हम
1: बिल्कुल नहीं
0: आप तो बात करते
1: पता।
0: हैं, मश देखी नहीं होगी इन्होंने कभी,
1: नहीं,
0: आजकल
1: देखी नहीं
0: के
1: होगी
0: बच्चों ने नहीं
1: वाकई।
0: देखी, नहीं देखी हो, पहले वो नाली के अंदर चलाते थे उसको जब हम छोटे थे,
1: हाँ
0: मुझे
1: बिल्कुल
0: याद है,
1: बिल्कुल
0: सफाई
1: बिल्कुल
0: करते थे।
1: बिल्कुल
0: वाह वाह
1: बिल्कुल
0: वाह, क्या पुरानी याद दिला दिया आपने
1: हाँ जी,
0: सर। तो अब जैसे सिंहासन खाली है या मीरा जैसी प्रस्तुतियां हैं, ये बहुत बड़े बड़े नाटक है, तो इनसे कोई जुड़ी हुई याद हो तो कोई ऐसी बात हो तो
1: मेरा
0: बताइए।
1: सिंहासन खाली है तो एक नाटक था, नाटक किया हमने यूनिवर्सिटी में, सेकंड आया था उसका, लेकिन मीरा जो था उसके साथ मेरी जुड़ी हुई कई बातें हैं। पहली बात, मीरा के मैंने 25 शो किए ऑल ओवर इंडिया में,
0: अच्छा
1: और हम जहाँ डीएवी स्कूल की बस ले जाया करते थे, 45 बच्चे उसमें थे, 45 बच्चे, उन सभी बच्चों को मैं साथ जाता था, मैं डायरेक्ट किया था उस प्ले को, और वो नृत्य नाटिका थी।

0: वो नृत्य नाटिका इतनी मशहूर हुई सारे इंडिया में, 25 जगह पर मैंने किया, कोई डीएवी स्कूल कॉलेज जो हमें स्पॉन्सर कर देते थे। लेकिन खास बात ये थी कि मैंने 5 लाख रुपए कमाए इससे, और 5 लाख ही मैंने अलग अलग जगह पर दान कर दिए। जैसे अमृतसर खेला तो अमृतसर वहां पर पिंगलवाड़ा है वहां दिया है पैसा, जो जहां जो जय लुधियाना खेला, जहां पूना। एक खास बात मैं इसके बारे साझी करना चाहूंगा कि मीरा डांस ड्रामा जब किया था, हमारे एक प्रिंसिपल्स कॉन्फ्रेंस होती है डीएवी की एट पुणे, पुणे में होना था। तो मुझे कहा गया कि मीरा डांस ड्रामा लाना, मैंने कहा कौन लाएगा इतना, मैं यहाँ के राजस्थान के यानी जो लोकगीतों पर आधारित नृत्य होते हैं वो लेके जा रहा था। तो मुझे रास्ते में आ गया, जैसे मैं अभी चढ़ा जयपुर स्टेशन पे थे हम सब लोग, अभी गए नहीं थे, तो मुझे फोन आ गया कि नहीं नहीं मीरा ही लाना आपने। मैं सब बच्चों को उतारा और फिर दोबारा से बस ले गए, 3 दिन में और 2.5 दिन में पहुंचे वहां पर, और फिर प्ले किया वहां पर। उस प्ले को गुलजार ने देखा और एक जो है अपनी नृत्य करती है जिसकी टांग पांव नहीं है,
1: अच्छा सुधा चंद्रन,
0: सुधा चंद्रन, सुधा चंद्रन, इन दोनों ने देखा और सबकी आंखों में आंसू आ गए थे उस वक्त। और खास तौर पे जब मैंने मेड़ता और चित्तौड़गढ़ किया, चित्तौड़गढ़ वाले थे लोग मेरे साथ माफी मांगने आए कि सर हम आपसे माफी मांगते हैं, मीरा के साथ बहुत हमने गलत किया, ऐसा एहसास हुआ, ये मुझे एहसास भूलता नहीं है। और मैं मेड़ता में बारिश हो रही थी, खूब बारिश हो रही थी, लोगों ने पानी में खड़े होकर के नाटक देखा। तो इस तरह से ये मीरा के साथ मेरी बहुत ज्यादा जुड़ी हुई बातें हैं सर।
1: बहुत ही बढ़िया सर, ये तो मजा आ गया। तो चलिए आपके इस मीरा नाटक के नाम पे, और ये जो अच्छा देखिए उस जमाने में मेरे को ये लगता है कि इतनी टेक्निक साउंड इफेक्ट लाइट इफेक्ट वगैरह भी नहीं थे उस जमाने में, तो बहुत बेसिक रूप से नाटक किया करते थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: हाँ सर, अब वापस हम शुरू करते हैं अपनी बातचीत। अब आते हैं हम विकल्प नाट्य संगठन के बारे में चर्चा करते हैं। तो विकल्प की स्थापना का विचार कैसे आया, इसके पीछे आपका मूल उद्देश्य क्या था, कुछ इसके बारे में बताइए हमारे को।
0: विकल्प नाटक संस्थान जो था हमारा बना, नाट्य संस्था, वो 4 लोगों ने बनाई थी उस वक्त, ये 1974 की बात है, 1974 यानी 50 साल पुरानी बात है। उस वक्त एक मिस्टर हरी नारायण थे, और अभी भी हैं हमारे साथ, हरिनारायण शर्मा। दूसरे थे राजेश रेड्डी, जो आपके यानी रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर रहे अल्टीमेटली। एक मिस्टर थे भटनागर साहब, और एक और थे। 4 लोगों ने मिलके आपस में ये नाटक किया करते थे, यूनिवर्सिटी में खेला करते थे, राजस्थान यूनिवर्सिटी में। उनके दिमाग में आया कि हम चारों को इसको कंटिन्यू रखेंगे, इसलिए नाटकों का काम करेंगे, इसलिए संस्था बन गई ये। और संस्था बनते बनते ये लगातार आज 50 साल पूरे कर लिए इसने, 50 साल से ऊपर भी हो गया। हम अभी अभी पिछले दिनों में 1 मार्च 2025 को हमने इसका 50वां जो है दिवस मनाया गया, और उसमें राजेश रेड्डी को बुलाया गया था और हरिनारायण जी को, दोनों को सम्मानित किया था। राजेश रेड्डी एक बहुत लेखक भी है, कवि भी है, नाटककार भी है, बहुत मशहूर आदमी है और इंटरनेशनल स्तर का आदमी है। वो उनके उनकी देख रेख में सारा कांड किया हमने।
1: राजेश रेड्डी जी का नाम मैंने भी सुना है। तो आप विकल्प किस दिशा में काम कर रहा है, क्या उसकी पहचान किस तरह से बना रखी है, आप कोई मंथली करते हैं, किस तरह से क्या है?
0: ऐसा है सर, हाँ, इस दिशा में असल में क्या है कि जो हमारी संस्थाएं हैं, ये नाटक की संस्थाएं आर्थिक स्थिति में बहुत कमजोर रहती हैं। सरकार हमें कोई देती नहीं है, लोगों के चंदे के ऊपर, लोगों की जहाँ कंट्रीब्यूशन के ऊपर है, जहाँ आपस में जो मिलजुल के ही काम करते हैं, तो इसलिए कोई रेगुलरिटी तो बन नहीं सकती इसमें। हाँ, इतना जरूर है कि 2-3 महीने में एक नाटक जरूर हो जाता है, लेकिन इसको मैंने इस बार एज ए प्रेजिडेंट ऑफ नाट्य विकल्प नाट्य संगठन का प्रेजिडेंट के नाते मैंने इसको दिशा दी है नई। इसमें हमारे कुछ नए जो सदस्य जुड़े हैं वो नृत्य के और गाने में यानी संगीत में बहुत अच्छे हैं, उनका संगीत का कार्यक्रम मैंने 2-3 कर दिए इस वजह से, और उसके अलावा मैंने 2-3 नाटक भी कर दिए। नाटक में अब मैं एकांकी की तरफ जाना चाहता हूँ, अब फुल लेंथ की बजाय एकांकी चाहे 2 कर लो या 1 कर लो, लेकिन एकांकी की तरफ जा रहा हूँ मैं। जैसे अभी हमने एक नाटक किया था अंधेर नगरी चौपट राजा के ऊपर, एक छोटा छोटा नाटक किया था, ऐसे ही हमने एक नार मूवी बीमार एक नाटक किया था, वो छोटा नाटक था। इसका मतलब ये हुआ कि आज एकांकी इसको ज्यादा पसंद करेंगे, तो ज्यादा समय लंबा बैठना दर्शक बैठना पसंद कर रहे, तो इसलिए एकांकी का ज्यादा रोल होना चाहिए। उस एंगल से मैं इधर काम और नुक्कड़ नाटक का भी थोड़ा सा ध्यान रख रहा हूँ कि जैसे ये हमारा जो अंधेर नगरी वाला प्ले था, इसमें पानी पे ऊपर हमने वाटर के ऊपर दिया था थोड़ा बहुत आइडिया,
1: अच्छा,
0: जो
1: अच्छा।
0: पानी कैसे बचाया जा सकता है, तो उस एंगल से मैं सोचता हूँ कि सरकार से अगर बात की जाए तो नुक्कड़ नाटक ऐसे बनाए जाए, कुछ कुछ बातों को लेकर के सरकार से बात की जा सकती है या किसी मंत्री से बात की जा सकती है, जिसके ऊपर हम नुक्कड़ नाटक करें और उसके साथ संदेश भी दे सके।
1: लोगों में पानी की कंजर्वेशन के लिए संदेश जाए, तो अगर नाटकों के माध्यम से दिया जाए तो बहुत अच्छा
0: जी, जी,
1: तो जी, इसका मतलब है कुछ चुनौतियां तो हैं। देखिए विकल्प चलाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, आर्थिक आपने बता ही दिया, कलाकारों की उपलब्धता भी होगी, लोगों पे इतना समय भी नहीं होता होगा रिहर्सल वगैरह के लिए आ पाए
0: नहीं। इसमें मैंने एक तजर्बा किया, इसमें एक मैंने प्रयोग किया कि हमारे एक मिस्टर प्रेमचंद गांधी जी हैं, ही इज ए वेरी गुड राइटर आल्सो, उन्होंने गाथा बंदनी एक नाटक लिखा, अच्छा। उसके 4 हिस्सों 4 कहानियां हैं उसकी, कि 4 स्त्रियां जो हैं वो शिकार हो जाती हैं, यानी जिसको बोलते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट का, तो उन चारों ने अपने चारों अलग अलग एरियाज में, जैसे एक लड़की है जो ईसाई लड़की है और वो अच्छा। किसी कारण से किसी के साथ लग जाती है और उसका मर्डर कर देती है, उसका अच्छा। कारण सही होता है, कारण जो मर्डर का वो सही है, जैसे एक ग्रामीण क्षेत्र की लड़की है, उसका जो सरपंच है वो उसका दुष्कर्म करता है उसके साथ,
1: अच्छा।
0: उसे मर्डर कर दिया, ऐसे एक बाबा, मैंने बाबा का रोल अदा किया उसमें, यानी अच्छा। जो जैसे आज के जमाने में बाबा काम करते हैं उस बाबा का मर्डर हो गया, तो इस तरह से 4 कहानियां थी अलग अलग, लेकिन 4 कहानी के पात्र सबके अलग अलग थे, इसलिए हमारे रिहर्सल की प्रॉब्लम नहीं आई, नहीं अदरवाइज तो इकट्ठा नाटक पूरा 3 घंटे का 2.5 घंटे का करना हो तो बड़ा मुश्किल होता है।
1: ये गाथा बंदी में जो कुछ याद आ रहा है आपका, अभी हुआ था इसी में क्या, भगवंत ने इसी में पार्ट किया था क्या?
0: हाँ, इसमें जेलर का रोल अदा किया सबसे ज्यादा,
1: जेलर का, अब याद आ गया मुझे।
0: हाँ जी,
1: अरे मैं भगवंत से
0: अभी दूरदर्शन पे जा रहे हैं, दूरदर्शन पे जा रहे हैं अभी, एक उसका एपिसोड हो गया, दूसरा एपिसोड होना है 5 तारीख को, 5 मार्च को उसकी हो रही है, यानी रिहर्सल चल रही है आजकल, हमारी शुरू होगी रिहर्सल, आज शुरू हो रही है, तो इस तरह से भगवंत कौर बहुत अच्छी नाटक कर रहा है, अच्छी अच्छी अभिनेता है, बहुत पुरानी है
1: वो सर, हमारे बैंक में भी बहुत नाटक करती थी, क्योंकि मैं तो उसको जाने कब से कह रहा हूँ, उसका भी रेडियो इंटरव्यू करना है, लेकिन आजकल बड़ी कभी इधर चली जाती है कभी उधर चली जाती है, बिजी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल।
1: भगवंत मेरी बड़ी पुरानी मित्री है एक तरह से, हम लोग नौकरी साथ साथ की है काफी समय,
0: क्या बात है साहब।
1: तो मेरे को तो विकल्प वो बहुत बोलती थी, अब मेरे को विकल्प के अध्यक्ष ही मिल गए तो मेरी खुशकिस्मती है, मैं विकल्प के नाटक मैं जा रही हूँ, मैं वहां बिजी हूँ ऐसे बहुत कहती रहती थी मेरे से। चलिए तो इसी उस पे हम एक गाना सुन लेते हैं और फिर आगे बातचीत शुरू करते हैं।
0: जी जी जी बिल्कुल।

0: अच्छा गोयल साहब, तो आपको क्या लगता है कि आजकल जो एक ये सिनेरियो बन रहा है मंच का, तो युवाओं की रंगमंच के प्रति गंभीरता कम हुई है या इसका रूप बदल गया है? नए बच्चे आ रहे हैं, स्टेज से जुड़ रहे हैं, क्या
1: दोनों दोनों
0: आपको?
1: चीजें हैं साहब, दोनों चीजें
0: अच्छा,
1: हैं। इसमें रंगमंच के प्रति गंभीरता भी कम हो गई है, लोग ज्यादा जल्दी ही रिजल्ट चाहते हैं, हर आदमी परिणाम चाहता है, परिणाम ये। लेकिन रंगमंच आप जानते हो कि ये तो एक ऐसी विधा है जहां पर परिश्रम की लोड जरूरत है, जहां पर हर तरह से एक तरह का समर्पण की जरूरत है, वो समर्पण नहीं हो सकता आज के जमाने में, तो इसलिए गंभीरता तो कम हुई। लेकिन जो रूप बदला है इसका, जैसे वेब सीरीज शुरू हो गई है या OTT हो गया है, ऐसा कुछ वहां पर झुकाव तो हो रहा है, लेकिन वो अच्छा नहीं हो रहा। उससे रंगमंच, जो हमारा पुराना रंगमंच, जो हमारी जो सब संस्कृति के मुताबिक हम कहें तो अच्छी नहीं है बात, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। युवा बिल्कुल बेकार तो नहीं है इस बात के लिए, लेकिन फिर भी झुकाव तो दूसरी तरफ ज्यादा हो रहा है।
0: तो कुछ ऐसा बताइए, आपने विकल्प से जुड़े से नए कलाकार हैं जिन्हें आपने तैयार किया हो और आपको लगता है कि भाई इन्होंने बहुत अच्छा किया है ना, आपको एक गर्व महसूस होता हो, कोई ऐसे कलाकार
1: बिल्कुल,
0: ग्रूम किए हो आपने बताए
1: मैं
0: हो?
1: आपको बताता हूँ सर कि आलोक जी, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास जो नृत्य के लड़कियां आई हैं, खास तौर पे 60 ईयर अबाब की एज की एक मीरा सक्सेना करके लड़की है,
0: अच्छा,
1: लेडी, और इसके अलावा रुनझुन घोष करके की लड़की है, जो कि 125 सिर पे घड़े रख करके नाचती है, बबाई डांस करती है वो, और लोग, हाँ,
0: बहुत
1: बबाई करती है, और उसकी जो मदर है वो बहुत बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी है और कोच भी है। उसने हमारे दोस्त जो बच्चे थे मीरा, जो बबाई डांस किया 125 सिर पे घड़े रख करके, छोटे छोटे घड़े रख करके, और हमारे दो बच्चे जो थे DAV के, वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ। इस वजह से मैं गर्व महसूस करता हूँ उनके बच्चों के लिए जो मैंने तैयार किए थे। उसके अलावा अभी यहाँ मुझे नाटक कर रहे हैं, उसमें नए लोग लिए जा रहे हैं, जैसे एक जुरानी करके लड़का है, तो इस तरह से कुछ नए कुछ पुराने मलामलू के अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा विकल्प जो है, अच्छे नाटक दे सके, अच्छे नृत्य दे सके, अच्छे गीत दे सके। अभी मैंने जगजीत सिंह पर एक उनकी नाइट करनी है, जगजीत सिंह के जो हमारे पास गायक है ना, मेरे अपने गायक, जैसे तीन चार गायक हैं, जैसे ओम गोस्वामी है, प्रबोध गोस्वामी है, ऐसे एक एक और लड़का है हमारे पास, तो तीन चार लड़के हैं, और एक मेरा स्टूडेंट है USA से आया हुआ है यहाँ पर पंजाब का, वो बहुत अच्छा बहुत अच्छा गाता है, क्लासिकल गाता है, वो वहाँ प्रोग्राम देता है, स्टेज शो देता है, वो पर चांस आया हुआ। उनका लेकर 29 मार्च को मैं करने जा रहा हूँ, एक जगजीत सिंह के नाम श्रद्धांजलि समारोह, स्वरांजलि समारोह।
0: चलिए, उसके लिए सर बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, और जगजीत सिंह का
1: बहुत
0: प्रोग्राम
1: धन्यवाद
0: करें
1: साहब,
0: तो हमें भी याद कर लीजिए, हम भी
1: जरूर
0: गजल
1: जरूर
0: के
1: जरूर
0: फैन हैं,
1: जरूर जरूर जरूर साहब, जरूर आप,
0: गजल
1: मेरा
0: के फैन
1: सौभाग्य
0: हैं।
1: होगा, मेरा सौभाग्य होगा साहब।
0: मैं साहब तलत महमूद, जगजीत सिंह इनका बड़ा फैन हूँ।
1: अरे क्या बात साहब, आपको अच्छा लगेगा, मेरा ऐसा ख्याल है।
0: नहीं, बिल्कुल अच्छा लगेगा सर। तो आपके, आप ये बताइए कि जैसे आजकल रंगमंच और फिल्म अभिनय तो बहुत हो ही गया, OTT वेब सीरीज वगैरह में, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है एक्टिंग जब हम स्टेज पे करते हैं और जब हम फिल्म के लिए एक्टिंग करते हैं, तो आपको क्या लगता है बेसिक डिफरेंस क्या है?
1: बेसिक डिफरेंस यही है कि रंगमंच में जो खासियत ये है कि एक्टर को सब कुछ वहीं दिखाना पड़ता है, उसको सब 100% देना पड़ेगा, तभी वो कामयाब होगा। लेकिन फिल्म में तो कहीं भी कट कर दो, कहीं भी काम कम कर दो, ज्यादा कर दो, आवाज ऊंची कर दो, टेक्निक का बहुत जरूरी हो सकता है। लेकिन रंगमंच में तो जब तक आवाज अच्छी नहीं होती, जब तक हाव भाव अच्छे नहीं देगा बच्चा, कोई भी बंदा, तो काम नहीं हो सकता। इसी रंगमंच का ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। मैं आपको एक, अगर इजाजत दो, घटना सुनाना चाहूंगा। जहां पर
0: हाँ, सुनाइए सर।
1: मेरे, मैं जब BA फाइनल में पढ़ता था पंजाब में, तो मेरे पास बलराज सहनी आया करते थे, उस तरफ डूडी के गांव है जहां लाल लाजपत राय का जन्म हुआ था, वहां पर एक नावलकार थे।

0: जसवंत सिंह, उनके पास वो दोस्त थे, आपस में दोस्त थे, एक महीने के लिए आया करते बड़ा आसानी। तो मैंने कॉलेज में बुलाया उनको, उनसे पूछा कि रंगमंच में, वो रंगमंच के साथ जुड़े हुए थे तो बड़ा आसानी, मैंने उनसे पूछा कि कैसे मुश्किल होता है। तो उन्होंने 2 बीघा जमीन का एक एग्जाम्पल दी, मुझे घटना सुनाई कि मैं जब 2 बीघा जमीन का जो टांगा लेकर के भाग रहा था, तो मुझे कहता जो मेरा निदेशक था वो कहता था कि और भागो और भागो, जब तक खून नहीं निकल आए तब तक उसने मुझे छोड़ा नहीं। यानी इस स्थिति तक साधना की जाती है रंगमंच में, तो यानी खून मांगती है रंगमंच, लेकिन फिल्म में वो चीज नहीं। फिल्म में बहुत सारी चीजें सुरक्षित की जा सकती हैं, ऑलरेडी किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन रंगमंच में सब कुछ अपने ही आप ही देना होता है सब कुछ। तो ये मेरा ख्याल यही अलग डिफरेंस है सबसे बड़ा।
1: नहीं सही बात है। और बलराम साहनी तो क्या तो करेक्टर एक्टर थे साहब, क्या
0: अरे क्या बात
1: याद दिला दी, क्या बात। बलराम साहनी के भाई थे भीष्म साहनी, वो भी बहुत अच्छा
0: लिखते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो पंजाब के थे,
1: पंजाब के थे दोनों, बहुत
0: बिल्कुल गुरदासपुर के थे। हाँ जी हाँ जी,
1: बहुत बढ़िया। अच्छा तो ये भाई में जब ये बात चल रही है, तो NSG से जो कलाकार निकलते हैं इनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कैसे क्या है?
0: मैं समझता हूँ सबसे बढ़िया निकल रहे हैं जो NSG से निकल रहे हैं, क्योंकि उनको यानी नीचे स्तर तक रह करके, जमीनी स्तर पर रह करके काम करना पड़ता है और एक्टिंग को की बारीकियों को हर तरह से सीखना पड़ता है। इसलिए वो मैं समझता हूँ कि असली जो रंगमंच है वो नाट्य संस्थाओं से जो प्रशिक्षित होकर के आते हैं, निखर के आते हैं, वो ज्यादा अच्छे होते हैं। मेरा ख्याल तो यही है। अलकाजी का नाम आपने सुना ही है, अलकाजी का क्या बात है साहब, बहुत सारे जितने एक्टर हैं, अच्छे एक्टर जितने भी हुए हैं, वो सब हमेशा NSG से निकले हुए, जो ज्यादा अच्छे लगे आपको, मेरा ख्याल है कि दूसरे इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी एक नेचुरल किसी के टैलेंट होता है तो वो आता है, ऊपर आते हैं, बहुत सारे आते हैं लोग, लेकिन फिर भी अगर प्रशिक्षित होगा और नेचुरल भी हो तो मिला के और भी अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए NSG से निकले हुए लोगों को मैं अच्छा समझता हूँ।
1: अब बलराज साहनी साहब के नाम पे हम एक गाना सुन लेते हैं, कोई उनकी फिल्म का ही है ना, तो रुक जाते हैं। आपने बात याद दिला दी उनकी।
0: जी जी जी।

0: अब थोड़ा सा इधर आ जाते हैं गोयल साहब, आपकी जो डीएवी कॉलेज के आप प्रिंसिपल भी रहे हैं और इतने विद्वान हैं, तो एक शिक्षाविद और समाज सेवी के रूप में आपकी सामाजिक गतिविधियां रंगमंच से कैसे जुड़ती है? क्योंकि आप सामाजिक गतिविधियों में भी इन्वॉल्व रहते हैं, शिक्षाविद तो हैं ही आप, एजुकेशनिस्ट तो हैं ही, तो रंगमंच भी आप थे, तीनों चीजों को कैसे बैलेंस करते हैं, क्या करते हैं आप?
1: हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी समाज की आवश्यकताएं होती हैं उसके मुताबिक हम थिएटर को करें।
0: जी
1: यानी जब चुनते हैं हम कोई भी नाटक, तो कोशिश होती है कि समाज का कोई ना कोई पहलू छुआ जा सके, उसे उसके उसका उद्देश्य पूरा किया जा सके। इसे जैसे नृत्य नाटकाएं हैं, जैसे मीरा नृत्य नाटका है हमारी, मीरा नृत्य नाटका ने बहुत अच्छा काम किया समाज सेवा का। समाज सेवा के साथ साथ एक यानी बहुत अच्छा उसका प्रदर्शन रहा, और उससे जो पैसा कमाया गया वो आगे दिया गया। तो इस तरह से एक तरह का समाज सेवा के रूप में मैं कार्य करता रहा। और हमने एक प्रोग्राम दिया था बागा बॉर्डर पर, जिसमें मैं नृत्य नृत्य दिए थे सारे, और थोड़ा छोटा मोटा एक प्ले दिया था। वो बहुत पसंद आया था पाकिस्तानियों को भी। मैं पाकिस्तान भी 3 बार गया हूँ वहां पर, वहां का नाटक देखा। तो वहाँ सामाजिक सरोकारों को ज्यादा जोड़ते हैं पाकिस्तान वाले,
0: अच्छा
1: हम भी
0: अच्छा
1: कोशिश करते हैं लेकिन पाकिस्तान वाले ज्यादा जोड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बाहर बैठा था, नाटक देख रहा, लड्डू करारे पंजाबी में था, लड्डू करारे, तो वो क्या करते हैं मुझे उठा लिया जी। पता लग गया कि मैं तो थोड़ा जुड़ा हूँ रंगमंच के साथ, मुझे स्टेज पे ले गए, मुझे अपना एक भूमिका बना दी उन्होंने, मेरी एक एक पात्र बना दिया उस इमीडिएटली उन्होंने। इस तरह के कार्य करने से समाज को जोड़ना और भी आसान हो जाता है। तो इस तरह से नाटक के तौर पे मैं ये कर पाया हूँ, थोड़ा बहुत समाज सेवा का काम भी करता रहा। जैसे आपको बताया कि मैंने 5 लाख रुपए कमाए और वो आगे बांट दिए, तो बांटने में मजा आता है साहब, ऐसी है।
0: ये दान की तो प्रवृत्ति आपने शुरू से ही है ना, अपने फादर से आपने लिया है, बातें
1: जी।
0: करते ही है। नहीं तो पाकिस्तान का किस्सा आपने अच्छा सुनाया, वाघा बॉर्डर पे भी आपने प्ले किया है, क्या
1: हाँ,
0: श्रोताओं, मतलब
1: पंजाब में
0: पाकिस्तान,
1: सदर।
0: बिल्कुल सही बात है। वहां पाकिस्तान में पंजाबी लैंग्वेज ज्यादा यूज आती है नाटकों
1: हाँ
0: में भी,
1: बिल्कुल, पंजाबी
0: और
1: लैंग्वेज, पंजाबी
0: हाँ
1: लैंग्वेज ही थी। कठपुतली नाटक एक बहुत अच्छा था मेरा, पंजाबी प्ले
0: अच्छा
1: जो कपूर सिंह को मंका लिखा हुआ है। तो इस तरह से पंजाबी प्ले भी बहुत किए मैंने, लेकिन हिंदी प्ले ज्यादा किए मैंने।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: हाँ
0: अच्छा
1: जी।
0: क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा शौक है, पाकिस्तानी जो टीवी ड्रामास आते हैं
1: हाँ,
0: मैं यूट्यूब पे काफी देखता हूँ, बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। एक
1: वो
0: तो
1: शरण सिंह एक अमृतसर में एक बंदा था जी, ही इज डेड नाउ, ही इज ए
0: अच्छा
1: वेरी गुड नुक्कड़ नाटक। मैं एनएसएस के नेशनल सर्विस स्कीम के कैंप लगाया करता था एज ए
0: अच्छा
1: टीचर,
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: वहां पर मैं उनको बुलाया करता था। वो सिर्फ आने जाने का खर्चा लिया करते थे मुझसे 500-700 रुपए, और वो यानी समाज की जो असलियत है उनके ऊपर नाटक किया करते थे, और
0: अच्छा
1: वो गांव में 10-10 हजार की गैदरिंग को एड्रेस कर देते थे। और
0: अच्छा
1: एक बार तो हमारा ऐसा हुआ कि लाइट चली गई, तो हमारे चारों तरफ ट्रैक्टर थे खड़े, मैंने कहा ट्रैक्टर की लाइट जगा लो भाई, ट्रैक्टर की
0: अच्छा
1: लाइट जगा के भी हमने प्ले किया। तो
0: अरे
1: एक सामाजिक सरोकारों का बहुत अच्छा मैं तरीका बनाया था, नेशनल सर्विस स्कीम के हर कैंप में उनको बुलाया करता था, और कैंपों में प्रोग्राम किया करता था नाटकों के द्वारा। 3-4 नाटक करते थे वो, 5-3 घंटे का प्रोग्राम होता था, बहुत अच्छा होता था। इस तरह से
0: यार,
1: सामाजिक सरोकारों के काम
0: वही
1: करता
0: वही
1: रहा हूँ।
0: मेरा अगला प्रश्न भी यही था कि आपको लगता है कि थिएटर समाज परिवर्तन का प्रभावी माध्यम है।
1: यस, बिल्कुल
0: नेचुरली
1: बिल्कुल।
0: आपने नुक्कड़ माध्यम के से बता ही दिया कि अगर हम करें तो जुड़
1: हाँ
0: सकते हैं।
1: जी
0: तो
1: जी
0: चलिए, समाज और थिएटर का ये जो संबंध है इस पे रुक के हम एक कोई गाना सुन लेते हैं,
1: जी
0: और
1: जी
0: करीब करीब हम बकौल अमीन सयानी आखिरी पायदान पर आ गए हैं, और इसके
1: हाँ
0: बाद में बस एक दो प्रश्न और हैं, फिर अपन समाप्त करेंगे।
2: ये भाई दर्द

में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: वफादार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: ये श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: गोयल साहब, आप अपने लंबे अनुभव के आधार पर अब युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर उन लोगों के लिए जो अब रंगमंच में आना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है?
1: उनके लिए मैं चार लाइनें बोलना चाहूंगा सर।
0: अरे वाह, स्वागत है।
1: इसके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि हजारों मुश्किलें हैं इंसान के आगे, सब गुबारा है मुझे ईमान के आगे। रोशनी कहीं बदनाम ना हो जाए इस डर से, रख दिया मैंने दिया तूफान के आगे।
0: वाह बहुत सुंदर सा, वाह।
1: तो मुश्किलें हमेशा आती हैं इंसान के आगे, और जो दृढ़ संकल्प होते हैं वही लोग रंगमंच में आ सकते हैं। और युवाओं को मेरा संदेश है, अगर रंगमंच पे आना है तो दृढ़ संकल्प होकर के, जुनून को साथ लेकर के, अपनी हर चीज को भूल करके, अनुशासनहीन हो, अनुशासन को अपनाते हुए अगर आप आ सकते तो आना चाहिए, नहीं अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जहां पर रंगमंच जो है आपका परिश्रम मांगता है, रंगमंच आपके लिए सबको देने को तैयार है, लेकिन बाद में देता है पहले लेता है। आप क्या दे सकते हो, वो देने वाली प्रवृत्ति अगर होगी, चाहे अपना समय देना रिहर्सल के लिए समय देना, और उसके अलावा सब कुछ दे देना अपने आप को, यदि दृढ़ संकल्प होकर के कार्य करोगे तो रंगमंच और भी उभरेगा और नए कलाकार भी आएंगे, नए युवा जुड़ेंगे। युवाओं के लिए मेरा यही है कि मुश्किल हमेशा आती है, मुश्किलें हमेशा आएंगी, लेकिन उसको सामना करना जरूरी है। हर बाधाओं का जो सामना अगर करता है इंसान, वही कामयाब होता है। संघर्ष के बिना जीवन नहीं है। कि लहरों से लड़ो, तूफानों से जूझो, क्या चलते हो किनारे किनारे, किनारे किनारे चलने से कुछ नहीं होता, संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष के बिना कुछ नहीं हो सकता।
0: अच्छा गोयल साहब, मुझे अभी ऐसे बैठे बैठे ख्याल आया कि आप इतने बड़े स्टेज के आर्टिस्ट हो, हमने आपसे कोई डायलॉग नहीं सुना, तो तो मैं, ये तो बड़ी हमारी हमारी तरफ से गलती हो जाएगी।
1: नहीं,
0: आपके इतने प्ले आपने किए, कोई अगर आपका मन हो, कोई
1: मैंने एक डमरू नाथ एज ए स्टूडेंट मैंने डमरू नाथ प्ले किया था, जिसमें वो जो ओझा होते हैं उसका रोल अदा किया था मैंने।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: तो उसका मैं एक डायलॉग सुना देता हूँ।
0: सुना दीजिए।
1: जय काली काली महाकाली, ब्रह्मा की पुत्री इंद्र की साली, जा बैठी पीपल की डाली, पलट तेरा ध्यान किधर है। जब पलट तेरा ध्यान किधर है बोलता था मैं, चुमटे के साथ खड़काता था, तो कई बच्चे उठ जाते थे, नींद से उठ जाते थे। तो अब तो 80 साल का हो गया मैं, उतनी आवाज में वो दम नहीं रहा, लेकिन वक्त था जब दम था।
0: नहीं नहीं आपकी आवाज में अभी भी दम है, और 80 साल पे आपका स्टेज के प्रति पैशन जो है, मतलब अच्छे अच्छे युवाओं को शर्मसार कर दे, मैं तो ये कहूंगा सर। मतलब मेरे को तो बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है। आप हैं, अमिताभ बच्चन हैं, वो 83 इयर्स पे भी देखिए क्या केबीसी और
1: मुकाबला हो सकता है। तो
0: ऐसे लोग विलक्षण होते हैं,
1: शताब्दी के लोग हैं वो तो साहब,
0: शताब्दी के लोग हैं साहब, मतलब विलक्षण है। इस उम्र को जैसे रोक रख के रखा हुआ है,
1: जी जी जी,
0: और वही जोश, वही वो जोश पूरा दौड़ के आते हैं अभी भी केबीसी के अंदर, आप देखिए।
1: हाँ बिल्कुल, कभी आप चल के नहीं आएंगे, दौड़ के आएंगे। हाँ,
0: दौड़ के आएंगे, मतलब कभी आप उनको ढीला डाला नहीं।
1: मैं भी 80 साल की उम्र पे भी थिएटर कर रहा हूँ, तो यही कारण है कि इन लोगों का ही पूरा प्रेरणा मिलती है हमें, अमिताभ बच्चन जैसे लोगों से, नहीं तो कैसे आदमी बढ़ता है आगे के लिए।
0: आपको सलाम है सर हमारी तरफ से, हम तो यही।
1: मैं जिंदगी के रंग, गीतों के संग, दर्शकों का और खास तौर पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे सुना और मेरे कुछ बातों को ध्यान में रखा होगा, ऐसा मेरा ख्याल है कि इसका शायद कोई फायदा हो सके तो बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।
0: नहीं नहीं सर, अभी अभी अभी अभी अपन समापन करते हैं। तो गोयल जी, आपसे बातचीत सचमुच एक प्रेरणादायक अनुभव रहा। आपने जिस सादगी, स्पष्टता और आत्मीयता से अपने जीवन के अनुभव साझा किए, उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। आपकी यात्रा हमें सिखाती है कि मंच केवल रोशनी और तालियों का नाम नहीं, बल्कि वह एक साधना है, समर्पण की, संस्कारों की और स्मृति जिम्मेदारी की। विकल्प जैसी संगठन के माध्यम से नई पीढ़ी को दिशा देना और बदलते दौर में भी रंगमंच की ज्योति को प्रज्वलित रखना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है। हम आशा करते हैं आपकी ये ऊर्जा और प्रेरणा आने वाली पीढ़ियों तक यूं ही पहुंचती रहे। आपने आज हमारे लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
1: मेरा जिंदगी के रंग गीतों के संग कार्यक्रम के लिए सलाम।
0: आज के लिए इतना ही। मैं हूं आलोक कुमार, आप सुन रहे हैं जिंदगी के रंग गीतों के संग। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ। नमस्ते।
2: मगर अब जो आना तो धीरे से आना।
3: और दोस्तों, इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी।

फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान, एक नई कहानी और नए गीतों के साथ, जिंदगी के रंग गीतों के संग इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

और दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में आज हैं द लेजेंडरी एक्टर ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन। जी हां दोस्तों, पेशे खिदमत है अमिताभ बच्चन साहब की ही एक फिल्म का ये गीत।

0: हमारे साथ बने हुए हैं गोपाल रघुवंशी जी अलीगढ़ से। मैं गोपाल जी से पूछना चाहूंगा, आप अमिताभ बच्चन जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: उनके बारे में कुछ कहना, सूरज को दीपक दिखाना है, मतलब उनके बारे में इतने लोगों ने इतनी बातें कर दी, मैं कुछ भी बोलूंगा कुछ भी तो बहुत छोटी चीज होगी। अमिताभ बच्चन नेम इज इटसेल्फ, अपने अपने लेजेंडरी कह लो, परसोना कह लो, कुछ भी कह लो आप उस आदमी को। मेरी तो मुझे लगता है कि जब से मैंने होश संभाला है फिल्म इंडस्ट्री में या रेस्पेक्टेड फिगर्स में, उनसे ऊपर शायद एक दो लोग ही होंगे, लाइक गावस्कर और तेंदुलकर और किशोर कुमार। बाकी आई रेट अमिताभ बच्चन, वेरी रेस्पेक्टेबल फिगर, वेरी एडोरेबल फिगर, एवरीथिंग, मतलब ही मींस एवरीथिंग टू मी।
0: बेहतरीन बेहतरीन। गोपाल भाई, तो क्या मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूँ कि अमिताभ बच्चन जी के ऊपर फिल्माया हुआ आपका पसंदीदा गीत जो आप श्रोताओं को सुनवाना चाहें हमें बताएं?
1: सर, अमिताभ बच्चन पे फिल्माई हुई मुझे हर चीज पसंद है, तो मैं, इट इज वेरी हार्ड टू पिक मी वन सॉन्ग, बट स्टिल दिल भर मेरे कब तक मुझे है।

0: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शानदार। तो गोपाल रघुवंशी जी का जो ये फेवरेट सॉन्ग है, या वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है अमिताभ बच्चन जी का, वो श्रोताओं आपके लिए पेशे खिदमत है। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी हमारे साथ बने रहने के लिए।
1: थैंक्स थैंक्स।
2: दोस्तों, अमिताभ बच्चन साहब का जन्म 11 अक्टूबर 1942 में अलाहाबाद में हुआ, जिसे आज प्रयागराज बुलाया जाता है, और इनके पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन। पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम। यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं किसी से भी, हारे नहीं हम।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: ट्रेन में वार्निंग लिखी थी, बिना टिकट सफर करने वाले यात्री होशियार। संता तो ये लाइन पढ़ते ही बिखर गया। वाजी, ये कोई बात हुई? बिना टिकट सफर करने वाले होशियार और हमने टिकट ले लिया तो हम बेवकूफ।
2: बाबूजी मेरा ट्रांसफर दो ना प्लीज। सुनो कितना अच्छा गाना आ रहा है।
3: ऑल इंडिया रेडियो से आ रहा है? ऑल इंडिया रेडियो तेरे बाप का नहीं, जो इतने देर तक तेरे लिए बजता रहेगा। कोई गा रहा होगा। सो जाएगी ना?
2: हाँ।
3: चल सो जा।

दोस्तों, अमिताभ बच्चन साहब के बारे में कितना कहा जा सकता है ये तो मुझे मालूम नहीं, मेरे बताने से बहुत बहुत ज्यादा आप लोगों को पता होगा। पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का, उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये खूबसूरत सा गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। मेरी ओर देखो, हवा में उड़ता ये नष्ट हो जाने वाला सूखा पत्ता कहता है मुझसे, मेरी ओर तो देखो।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर। आप मेरे साथ है ना?
1: मैं हूँ आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
2: पत्नी ने कहा, सुनो जी, डॉक्टर ने मुझे एक महीना आराम करने के लिए स्विट्जरलैंड या पेरिस जाने को कहा है, हम कहाँ जाएंगे? पति ने कहा, दूसरे डॉक्टर के पास। What?

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, हर बीमारी का आज भी एक ही रामबाण इलाज है। सो जाओ, थोड़ी देर अपने आप ठीक हो जाएगा।

दोस्तों, अमिताभ बच्चन की फिल्में हम हमेशा देखना चाहते हैं, अमिताभ बच्चन साहब के गाने हम हमेशा सुनना चाहते हैं। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की आवाज में ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

और दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम के जो एक्टर हैं उनका नाम है अनिल कपूर। बेहद ही हंसमुख और हमेशा ही जवान दिखने वाले अनिल कपूर बेहद पॉपुलर एक्टर हैं बॉलीवुड के। तो लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़, तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं, तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं, तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: यार तुम्हारा कुत्ता तो टाइगर जैसा दिखता है, क्या खिलाते हो तुम इसको? बंदा ने कहा, अरे भाई ये टाइगर ही है, ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर इसकी शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है।
2: 1980 के दशक में ढेर सारी फिल्में की अनिल कपूर ने, और हम सभी का भरपूर मनोरंजन किया अपने चुलबुले अंदाज में। लीजिए, हो जाए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना? अनिल कपूर जी ने बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस भी की, जिसमें बधाई हो बधाई, माई वाइफ्स मर्डर, गांधी, माई फादर जैसी फिल्में आती हैं।

मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। एक बार एक सब्जी वाला सब्जियों पर पानी छिड़क रहा था, छिड़कता जा रहा था। काफी देर हो गई तो ग्राहक ने गुस्से से बोला, सुनो अब अगर भिंडी होश में आ गई हो तो 1 किलो तौल दो।

अनिल कपूर जी थोड़ा बहुत गा भी लेते हैं, जैसे उनकी बॉलीवुड कॉमेडी चमेली की शादी में उन्होंने थोड़ा सा गाया भी था। तो लीजिए, पेशे खिदमत है उनकी ही फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आज के कलाकार अनिल कपूर जी की फिल्म का ये गीत।

0: मैं सर्विस में रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब में, और पेशे से मैं चिकित्सक हूँ।
1: जी बहुत खूब। तो अशोक सर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए अपनी गजल सुनाएं।
0: जी, मैं कुछ अशआर पेश करता हूँ। देखें
1: इरशाद
0: कि
1: इरशाद।
0: एक मतलब यूं कहा है कि उसकी सूरत गुलाब की सूरत, उसकी सूरत गुलाब की सूरत, यूं मेरे महताब की सूरत। उसकी सूरत गुलाब की सूरत, यूं मेरे महताब की सूरत, चांद भी रूबरू नहीं होता, चांद भी रूबरू नहीं होता, ऐसी मेरे जनाब की सूरत। चांद भी रूबरू नहीं होता,
1: जी
0: ऐसी मेरे जनाब की सूरत, एक लम्हे पे क्यों गुमा इतना, एक लम्हे पे क्यों गुमा इतना, जिंदगी है ख्वाब की सूरत, एक लम्हे पे क्यों गुमा इतना, जिंदगी है हुबाब की सूरत।
1: बहुत खूब।
0: और एक शेर देखें कि क्या खबर कब सफर ये थम जाए, क्या
1: जी
0: खबर कब सफर ये थम जाए, देख तो लूं जनाब की सूरत,
1: क्या बात
0: देख
1: है,
0: तो लूं जनाब की सूरत। शुक्रिया जनाब,
1: बहुत खूब बहुत खूब, बहुत ही
0: शुक्रिया।
1: सुंदर। तो मैं अब आपसे गुजारिश करूंगा सर कि अपने किसी पसंदीदा गजल गायक की कोई गजल बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनवाएं।
0: मेरे पसंदीदा शायरों में सबसे पहला जो नाम आता है वो है मोहतरम जनाब मीर तकी मीर मरहूम साहब।
1: जी
0: और जो उनकी बेहद जो मुझे गजल जो पसंद है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने
1: जी
0: न जाने गुल ही न जाने, बात तो सारा जाने है।
1: क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। तो आइए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारी सी गजल अशोक सर के हुक्म पर।

0: बहुत खूब सर, आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि एक छोटा सा ही सवाल कि आप बचपन में क्या बनना चाहते थे साहब?
1: दरअसल समीर साहब, मैं बताऊं आपको कि इन द क्लास ऑफ 9th 10th, मैं इन द ईयर ऑफ 1966,
0: जी
1: मेरा बड़ा ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं।
0: जी
1: और ये इत्तेफाक है या हुस्न इत्तेफाक है आप इसे,
0: क्या बात है
1: दैट्स आई एम। और मेरे वालिदे मोहतरम जो थे
0: जी
1: वो कवि थे और काफी नामचीन अपने समय में रहे। परिवार
0: जी
1: में लगभग सभी लोग साहित्य में दखलंदाजी रखते हैं।
0: क्या बात है, बहुत खूब। तो आपने
1: मेरे
0: जी
1: जी
0: जी जी कहिए कहिए।
1: हमने काका हाथरसी, नीरज जी, बालकवि बैरागी, अटल जी, इन सब, राहत इंदौरी साहब, और इन सभी लोगों के साथ पार्टिसिपेट किया है, मंच को साझा किया है उन लोगों के साथ। और मैं भी बचपन से ही लिखता रहा हूं, लेकिन 90s में आके मैंने अपना ट्रैक चेंज किया तो मैं हिंदी से उर्दू के खत्ते में आ गया। तो उसके लिए मैंने बाकायदा उर्दू लिखना पढ़ना सीखा, डिप्लोमा किया और उसके बाद पीजी की तैयारी की थी कामराज यूनिवर्सिटी से। लेकिन
0: जी
1: चूंकि मेरा एग्जामिनेशन सेंटर बहुत दूर था तो मैं पूरे पेपर से नहीं दे सका उसके, लेकिन उर्दू लिखना पढ़ना और एक इसे अजीब इत्तेफाक कह सकते हैं आप कि मेरा ना तो

0: इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ।
1: अरे वाह, क्या बात है।
0: गजल मेरे लिए पैशन नहीं है, शौक नहीं है, ये मेरे पार्ट ऑफ लाइफ है। जिस तरह मुझे सोना, जागना, सांस लेना जरूरी है, उसी तरह मैं गजल को जीता हूं।
1: भाई वाह, क्या
0: और
1: बात
0: ये
1: है जी।
0: अजीब इत्तेफाक मानेंगे आप कि मैं बाकी गजल को जीता ही हूं, मैं
1: जी
0: एक सेकंड भी इसके बिना नहीं रहता।
1: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही प्यारी बात। बहुत बहुत बढ़िया कि एक ऐसी कला है जिसको आप हर सेकंड, हर पल अपने साथ जीने जीते हैं, जिसका हर पल आप सांसों में महसूस करते हैं उसे। क्या बात है, बहुत खूब। तो सर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए एक और गजल हमें सुनाएं।
0: आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा तरन्नुम से पढूं। गुमसुम
1: जी, बहुत खूब, इरशाद।

0: भाई वाह,
1: आज तो बस अमीर जिंदा है। और एक शेर ये देखें कि
0: इरशाद।
1: एक एहसास का शेर है।

0: प्यार की तिल में पीर जिंदा है,
1: बहुत खूब,
0: प्यार की दिल में पीर जिंदा है। और ये शेर समीर साहब
1: इरशाद इरशाद सर इरशाद
0: उस इंसान के लिए जो खुददारी से जीता है।
1: जी,
0: हर कहीं सर झुकाऊं कैसे,

0: जब तलक के वजीर जिंदा है।
1: बहुत खूब, बहुत ही खूब,
0: शुक्रिया शुक्रिया जनाब।
1: बहुत ही प्यारी गजल साहब, बहुत ही प्यारी गजल, और तरन्नुम में तो इसमें चार चांद लग गए, मजा आ गया साहब।
0: शुक्रिया जनाब,
1: बहुत खूब। बस एक छोटी सी आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि ऐसी कोई गजल है जो आपकी शख्सियत को बयान करती हो, सूट करती हो आपकी पर्सनालिटी को?
0: जी जरूर जरूर। देखिए वो तो हर किसी शायर का अपना एक कहना चाहिए कि जज्बा भी होता है और वो अपना अपने आप को बयां भी करता है।
1: जी जी
0: और जब तक शायर खुद अगर अपनी कलाम में ना नजर आए
1: जी
0: तो फिर शायरी मैं समझता हूं कि उतनी असरदार नहीं होती है।
1: क्या बात है, बहुत।
0: मैं कुछ एक गजल मैं पढ़ना चाहता हूं
1: जी
0: जो
1: जी
0: खास तौर से ये मैं समझता हूं कि ये मेरा जो जो मेरी फितरत है,
1: जी
0: आदत नहीं, मेरी फितरत जो है
1: जी
0: वो आप इन आसार में जरूर देखेंगे।
1: जी इरशाद।

0: और ये शेर समीर साहब देखें,
1: इरशाद
0: बड़ा सच्चा शेर है
1: जी
0: और हर शख्स पर लागू है।
1: जी
0: इसमें दो लफ्ज, एक लफ्ज है नफस, नफस का माने मायने होते हैं सांसें,
1: जी
0: सांस।
1: जी

0: से ना टूटे थकान में। और ये शेर बतौर खास देखें,
1: इरशाद
0: यहाँ एक लफ्ज है मौजज़ा
1: जी
0: यानी कि चमत्कार।
1: जी
0: ये मौजज़ा इश्क भी

0: और ये शेर बतौर खास
1: जी
0: तमाम
1: इरशाद
0: नाजरीन और आप सभी हजरात के लिए। अपनी
1: जी
0: बुलंदियों से

0: बहुत खूब,
1: जी
0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारी
1: शुक्रिया,
0: गजल,
1: बहुत शुक्रिया।
0: एकदम तरन्नुम में डूबी हुई, बहुत खूब, बहुत सुंदर। अशोक सर, अब मैं गुजारिश करूंगा कि अपने किसी पसंदीदा गजल गायक की कोई गजल बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुना सकें।
1: जी मेरे पसंदीदा जो गजल गायक हैं जनाब पंकज उदास साहब,
0: जी जी
1: और दूसरे जो हैं वो हैं जो गुलाम अली साहब।
0: जी
1: तो आप जो भी उनकी कोई गजल आपके पास हो आप वो सुनवाएं।
0: जी बिल्कुल साहब, पंकज उदास साहब की एक गजल जो आपका आपकी इजाजत हो तो जो मुझे बहुत पसंद है,
1: जरूर जरूर।
0: गम की घटा जो छाए तो झूम के बरसे। आपकी इजाजत से हाजरीनों के लिए ये गजल पेश करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।

0: प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अशोक सर, बहुत ही छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर मैं किसी को आपके बारे में बताऊं तो आप क्या चाहेंगे कि मैं आपका परिचय उनको कैसे दूं?
1: देखिए, मेरे परिचय में ऐसा कुछ खास भी नहीं है और मेरी शख्सियत में भी ऐसा कुछ खास नहीं है कि जिसके लिए हम किसी तरह के इश्तियारे और तस्वीरात का इस्तेमाल करें। मैं साधारण सा इंसान हूं और बिल्कुल बस ये है कि मैं जो मेरी जो फितरत है वो एक मुझे खुदा दाद एक चीज है मेरे पास, वो है मोहब्बत। मैं मेरे तमाम लोगों से बे इंतहा मोहब्बतें करता हूँ। मुझे ये एक बहन है ऊपर वाले की
0: जी जी जी जी
1: और तो बस एक बहुत साधारण सा आदमी हूँ आपकी और मेरी सबकी तरह से। तो मेरा ऐसा कोई खास कुछ नहीं है कि मुझमें कुछ ऐसी, मुझे भी नहीं लगता कि मुझमें कोई बहुत खासियत है। तमाम खामियां जो आम इंसान में होती है वो सब उन्हीं के साथ जी रहे।
0: क्या कहा है साहब, क्या कहा है, बहुत खूब बहुत खूब। तो आगे बढ़ते हुए

0: डॉक्टर अशोक सर, मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए एक गजल और सुनाएं।
1: जी जरूर। मतलब पेश करता हूं कि जैसा कि मैंने कहा कि मेरी फितरत, ज्यादातर लोग यूं समझते हैं कि मैं इश्किया गजलें पढ़ता हूं
0: जी,
1: और ये हकीकत भी है, लेकिन ये इश्क हकीकी भी है और ये इश्क मजाजी भी है।
0: ओहो, क्या बात है।
1: तो ये दोनों ही है, तो आप जहां इसको जोड़ेंगे ये गजल वहीं जुड़ जाएगी।
0: वाह,
1: देखें मतलब देखें।

0: बहुत बढ़िया।
1: और ये शेर मैं अपने लिए ही पढ़ता हूँ
0: जी इरशाद।
1: सीधा साधु मी था मैं,

इसी कहानी को, बजाय मेरे किसी और का तकर्र हो, कबूल जो करे ख्वाबों की पासबानी को।

दोस्तों आज शाम गजलों के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल नई गजलें लेकर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा आपके पास। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।

0: है झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: उनकी लागत को हम कम कर सकते हैं, दोनों जो विषय है हमारे इस पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है कि कैसे हमारे किसानों की जो लागत है वो कम हो सकती है। साथ ही यहाँ रफ्तार आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरीके से हमारे जो किसान है वो बायोगैस लरी की बात जब की जाती है तो कुछ किसान ऐसे हैं जो इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लाभ भी ले रहे हैं, लेकिन जब एक किसान को पता चलता है कि इसके जरिए हमारी जो फसल है उसकी ज्यादा पैदावार हमें मिल सकती है तो क्या उसी माध्यम से अब किसान इसको और अपनाने लगे हैं?
2: आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो भी आज हमारा किसान है कोई भी खेती कर रहा है तो पौधों के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसकी आपूर्ति होना बहुत जरूरी है। हम कोई भी रासायनिक खाद लें उससे एक या दो पोषक तत्व ही मिल पाते हैं, लेकिन बायोगैस सल्ली एक ऐसा खाद है जो जैविक भी है और साथ साथ में इसके अंदर पोषक तत्व जो एक पौधे को 16 से 17 की आवश्यकता होती है वो सभी के सभी संतुलित मात्रा में इसमें विद्यमान है। इसके साथ साथ में इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारी जमीन को उपजाऊ बनाने में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं और साथ ही साथ में जो किसान की लागत है वो कम की जा सकती है। और किसान की एक और घर में आवश्यकता होती है एनर्जी की, इन्हीं को खाना बनाने के लिए उसको ऊर्जा चाहिए और आज आपने देखा होगा कि इसके भाव काफी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बायोगैस सल्ली से जो हमें गैस मिलती है वो किसान की जो घरेलू आवश्यकता है ऊर्जा की उसको पूरा कर सकती है और साथ ही साथ में ये ऊर्जा जो है ये वातावरण हितैषी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है और वातावरण में इस किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, रादर दुष्प्रभाव को कम करती है और किसान इसको अपना के आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इसका ये बहुत ही सेफ है, सुरक्षित है, इससे आग लगने का भी खतरा कम हो जाता है और प्लांट जो बनता है उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एक्सेस गैस अपने आप बाहर निकल जाए, किसी प्रकार से ना तो प्लांट को नुकसान हो ना ही किसी प्रकार से घर में जो किसान की महिला जो हमारी महिलाएं खाना बनाती हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान हो और इससे घर भी साफ सुथरा रहता है क्योंकि इसके अंदर धुआं ना होने की वजह से और ये महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभदायक है। तो ये एक ऐसी तकनीकी है जो हर किसान को जो भी पशुपालन करता है उसको अपनानी चाहिए और इसके अंदर जो उपयोग है चाहे हम मुर्गी पाल रहे हैं चाहे बत्तख पाल रहे हैं या हम भैंस या गाय पाल रहे हैं सभी का जो हमें सह उत्पाद है जो उसका वेस्ट है उसको हम वेल्थ बनाने का काम कर सकते हैं। इससे दोनों चीजें मिलेंगी, खाद भी मिलेगा और साथ ही साथ में अच्छी गुणवत्ता की गैस मिलेगी तो किसान की दोनों आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी और जो खाद की गुणवत्ता है वो दूसरे किस्म की खादों से बेहतर होती है और काफी अच्छी होती है और ये मिट्टी के तीनों गुणों में लाभदायक होती है, चाहे रासायनिक हो, भौतिक हो या जैविक हो, तीनों में लाभप्रद होती है।
1: लाभ है वो किसानों को मिल सकता है। वेट टू वेल्थ की अगर बात की जाए, देखिए यहाँ आपकी जो लागत है ना सिर्फ कम हो रही बल्कि वो शून्य के बराबर आप उसको एक तरीके से देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो आपको फायदा मिल रहा है वो काफी अधिक। तो इसके जरिए किस तरीके से फायदा आपको हो सकता है इस बारे में आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर।

0: बायोगैस स्लरी फसलों के लिए काफी काम की चीज है। दरअसल बायोगैस संयंत्र में गोबर गैस की पाचन क्रिया के बाद 25% ठोस पदार्थ का बदलाव गैस के रूप में होता है और 75% ठोस पदार्थ का बदलाव खाद के रूप में होता है और इसे ही बायोगैस स्लरी कहा जाता है। बायोगैस स्लरी को किसान अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जब खाद सड़ जाती है तो उसमें किसी भी तरह की घास या बीज नहीं होता है, जो खेतों के लिए काफी फायदेमंद रहता है। 2 घन मीटर के बायोगैस संयंत्र में रोजाना 50 किलो के हिसाब से 18.25 टन गोबर एक साल में डाला जाता है। उस गोबर में 80% नमी युक्त करीब 10 टन बायोगैस स्लरी जैविक खाद मिलती है। ये खेती के लिए काफी अच्छी खाद साबित होती है। इसमें 1.5 से 2% नाइट्रोजन, 1% फॉस्फोरस और 1% पोटाश होता है। मिट्टी का आहार जीवांश और अच्छी खाद होता है। जीवांश गोबर पौधों व जीवों के अवशेष को खाद के रूप में मिट्टी को मिलते हैं। जीवांश खादों के इस्तेमाल से पौधों को समस्त पोषक तत्व मिल जाते हैं। साथ ही इनके इस्तेमाल से उगाई गई फसलों पर रोगों और कीटों का प्रकोप बहुत कम होता है, जिससे हानिकारक रसायन कीटनाशकों के छिड़काव की जरूरत नहीं रह जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि फसलें पूरी तरह से रसायन मुक्त और स्वस्थ होती हैं।
1: तो जाना आपने किस तरीके से आपकी जो फसलें हैं वो रसायन मुक्त हो सकती हैं, उनमें लागत आपकी बेहद कम हो सकती है और इसके साथ ही आपका जो मुनाफा है वो दोगुना नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा आपको मिल सकता है। साथ ही आपकी तमाम जो आवश्यकताएं हैं, घरेलू आवश्यकताएं, वो भी इसके जरिए पूरी होती हैं, जिसकी जानकारी डॉक्टर प्रभास हमें यहां दे रहे थे। लेकिन यहां अब डॉक्टर पटेल आपके पास भी हम आना चाहेंगे। अगर बागवानी में खासतौर से अलग अलग फलों की हम बात करते हैं, फलदार वृक्षों की बात करते हैं, कितना महत्व कि उसकी नर्सरी की जानकारी एक किसान को हो और उसमें भी अगर वैज्ञानिक विधि उनको पता है तो कितना लाभ उनको आने वाले समय में आगे चलकर उसके जरिए मिल पाता है।
2: देखिए, बागवानी पौधों में नर्सरी की बहुत ही बड़ी उपयोगिता है और नर्सरी के पौधों की जो मांग है, राज्यों को देखेंगे और देश में देखेंगे तो मांग भी काफी बढ़ी है
1: जी।
2: और नर्सरी की उपयोगिता इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाती है इसमें कि जो हम पौधे लगाते हैं बागवानी फसलों की, खास करके फल वृक्षों की
1: जी,
2: तो इसमें करीब 4 से 5 वर्ष के बाद फलन अच्छे से आना शुरू होता है। वैसे 3रे वर्ष से फलन आता है। तो अगर हमारी जो पौधे की गुणवत्ता अच्छी नहीं हुई
1: जी,
2: तो जो 3-4 साल के बाद फल लगने वाला है उसमें, या 5 साल के बाद 3-4 के बाद जो फल आया वो बहुत खराब होगा। वो हमारी गुणवत्ता को जो हम चाहते हैं वो नहीं होगा। तो इसलिए सही किस्म को पौधा हो, रोग मुक्त हो और पौधा बहुत स्वस्थ हो, तो जिससे कि उसमें आने वाले दिनों में अच्छे फल लग पाएं और किसानों को जो फल के बाग लगाते हैं उनको अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सके
1: जी। बिल्कुल,
2: तो इसलिए बहुत जरूरी है कि नर्सरी से जहां से पौधे लिए जाएं या जो खुद किसान भाई बनाना चाहते हैं वो गुणवत्ता वाले हों और अच्छे हों
1: जी। तो देखिए, इस बात का ख्याल आपको रखना होगा और आगे भी आपको विस्तार से हम जानकारी देंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी।
0: इस समय किसान कई तरह के फलदार पेड़ों की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। फलों के नए बाग लगाने के लिए इस महीने बाग का रेखांकन करके गड्ढे खोद लेनी चाहिए। पौधशाला के पौधों की नियमित सिंचाई, गुड़ाई और निराई करते रहना चाहिए। बाग में 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। मॉनसून के दौरान अनार के नए बाग लगाने के लिए रेखांकन और गड्ढे खोदने का काम मई और जून में ही पूरा कर ले। आमतौर पर 4 से 5 मीटर की दूरी पर अनार की रोपाई की जाती है। पौध रोपण के एक महीने पहले 60-60-60 सेंटीमीटर के आकार के गड्ढे खोदकर उन्हें 15 दिनों के लिए खुला छोड़ दें। इसके बाद गड्ढे की ऊपरी मिट्टी में 10 से 15 किलो गोबर की सड़ी खाद, 1 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट, 50 ग्राम क्लोरोपाइरीफॉस चून मिट्टी में मिलाकर गड्ढों को सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर दें। लीची की बात करें तो लीची के लिए बाग का रेखांकन भी इस महीने कर ले। रेखांकन के बाद 3x3 फीट आकार के गड्ढे खोद ले और उन्हें एक महीने बाद गोबर की खाद, रासायनिक खाद व मिट्टी की बराबर मात्रा से भर ले। आम के लिए मॉनसून आने से पहले नए बाग लगाने के लिए इस महीने उचित दूरी पर बाग के रेखांकन के बाद गड्ढे खोद लेने का काम पूरा करें। नर्सरी में बीजू पौधों की जरूरत के अनुसार सिंचाई करें और खरपतवार निकाल दें। इस तरह आप सही समय पर फलदार पेड़ों की नर्सरी तैयार करके आने वाले समय में अच्छा मुनाफा ले सकते हैं।
1: ऊर्जा की आवश्यकता भी पूरी हो रही है और आपके स्वच्छ वातावरण बनाने में काफी मदद मिल रही है, तो इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और मैं यही कहना चाहूंगा कि बायोगैस प्लांट के अंदर वो सभी गुण उपलब्ध हैं जो आपके दूसरे अमृत में उपलब्ध हैं, सभी के सभी इसके अंदर भी उपलब्ध हैं। हाँ, अगर इसको फर्दर इनरिच करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी वगैरह है उनको ऐड कर सकते हैं, या कुछ सूक्ष्म जीव जैसे हमारे ट्राइकोड ये एजोटोवेक्टर है इनको ऐड कर सकते हैं, वो डाल सकते हैं, तो उससे और थोड़ा इनरिच हो जाएगा और बेटर हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बायोगैस सलरी या बायोगैस प्लांट ही आपके लिए बेहतर तकनीकी है और ये हमारे सभी किसान भाइयों को अपनानी चाहिए
3: जी,
1: और ये सभी फसलों में अच्छा काम करती है
3: जी। साथ ही डॉक्टर अब्बास जानना चाहेंगे आपसे, जो बायोगैस सलरी की हम बात करें या प्लांट की हम बात करें, तो क्या एक जो किसान है अपने स्तर पर इसको बना सकता है या किसी विशेषज्ञ के दिशा निर्देश के अनुसार ही उनकी देखरेख में ही इसका निर्माण कराया जाए?
1: नहीं, जो भी प्लांट बनेगा तो प्लांट बनाने के लिए कुशल कारीगर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो प्लांट बनता है ये एयर टाइट बनता है, इसके अंदर न केवल पानी बल्कि हवा भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अगर हवा भी बाहर निकल जाएगी तो आपकी गैस इकट्ठी नहीं होगी और आपका प्लांट फेल हो जाएगा। प्लांट तभी सक्सेसफुल होगा जब इसके अंदर अच्छी किस्म की सामग्री का उपयोग किया जाए, एक कुशल कारीगर इसको बनाए और साथ साथ में इसका

0: इससे मेंटेनेंस या प्रबंधन किया जाए
1: जी,
0: जिससे आपको अच्छी खाद भी मिलती रहेगी और अच्छी गैस भी मिलती रहेगी। दूसरी बात यह, जो हमारा खाद है हम उसी खाद को तैयार मानेंगे जिस खाद के अंदर कोई किसी किस्म की बदबू नहीं आ रही है और मच्छर मक्खी नहीं बैठ रहे हैं। अगर मच्छर मक्खी बैठ रहे हैं और बदबू आ रही है तो हमारी खाद कच्ची है, और कच्ची खाद अगर खेत में ले जाएंगे तो उसका थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन जिस खाद में बदबू नहीं आ रही है, मच्छर मक्खी नहीं बैठ रहे हैं, यानी कि खाद पूरी पक चुकी है
1: जी,
0: तो वो खाद जो है आपके खेत में जब जाएगी तो जो जमीन के अंदर बहुत सारे ऐसे हानिकारक कीट है जैसे दीमकी है तो उनके प्रकोप को कम करेगी, खत्म करेगी और उसको भी कम करेगी, साथ साथ में आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएगी और सबसे अच्छी बात है कि आपका लागत को बचत करेगी। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, तो इसको अपनाएं और आगे बढ़ाएं
1: जी। ये काफी महत्वपूर्ण कि देखिए आपकी जो लागत है कम होगी और मुनाफा बढ़ सकेगा।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें,
3: रेडियो टांडिया व्हील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमने जानी कि किस तरीके से जो बायोगैस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर गोबर गैस जिसे हमारे गांव क्षेत्र में कहा जाता है गोबर गैस का इस्तेमाल, और जो उससे निकलने वाला जो मल रहता है उसका इस्तेमाल हम किस तरीके से खेतों में कर सकते हैं और जिससे जो लागत लगती है हमारे खेतों में, खासतौर पर हम रासायनिक खाद उसमें डालते हैं जिससे उसकी उर्वरा शक्ति जो रहती है वो कम होती चली जाती है, लेकिन जो उन्होंने पद्धति को बताया है कि किस तरीके से बायोगैस हम लगा सकते हैं जिससे हम घर पर हम लोग खाना पका सकते हैं और जो उससे निकलने वाला जो मल रहता है उसका हम अपने खेतों में उसको डाल सकते हैं जिससे हमारी लागत कम हो सकती है। तो ये छोटे छोटे उपाय जो हमारे विषय विशेषज्ञों ने बताए हैं, खास तौर पर ध्यान देने वाली बातें हैं कि किस तरीके से हम अपनी आय को हम इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आय को हम बढ़ा सकते हैं। और खास तौर पर उन्होंने बागवानी पर भी एक जिक्र किया है कि किस तरीके से हमारे किसान भाई बागवानी पर भी ध्यान दे सकते हैं क्योंकि मौसम अच्छा है, बागवानी के लिए उपयुक्त समय है और ऐसे मौसम में हमारे किसान साथी क्या करें। यदि बागवानी लगाना चाहते हैं, पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं तो गड्ढे खोदकर डाल दें, 15 दिन तक डले रहने पर इसके बाद हम अपने गड्ढों में रुपाई करना स्टार्ट कर देंगे, इसके बाद हम जो पानी गिरेगा उससे उत्पादन हमारा अच्छा रहेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे किसान साथियों को सोचने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। एक बार फिर से पुनः हम कहना चाहेंगे अपने किसान साथियों को कि ये छोटी छोटी बातें जरूर हैं लेकिन फायदेमंद जरूर हैं, क्योंकि हम जब मिट्टी परीक्षण कराएंगे, स्वास्थ्य का परीक्षण उसका मिट्टी का कराएंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमारे मिट्टी में किस तत्व की कमी है और उस तत्व को किस दवाइयों द्वारा किस हम वैज्ञानिक पद्धति से उसको भरपाई कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि फसल चक्र को अपनाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। जिन किसान साथियों ने पिछले साल जिन खेतों में जैसे मूंगफली करी थी तो उस खेत में हमारे किसान साथी कपास की खेती कर सकते हैं, जिन खेतों में सोयाबीन किया था मूंगफली कर सकते हैं, मूंगफली जहां पर की थी वहां सोयाबीन कर सकते हैं। तो फसल चक्र का अपनाना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम रहता है और किसान साथी ऐसे ही अपने पैसे को बचा सकते हैं। दूसरा, कृषि विभाग की ओर से तमाम प्रकार की योजनाएँ हैं उसका लाभ ले सकते हैं, जैविक विधि का इस्तेमाल हमें करना चाहिए जिससे लागत कम हो आमदनी अधिक हो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे किसान साथियों को सोचने और समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमें विश्वास है कि हमारी इन बातों का हमारे किसान साथी गौर करेंगे और ख़ास तौर पर हम अपने किसान साथियों को इस कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे, विषय विशेषज्ञ की सलाह लेंगे जिससे हमारे किसान साथियों के जो भी सवाल हैं उन सवालों का जवाब उनको सही और समय पर मिल सके। साथियों, हमें आशा है कि इस कार्यक्रम को सुनकर आप जरूर एक नया कदम उठाएंगे, नई ऊर्जा के साथ, नई पद्धति के साथ अपनी खेती की तैयारी करेंगे। फिलहाल में यदि आपके आसपास कोई तालाब है उसका पुनरुद्धार करा सकते हैं, साथ साथ में साफ सफाई करा सकते हैं, कुओं की साफ सफाई करा सकते हैं, क्योंकि उपयुक्त समय है। ऐसे में किसान साथी पानी को संरक्षण करने के लिए जो भी उपाय हैं उसको अपना सकते हैं, और जो भी बरसात का पानी है जो ढलान जगह है वहाँ से निकलकर सीधा नदी तालाबों में चला जाता है, जिससे वो हमारी जो मिट्टी रहती है उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि वो ढलान द्वारा कहीं पर भी चला जाता है पानी और रुकता नहीं है। तो ऐसे में किसान साथी समतलीकरण अपनी खेतों का करा सकते हैं, एक से खेत करा सकते हैं, आसपास मेड़ बंधान कर सकते हैं, तालाब का गहरीकरण कर सकते हैं, तालाब के आसपास मिट्टी डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि तालाब लीकेज है तो उसका भी पुनरुद्धार करा सकते हैं। तो ये तमाम प्रकार की बातें हैं जो हमारे किसान साथियों को समझने की बातचीत है, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है। ऐसे में किसान साथी बागवानी के साथ साथ खेती पर भी विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में भी आपका अहम योगदान रहता है। तो जो कि जंगल यहाँ पर हैं काफ़ी अच्छा हरा भरा है, लेकिन कुछ पौधे हैं, कुछ प्लांटेशन हैं, कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अपना पर्यावरण भी ना डगमगा पाए और हम अपने अच्छी हरी भरी हवा हमें मिलती रहे, सांस अच्छी मिलती रहे और कोई समस्या हमें ना आए। पानी को भी उबाल कर हमें पीना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पानी में भी बहुत ज़्यादा समस्या है, तो हमें पानी को बचाना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि हमारे किसान साथी जो बरसात का जल रहता है उसको अपनी छतों से कहाँ एक गड्ढे खोद कर उसमें उतार देते हैं, और उस गड्ढे में जो पानी रहता है उसका हम इस्तेमाल अपने गाड़ी धोने में या तमाम प्रकार की चीज़ों में कर सकते हैं। तो ये पानी बचाने के सरल तरीके हैं जो हमारे किसान साथियों को लोग अपनाना होगा और करना होगा, अपनी आजीविका को बनाना होगा, बढ़ाने के लिए आप मुर्गी पालन, बकरी पालन ये कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूह एक माध्यम हो सकता है, जो हमारी महिलाएं किसान महिलाएं हैं, क्योंकि कदम से कदम मिलाकर हमारी किसान महिलाएं आगे बढ़ती हैं, साथ देती हैं, किसानी करती हैं, हल बखर चलाती हैं। तो उन किसान महिलाओं को हम कहना चाहेंगे कि आप भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और स्वयं सहायता समूह का विशेष तौर पर ध्यान रखें किस तरीके से आपको चलाना है। हमारे भी तमाम प्रकार के कार्यक्रम इसका रेडियो के माध्यम से चलाए जाते हैं, तो उसको गौर से सुनो कि किस तरीके से स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बचत जमा की जाती है और उस बचत से आप किस तरीके से अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपन व्यवसाय कर सकते हैं, क्या आजीविका के साधन हो सकते हैं, आप सोचिएगा, समझिएगा और अपने जीवन में अपनाइएगा। इसी के साथ साथियों वक्त हो चुका है आज के हमारे इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 94251436303। इस नंबर पर कॉल करके आप हमें अपने जो भी आपके विचार हैं या फिर जो भी आपकी समस्या है उसको आप पूछ सकते हैं। हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम मुलाकात, और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें। ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटा भील 90.8 FM सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और हमारे किसान साथी कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर अपनी तैयारी में लगे होंगे कि जैसे ही बरसात का मौसम आए तैसे ही हम अपने बीजों का जो उन्होंने रख के चयन करके रख लिया है और उनका वो अपने खेतों में डालकर अपने बीज की बोनी स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि हम और आप देखते हैं कि ऐसे में हमारे किसान साथी बहुत ज्यादा परेशान हैं। हम और आप जानते भी हैं कि अगर झाबुआ जिले की अगर बात करें तो यहां पर सीमित किसानों के पास सीमित जमीन है, सिंचाई के प्रमुख साधन न होने के कारण खेती में बहुत ज्यादा समस्या आती है। एक सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि यहाँ के किसान जो पलायन करने पर मजबूर हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? आखिरकार हमने देखा है, हमने सुना भी है यहाँ पर कि खेती करने के बाद हमारे किसान साथी यहाँ से अपने रोजी रोटी कमाने के लिए पलायन कर जाते हैं। आखिरकार उनको वो सुविधा उपलब्ध क्यों नहीं हो पा रही है, ये सबसे बड़ा कारण भी है। आप रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि हमारे किसान साथियों को वो जानकारी उपलब्ध हो, वो जानकारी जिनके अभाव उनके पास रहता है, वो जानकारी जिस उन तक नहीं पहुंच पाती है। खासतौर पर अगर योजना की बात करें, बहुत सारी सरकार की स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स चलाई जाती हैं लेकिन हमारे साथियों तक नहीं पहुँच पाती हैं। लेकिन अब रेडियो टांटिया भील 90.8 FM एक ऐसा माध्यम है, क्योंकि ये झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। यहाँ पर अपनी बात करने के लिए आप फ्री हैं, यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए, दूसरों तक पहुँचाने के लिए आप फ्री हैं, अपनी जो भी आपको समस्याएं खेतीबाड़ी में आती हैं उसको बात रखने के लिए आप फ्री हैं। आप आइएगा और यहाँ पर अपनी बात को रखिएगा और हम उस बात को जो भी आपके मन में सवाल हैं खेती किसानी से जुड़ी, उस सवालों का जवाब हमारे

साथ विषय विशेषज्ञ जो रहेंगे उनसे हम जरूर दिलाएंगे। हमने आज कुछ गांव में हमने जाकर देखा है कि किसान साथी बस खेती पर आश्रित रहते हैं। उनसे जब हमने जानने की कोशिश की तो उनसे पता लगा कि यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है, यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। उनका ये भी कहना है कि यदि एक आध साल बरसात नहीं होगी तो यहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, बहुत ज्यादा समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे किसान साथी आश्रित हैं वो तालाब और बावड़ियों से यहाँ पर जीवित हैं और वही उनके संसाधन है, वही उनकी सिंचाई के साधन है, जो कि अब हमें देखना होगा क्योंकि बरसात अब नज़दीक आने वाली है। ऐसे में हमारे किसान साथी क्या करें, उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि शासन की योजना, क्योंकि शासन इस मौसम में जब भी किसान साथी हमारा फ्री होता है, जैसे ही अपनी रवि की फसल बो के फ्री होता है या फिर काट के फ्री होता है, तब हमारे किसान साथियों को क्या करना होगा कि सबसे पहले मिट्टी की जांच अवश्य कराएं, क्योंकि खासतौर पर हमने जब किसानों से बात की तो उनसे ये निकल के आया है कि किसान साथी कहती हैं कि बस हम दो तीन इसमें अपने बीज लगाते हैं, चाहे वो मूंगफली का तो बहुत ही कम उत्पादन यहाँ पर लोग करते हैं, मक्का हुआ, मक्का के साथ साथ यहाँ पर सोयाबीन की खेती होती है, साथ साथ में यहाँ पर जो खेती की जाती है खासतौर पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कम पानी वाली फसलें यदि हमारे किसान साथी अपने खेतों में लगाएं तो जाहिर सी बात है उनकी आमदनी में इजाफा होगा। हम उन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे कि हमारे किसान साथी किस तरीके से अपनी आय को दुगनी कर सकें। दुगनी तभी होगी क्योंकि शासन प्रशासन और केंद्र सरकार भी इसके लिए चिंतित है कि कहीं ना कहीं हमारे किसान साथियों को वो जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है जो जानकारी उनको उपलब्ध होना चाहिए। यदि आपके पास सीमित संसाधन नहीं है, यानी सीमित साधन है, खासतौर पर पानी के संसाधन नहीं है आपके पास, खेती सीमित है, तो वहां पर हमें क्या करना होगा, अपने नजदीकी कृषि विभाग में जाकर संपर्क करना होगा, उनसे पूछना होगा कि हम अपने खेतों में कौन से बीजों का चयन करें, कौन से ऐसे बीज हैं जिसमें कम पानी लगता है और उत्पादन अच्छा होता है। खासतौर पर अगर देखा जाए तो ऐसे मौसम में सबसे पहले अपने किसान साथियों को, क्योंकि घर पे बैठे हुए हैं, एक उन्होंने अपनी बखराई कर भी दी है, यानी जो कहा जाता है गर्मियों की जुताई बहुत महत्वपूर्ण रहती है, तो हमारे किसान साथियों ने अपनी गर्मियों की जुताई कर भी दी है। अब किसान साथियों को क्या करना है, मिट्टी परीक्षण करवाना बहुत ज़्यादा आवश्यक रहता है, क्योंकि स्वास्थ्य की अगर बात करें, जब तक हम बीमार नहीं पड़ते हैं तब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, तब पता चलता है कि हमारे अंदर कौन कौन सी बीमारी है। ऐसे ही हमारी भूमि रहती है, ऐसी हमारी जमीन रहती है, जब तक उसका परीक्षण नहीं कराएंगे, जब तक उसकी जानकारी नहीं उपलब्ध कराएंगे कि कौन से तत्वों की हमारी जमीन में कमी है, तब तक हमें पता नहीं लगेगा और तब तक हम वही परंपरागत खेती जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग करते चले आ रहे हैं उसी ढांचे से हम करते चले आएंगे और उससे जो समस्या आती है उस समस्या से हमारे किसान साथी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या करें, सबसे पहले कि मिट्टी परीक्षण कराएं, सलाह लें कि आने वाले समय में हम कौन प्रकार के बीजों का चयन करें, किस तरीके से उपचार जो बीजों का होता है वो किस तरीके से हमें करना होगा, साथ साथ में अपने खाद बीज की भी व्यवस्था कर लें। जब हमने यहां पर बात की किसानों से तो पता लगा कि वास्तव में यहां पर बहुत ज्यादा समस्या है, लोगों को ये इसमें जो अगर फसल चक्र की बात करें तो फसल चक्र में वो खेती तो करते हैं लेकिन वो ही परंपरागत खेती करते चले आ रहे हैं। उनका कहना है कि अब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उत्पादन उनको बहुत ही कम मिलता है। तो ऐसे में किसान साथी केबीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र पर जाकर सलाह ले सकते हैं या फिर कृषि विभाग में जाकर सलाह ले सकते हैं। यदि आपको वहां पर कहीं नहीं जाना है तो रेडियो टांडिया भील 90.8 FM 24 घंटे आपके लिए तत्पर रहता है, 24 घंटे उपलब्ध है, आप हमें फोन लगाकर बात कर सकते हैं और यहां या फिर आपको लगता है कि रेडियो टांडिया भील जो गढ़वाल में उपस्थित है वहां पर आकर हमारे किसान साथी अपनी बात को रख सकते हैं। ऐसे हम गांव यहां पर पहुंचे, एक गांव में वहां के लोगों से जब हमने पूछा कि किस तरीके से आप खेती करते हैं, किस तरीके से आप बुवाई करते हैं, कौन कौन बीज आप अपने खेतों में लगाते हैं, तो बड़े
अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वही परंपरागत खेती वो करते चले आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा समस्या है, पानी के पीने की समस्या है, खेती में पानी की समस्या है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तभी तो यहाँ के किसान यहाँ से पलायन कर जाते हैं। उनकी बात हम जरूर सुनेंगे, लेकिन बातचीत काफ़ी हो चुकी है, यहाँ पर एक वीली गीत को सुन लेते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटा व्हील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात है। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से वीली गीत को। राम

0: पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: रेडियो टांडिया व्हील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अभी आपने व्हीली गीत को सुना, व्हीली गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने किसान साथियों के पास आपको ले चलते हैं, उनकी हम बातचीत को सुनते हैं कि किस तरीके से अपने खेतों में बीजों का चयन करते हैं, किस तरीके से कौन कौन बीज लगाते हैं और इसमें मौसम में किस तरीके से तैयारी वो कर रहे हैं। आइए किसानों के हम अनुभवों को साझा करते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांडिया व्हील 90.8 FM। आपना रेडियो अपनी बातें।
2: खेती हम लोग सोयाबीन बोते हैं, इसके बाद कपास और मक्का।
3: मक्का तीन चीज।
2: हाँ सी, मतलब ये अभी बरसात के टाइम में।
3: अच्छा अच्छा, अच्छा।
2: और फिर सियाले के टाइम में गेहूं, चने, बस ये।
3: अभी चूंकि ये बरसात का मौसम आने वाला है तो तैयारी किस तरीके से आप कर रहे हैं? तैयारी किस तरीके से करते हैं?
2: बस पहले हम ये जुताई कर लिया।
3: हाँ।
2: उसके बाद खाद बीज ला रहे।
3: अच्छा।
2: और सोयाबीन तैयारी कर रहे हैं, कपास लाने की तैयारी, मतलब ले आए हैं अभी लोग भाग।
3: कपास का क्या रहता है, बीज लगाते हैं आप की?
2: बीज लगाते सर।
3: बीज कैसे बोते हैं इसको?
2: उसको थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, ऐसे मक्का का करेंगे ऐसे नहीं, थोड़ा इतना इतना दूर रखेंगे और एक एक एक एक एक, एक करके लगाएंगे।
3: अच्छा, हाथ से ही लगा,
2: हाथ से लगाते
3: लगते कि
2: नहीं? बीज लगाते सर हाथ से।
3: हाथ से बीज लगाते हैं पूरे खेत में? कितना बीज लगता होगा?
2: हाँ, कितना बीज, 2-3 किलो बीज जो भी लगता सर। डोरी पहले लंबा कर लेते, उसके बाद निशाना बनाते, वहाँ जहाँ निशाना है उस जगह पे वो बीज लगाते।
3: अच्छा अच्छा। और पानी कितना लगता है इसमें?
2: पानी सर वही बरसात का ही,
3: बरसात का है। वैसे अगर बरसात नहीं हुई तो कितना पानी देना पड़ेगा?
2: तो कमी है सर पानी यहाँ पे, जब तक उसको बरसात से बड़ा करना पड़ेगा, उसके बाद
3: यहाँ पे पानी की समस्या है
2: बहुत समस्या सर,
3: पानी आता ही नहीं।
4: पानी पीने के लिए,
2: पानी पीने के लिए बहुत कमी।
3: अच्छा अच्छा।
4: रात में उठ के जाना।
3: और जो अब खादों का इस्तेमाल होता है, जैसे अपन DAP और यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, पहले जो हम लोग देसी खाद का इस्तेमाल करते थे, अब क्यों हम लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं उसका?
2: ये पशु के कारण ये कम हो गए सर।
3: क्यों कम हुआ है?
2: कम करते जा रहे हैं इनको लोग, बाग बढ़ गए पब्लिक, तो जैसे पहले इनको घूमने फिरने की जगह थी ज्यादा।
3: अच्छा।
2: उसको फिर से मतलब कर लिया उसको।
3: हाँ।
2: खेती करने लग गए।
3: हाँ।
2: तो इसीलिए कम हो गए सर ये, तो अपने आप कम हो गया सर।
3: अच्छा, अपने आप कम हो गया।
2: और DAP फिर और यूरिया, यूरिया से पौधा बढ़ता है।
3: हाँ।
2: और जल्दी मतलब तैयार करते।
3: अच्छा, यूरिया
2: अभी 2 बार लगा रहे थे, फिर आप लोग बाग 3-3 बार भी लगा रहे सर यूरिया।
3: अच्छा अच्छा। कपास का बीज कैसे मिलता है, मतलब कहाँ से आप लाते हैं और कितने रुपए किलो मिलता है?
2: इस साल थोड़ा महंगा है, यूं कह रहे सर, गए साल तो 750 की 250 ग्राम करके ला रहे थे हम।
3: अच्छा।
2: पैकेट आता 250 ग्राम का।
3: 250 ग्राम का पैकेट आता है, तो एक पैकेट कितने खेत में हो जाता है?
2: एक पैकेट सर करीब 1 बीघा।
3: 1 बीघा में 1 पैकेट?
2: हाँ।
3: जिसके पास 4-5 बीघा खेत है तो वो 4-5 पैकेट लगेगा।
2: हाँ सर। हाँ।
3: और इसमें कितने दिन में ये पौधा तैयार हो जाता है कपास का?
2: 3 दिन बाद वो थोड़ा सा निकल जाते सर।
3: हाँ।
2: उसके बाद में बढ़ता जाता, फिर उसमें खाद बीज चालू रहता।
3: अच्छा, कितनी बार डालना पड़ता है ये खाद बीज आपको?
2: खाद तो 2-3 बार डालना पड़ता है, दवाई तो बार सर।
3: दवाई कितनी लगती?
2: दवाई तो गिनती नहीं होती सर।
3: अच्छा।
2: जैसे उसमें कीड़े लगते वैसे दवाई।
3: ऐसा क्यों, आपने यहाँ पर जो कृषि विभाग है या KBK है वहाँ पर संपर्क नहीं किया कि क्यों कपास में हमारे कीड़े लगते हैं?
2: वहाँ पे किया सर, वो अलग देते हैं सर दवाई।
3: अच्छा, उससे फायदा हो जाता?
2: नहीं, उससे नहीं होता सर, इसीलिए फिर मार्केट से खरीदना पड़ा।
3: अच्छा, ये फिर आपको अगर कपास को देखा, 1 बीघा में आपने 250 ग्राम की पैकेट लगाई है, कितना अपन को मुनाफा हो जाता है?
2: 250 ग्राम

0: खास तौर पर जो मिट्टी यहाँ की देखी है, लाल मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, तो यहाँ पर आप काफी अच्छी पैदावार हो सकती है।
1: अच्छा होए कोई तो खेती ज्यादा हो वैसे वो ज्यादा भी बोल सकता है।
0: इस तरीके का हम लोग वो कर भी सकते हैं कि नई पद्धति को, अभी क्या है कि हम लोग परंपरागत खेती करते चले आ रहे हैं। अभी क्या है कि जो हमारे बुजुर्ग लोगों ने बताया कि हमें इस खेती को करना है, इस प्रकार की खेती करना है, वो ही हम उसी पद्धति पे जा रहे हैं। आजकल बाजार में नए नए बीज की उपलब्धता हो गई है, साइंटिस्ट हमारे पास उपलब्ध हैं, उनसे जानकारी लेते रहना चाहिए हमें बागवानी के ऊपर जोर लगाना चाहिए कि हमारे पास सीमित संसाधन है, सीमित खेती है, तो हम किस तरीके से बागवानी, तो ये हमारे कुछ विकल्प हो सकते हैं खेती को या किसान की आय को दुगनी करने के लिए। आपने इस तरीके का प्रयास नहीं किया
2: सर? जैसे पुराने जो आदमी लगाते आ रहे थे वैसे हम चलते आ रहे, और पहले पुराने लोग तो खाद ये यूरिया और डीएपी नहीं लगा रहे थे सर, इसी से काम चला रहे थे,
0: गोबर
2: के खाद से। फिर बढ़ते बढ़ते बढ़ते खाद बीज हम लगा रहे सर।
0: अच्छा, आपको लगता नहीं है कि ये खाद बीज से हमारी आम वो क्या नाम जो लागत थी वो उसमें बढ़ोतरी हुई, मतलब बढ़ गई
2: सर, और जिसमें कम पहले कम हो रहा था, अभी एक किलो अगर मक्का बो देंगे तो आराम से दो तीन क्विंटल हो जाते हैं।
0: अच्छा, इसकी देखभाल किस तरीके से करते हैं?
2: देखभाल तो सर जैसे पौधा बाहर निकल जाता है उसके बाद देखभाल करना पड़ता सर।
0: अच्छा,
2: क्या लग रहा है इसमें, क्या
0: नहीं व्यवस्था है तो पानी की व्यवस्था, यहाँ पर पानी के लिए क्या क्या साधन है?
2: पानी के लिए सर वही बरसात का ही पानी है हमारे पास,
0: और जैसे अगर रबी की फसल अपन बोते हैं जैसे गेहूं हुआ,
2: हाँ वो तो तालाब में से लाते हैं सर। इधर
0: कहाँ से लाते?
2: पास में है तालाब इधर।
0: अच्छा,
2: उससे लेते हैं। और
0: यहाँ पर कुआ बावड़ी पहले जो तालाब हुआ करते थे, आप कुछ नहीं है?
2: नहीं है सर, यहाँ पे तो इतना गहरा भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा ऐसे गड्ढे कर रखे, उसमें थोड़ा पानी ऊपर से ही जो उसमें रहते उसी से ही थोड़ा बहुत ले लेते। नहीं तो
0: आपने ऐसा कभी समय देखा है कि मतलब यहाँ पे कभी की बरसात नहीं हुई है और लोग यहाँ से पलायन कर गए हैं?
2: बरसात नहीं हो तो वही का वही रह जाएगा सर, खत्म ही हो जाएगा
0: बरसात पर ही।
2: हाँ सर,
0: यहाँ पर कुआ खोजते नहीं है?
2: नहीं है सर, नहीं है
0: कुछ नहीं। हैंड पंप
2: किसी के पास है सर बोरिंग?
0: अच्छा,
2: वो लगाते लेकिन हर आदमी के पास नहीं है।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
3: थैंक यू। पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
4: रेडियो टांडिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। और हमारे किसान साथियों की इस बातचीत को सुना, वास्तव में बहुत मेहनत हमारे किसान साथी करते हैं, लेकिन उनको सही मार्गदर्शन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। यदि हमारे किसान साथी हमारी बातचीत को सुन रहे होंगे तो आप यदि आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं, कहाँ पर संपर्क करें, तो यदि आपको लगता है कि हमें अधिक जानकारी की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो आप रेडियो टांडिया भील पर आप आ सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, आपकी जानकारी हम जो विषय विशेषज्ञ रहते हैं, एक्सपर्ट रहते हैं, KBK जो रहता है, साथ साथ में कृषि विभाग जो रहता है, उसमें हम किस तरीके से हमारे विषय विशेषज्ञ के साथ आपके सवालों का जवाब हम दिलवा पाएं। साथ साथ में आप यदि आपको लगता है कि आप सक्षम हैं, आप जागरूक हैं, तो आप डायरेक्टली KBK में जाकर उनसे बातचीत कर सकते हैं और जानकारी भरपूर ले सकते हैं, क्योंकि यदि हमारे पास जानकारी रहेगी तो हम अपने खेतों में अच्छे बीजों का चयन करेंगे, अच्छे बीज लगाएंगे अपने खेतों में, जिससे हमारे खेती में उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा अच्छी हो। अब एक बात जब बात आती है कि हमारे किसान साथी सिर्फ तीन प्रकार की खेती करते हैं, यानी तीन प्रकार की जो फसलें रहती हैं उनको लगाते हैं, चाहे वो सोयाबीन हो, मूंगफली हो, मक्का हो, और धान भी कहीं कहीं हमारे श्रोता साथी करते हैं, तैयारी स्टार्ट कर दी है, गर्मी की जुताई भी हो गई है, अब वो बरसात का देख रहे हैं कि बरसात कब हो और कब अपने खेतों में हम बुवाई कर सकें। लेकिन साथियों, इससे पहले हम कुछ जानकारी आपको उपलब्ध कराना चाहते हैं कि जिन किसान साथियों के पास सीमित जमीन है तो वो किस तरीके से अपने घर आंगन या पर छतों पर किस तरीके से छोटी बागवानी हमारे किसान साथी लगा सकते हैं, जिससे जो हम सब्जी बाजार से लेकर आते हैं उस बाजार से जो सब्जियां हम खाते

हैं वो हमारे शरीर को भी नुकसान करती हैं, क्योंकि केमिकल भरी जो हम खाद हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं जो शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं। तो आप किस तरीके से जैविक पद्धति से अपने घर आंगन या छत पर अपनी बागवानी को लगा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे पौधे हैं, कौन कौन से सब्जियों के ऐसे बीज हैं जिनका हम चयन कर सकते हैं अपनी छतों पर या घर आंगन में या अपने खेतों में लगा सकते हैं। सब्जी का मौसम भी चल रहा है और सब्जी के मौसम में हमारे किसान साथी अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं। तो छोटे छोटे मौके हमारे किसान साथियों के पास, वो कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास भरपूर अनुभव है, कई सालों का अनुभव है खेती किसानी का, और वो जानते हैं कि किस तरीके से बीज लगाना है, किस तरीके से वो करना है। बस आपको पद्धति की जो जानकारी का अभाव जो रहता है, वो जानकारी आपको रेडियो टांडिया व्हील 90.8 FM आपको उपलब्ध कराने जा रही है। लेकिन साथियों, इससे पहले हम सुनते हैं एक प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांडिया व्हील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात है।

0: હિલ 90.8 FM, આપણો રેડિયો આપણી વાતે.
1: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में. और अभी आपने महत्वपूर्ण बातचीत को सुना और साथ साथ में गीत को सुना. अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जून माह में हम किस तरीके से खेती कर सकते हैं, यानी बागवानी लगा सकते हैं. खास तौर पर सब्जियों के बारे में विशेष चर्चा करने जा रहे हैं. तो आइए इस चर्चा को हम सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं. तो आइए सुनते हैं इस चर्चा को.
2: जून के महीने में कौन सी सब्जी लगाएं? हमारी पहली सब्जी है मिर्च, जिसे आप जून के महीने में लगा सकते हैं. मिर्च को लगाने के लिए इसके पौधे तैयार करने पड़ते हैं. पौधे तैयार करने के लिए आप अच्छी क्वालिटी के मिर्च के बीज खरीद सकते हैं, या फिर आपके घर में जो लाल मिर्च होती है उसके बीजों का इस्तेमाल भी आप पौधे उगाने के लिए कर सकते हैं. मिर्च के बीजों को लगाने के लिए आप किसी भी प्रो ट्रे या फिर गमले को लीजिए और इसमें मिर्च के बीजों को ऊपर ऊपर बिखेर दीजिए. आधा से एक सेंटीमीटर गहराई पर मिर्च के बीजों को लगाकर इसमें पानी दे दीजिए. मिर्च के बीज से पौधे तैयार होने में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं. 20 से 25 दिन बाद इन पौधों को आप किसी बड़े गमले जिसकी साइज 12x12 इंच हो या उससे बड़े गमले में लगा दीजिए. लगभग 60 दिन बाद आपको मिर्च तोड़ने को मिलने लगेगी. मिर्च के पौधे को पानी कम और ज्यादा धूप की जरूरत होती है, इसलिए आपको मिर्च के पौधों को पानी कम देना है और उसे धूप वाली जगह पर रखना है. यदि आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो आपके मिर्च के पौधे के सारे फूल झड़ जाएंगे और उनमें फल भी नहीं आएंगे. मिर्च के पौधे जिस गमले में लगे हैं उसकी जब ऊपर की मिट्टी पूरी तरह से सूखी दिखे तभी पानी दें. साथ में यदि कोई पौधा रोगयुक्त दिखे तो उसे तुरंत हटा दें या फिर किसी ऑर्गेनिक दवा जैसे कि नीम के तेल का छिड़काव करें. मिर्च के पौधे को हर महीने खाद की भी जरूरत होती है. आप मिर्च के पौधे में बर्मी कंपोस्ट, किचन बेस्ड कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद का समय समय पर बदल बदल कर इस्तेमाल कर सकते हैं. मिर्ची की किस्में भी बहुत अधिक होती हैं, तो आप अपनी पसंद के अनुसार मिर्च की अलग अलग किस्मों में से अपनी फेवरेट वेराइटी को गमले में लगाने के लिए चुन सकते हैं. दोस्तों, दूसरी हमारी सब्जी है बैगन, जिसे हम एग प्लांट या ब्रिंजल के नाम से भी जानते हैं. बैगन एक ऐसा पौधा है जो लगभग होम गार्डन में साल भर आपको बैगन देता रहता है. बैगन के पौधे भी बीज से ही उगाए जाते हैं और आप अभी जून के महीने में भी बैगन के पौधे तैयार कर सकते हैं. बैगन के पौधे तैयार करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे हमने मिर्च के पौधे तैयार किए थे. आपको किसी भी गमले में बैगन के बीज को ऊपर ऊपर बिखेर देना है और उसे हल्की मिट्टी से कवर कर देना है. साथ में पानी दे देना है. लगभग 2 से 3 हफ्ते में बैगन के पौधे बड़े गमले में लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं. जब बैगन के पौधे 3 से 4 इंच के हो जाएं, तो आप इन्हें अलग अलग ग्रो बैग या गमले में ट्रांसफर कर सकते हैं. 12x12 इंच के गमले में आप एक बैगन का पौधा लगा सकते हैं और इससे बड़े गमले में आप 2 बैगन के पौधों को भी लगा सकते हैं. बैगन को फुल सनलाइट पसंद होता है. यदि आप अभी जून के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में बैगन के पौधे या फिर बीज लगाएंगे तो अगस्त में इनमें फ्लावरिंग और छोटे छोटे बैगन आना शुरू हो जाएंगे और लगभग 80 दिन बाद आपको बैगन तोड़ने को भी मिलने लगेंगे. बैगन को भी समय समय पर अच्छी तरह से खाद देना जरूरी होता है. आप हर महीने बदल बदल कर ऑर्गेनिक खाद बैगन के पौधे में दे सकते हैं. कई बार बैगन में मिलीबग या माइट का अटैक होता है. इनसे बचने के लिए आप शुरुआत से ही बैगन में किसी भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का स्प्रे करते रहें ताकि आपके बैगन में किसी भी तरह के रोग ना लगे. दोस्तों, बैगन को आप कलम से भी उगा सकते हैं. बैगन की कलम लगाने के लिए जुलाई का समय अच्छा होता है. तो आपके गार्डन में जो पुराने बैगन के पौधे लगे हुए हैं, आप उनकी कलम को लगाकर भी बैगन के नए पौधे बना सकते हैं. दोस्तों, अगली हमारी सब्जी है टमाटर. टमाटर सभी घरों में इस्तेमाल होता है और आप जून के महीने में टमाटर भी लगा सकते हैं. टमाटर की कई अलग अलग वेराइटी होती है जो आप अपने पसंद के हिसाब से चुन सकते हैं. टमाटर को लगाने के लिए भी इसके पौधे तैयार किए जाते हैं. पौधे तैयार करने के लिए टमाटर के बीज को ऊपर ऊपर मिट्टी पर बिखेर देना है और इसमें हल्की मिट्टी की परत से ढक देना है और इसके बाद इसमें पानी दे दीजिए और मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखेंगे तो टमाटर के बीज बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे. लगभग 2 से 3 हफ्ते में टमाटर के पौधे बड़े ग्रो बैग या गमले में लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं. टमाटर को फुल सनलाइट पसंद होता है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी टमाटर को की ग्रोथ के लिए सही नहीं होती, इसलिए आप इसे सेमी शेड एरिया में रख सकते हैं. 6 से 8 घंटे की धूप टमाटर के लिए पर्याप्त होती है. टमाटर लगाने के लगभग 70 से 80 दिन बाद आपको टमाटर तोड़ने को मिलने लगते हैं. साथ में टमाटर को भी आपको हर महीने बदल बदल कर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देने की जरूरत होती है। टमाटर में भी कई तरह के रोग आते हैं और इनसे बचने के लिए आपको पेस्टिसाइड पहले से ही तैयार रखना चाहिए। कई बार लीफ माइनर टमाटर में होता है और इससे बचने के लिए आप लौंग के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर के पौधे को सपोर्ट की जरूरत होती है तो आप किसी भी लकड़ी की मदद से इसके स्टेम को सपोर्ट दे सकते हैं। साथ में दोस्तों टमाटर को भी कलम से लगाया जा सकता है। आप टमाटर की कलम से एक नया टमाटर का पौधा तैयार कर सकते हैं। टमाटर का पौधा कलम से कैसे तैयार करना है? दोस्तों हमारी नेक्स्ट सब्जी है भिंडी। भिंडी को भी आप जून के महीने में उगा सकते हैं। भिंडी स्पेशली गर्मियों में होने वाली सब्जी है जिसको फुल सनलाइट पसंद होता है। और भिंडी को आप जून के महीने में लगाएंगे तो आपको अगस्त से भिंडी तोड़ने को मिलने लगेगी। भिंडी लगाने के लिए आपको किसी भी 12x12 इंच के गमले या इससे अधिक साइज के गमले को लेना है। आप एक गमले में 2 से 4 भिंडी के पौधे उगा सकते हैं। भिंडी के बीज लगाने के लगभग 7 से 10 दिन बाद भिंडी के बीज जर्मिनेट हो जाते हैं और 45 दिन बाद भिंडी के पौधों से हमें भिंडी तोड़ने को भी मिलने लगती है। भिंडी बड़े आसानी से उगने वाला पौधा है, इसलिए आप इसे जरूर अपने होम गार्डन में ट्राई करें। भिंडी न केवल खाने में अच्छी लगती है बल्कि भिंडी के जो फूल हैं वह भी देखने में काफी सुंदर होते हैं। भिंडी को कैसे लगाया जाता है, बीज लगाने से लेकर भिंडी तोड़ने तक की पूरी जानकारी हमारे दोस्तों। अगली हमारी सब्जी है जो आप जून के महीने में लगा सकते हैं वह है लौकी। लौकी को भी जून के महीने में बड़े आसानी से लगाया जा सकता है। लौकी स्पेशली साल भर होम गार्डन में ग्रो हो जाती है, लेकिन सर्दियों और बरसात में लौकी सबसे अच्छी होती है। लौकी लगाने के लिए आप इसे सीधे ही 15x15 इंच या इससे बड़े साइज के गमले में या ग्रो बैग में लौकी के 2 बीज लगा दीजिए। जब लौकी के पौधे कुछ बड़े हो जाएं तो आपको एक गमले में केवल एक लौकी का पौधा ही रखना है। लौकी लगाने के लगभग 60 दिन बाद हमें तोड़ने को मिलने लगती है और लौकी को होम गार्डन में उगाना भी बहुत आसान है। लौकी में बहुत ज्यादा रोग भी नहीं लगते, लेकिन लौकी में पॉलिनेशन की समस्या आती है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि 2 से 4 लौकी के पौधे जरूर लगाएं ताकि लौकी के पौधे में सही समय पर पॉलिनेशन हो पाए और उसके फीमेल फ्लावर जो है फल में कन्वर्ट हो पाए, जिससे आपको ढेर सारी लौकी हार्वेस्ट करने को मिले। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारी सब्जी है वह है खीरा। खीरा को भी आप जून के महीने में लगा सकते हैं। खीरा या ककड़ी को इसके बीज से उगाया जाता है। खीरा लगाने के लिए बीज को आप सेडी एरिया में उगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट गमले में लगा सकते हैं। बीज को लगाने के लिए इसके बीज को किसी भी गमले में ऊपर से अच्छी मिट्टी या फिर कंपोस्ट युक्त खाद लेकर इसके बीज लगा दीजिए और इसमें हल्की नमी जो है बनाकर रखिए। 3 से 4 दिन में खीरा के छोटे छोटे पौधे बाहर निकल आएंगे। अगर आपने इनकी पौध तैयार की है तो 2 से 3 हफ्ते में यह किसी बड़े गमले या ग्रो बैग में लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। खीरा को लगाने के लिए आपको 15 इंच या 18 इंच से बड़े ग्रो बैग की जरूरत होती है, क्योंकि यह एक बेल वाली सब्जी है। इसकी जड़ें काफी नीचे फैलती हैं, इसलिए बड़ा गमला लें ताकि आपको बाद में ढेर सारे खीरे तोड़ने को मिल सकें। एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि खीरा के 2-4 पौधे जरूर लगाएं ताकि आपको आगे चलकर खीरा में पॉलिनेशन की समस्या ना आए। आप केवल एक पौधा लगाएंगे तो हो सकता है कि फीमेल फ्लावर में सही से पॉलिनेशन ना हो पाए। खीरा के पौधे को भी 6 से 8 घंटे की धूप की जरूरत होती है और इसमें भी आपको समय समय पर बदल बदल कर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देना होता है, जिससे खीरे की ग्रोथ काफी अच्छी होती है। दोस्तों अगली हमारी सब्जी है जिसे आप जून के महीने में लगा सकते हैं वह है करेला। करेला को बीज से लगाया जाता है। करेला लगाने के लिए आप 15x15 इंच या इससे बड़े साइज के गमले या ग्रो बैग को लेकर इसमें 2 से 4 करेले के बीज लगा दीजिए। करेले के बीज को उगने में 10 से 15 दिन का समय लगता है। करेले लगाने के लगभग 45 दिन बाद इसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं और 60 दिन बाद आपको करेले तोड़ने को भी मिलने लगते हैं। करेला भी एक बेल वाली सब्जी है, इसलिए इसकी बेल को भी किसी क्रीपर नेट या फिर लकड़ी की मदद से ऊपर की तरफ चढ़ाना होता है। करेले में भी आपको हर महीने बदल बदल कर ऑर्गेनिक खाद देने की जरूरत है, जिससे आपको ढेर सारे करेले तोड़ने को मिलेंगे। जून के महीने में आप मूली भी लगा सकते हैं। मूली को घर में गमले में उगाना बहुत ही आसान है। जब हम जून के महीने में लगने वाली सब्जियों की बात करते हैं तो इसमें आप सब्जियों के बीज या फिर उनके पौधे लगा सकते हैं। मूली को लगाने के लिए इसके बीज को किसी भी गमले के ऊपर ऊपर बिखेर दीजिए और अच्छे से उसमें नमी बनाए रखिए, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में मूली के जो छोटे छोटे पौधे हैं वह मिट्टी से बाहर निकलकर आ गए हैं। आप इन पौधों को खुली धूप में रख सकते हैं। साथ में दोस्तों मूली के जो पत्ते होते हैं वह भी खाए जा सकते हैं। मूली लगाने के लगभग 50 से 60 दिन बाद आपको मूली गमले से उखाड़ने को मिल जाएगी। इसका इस्तेमाल आप अपने किचन में सैलेड के रूप में कर सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है जिसे आप जून के महीने में लगा सकते हैं, वह है पालक। पालक एक ऐसी सब्जी है जिसे आप पूरे साल भर अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं। पालक लगाने के लिए आपको आपके पास जो भी मिट्टी है उसमें अच्छी जैविक खाद मिलानी है और उसके बाद आपको पालक के बीज उस मिट्टी के ऊपर बिखेर देने हैं और ऊपर से मिट्टी से कवर करने के बाद पानी दे देना है। पानी देने के लगभग 6 से 8 दिन बाद आपको पालक के बीज अंकुरित होते हुए दिखेंगे। पालक बहुत जल्द हार्वेस्ट करने को भी मिलने लगती है। लगभग 4 से 5 हफ्ते बाद ही आपको पालक की पहली पत्ती तोड़ने को मिल जाएगी। पालक को आप 2 से 3 बार हार्वेस्ट कर सकते हैं। आप इसकी पत्तियों को तोड़ते जाएंगे तो लगभग 10 से 15 दिन बाद आपको दोबारा इसकी पत्तियां तोड़ने को मिल जाएंगी। पालक के साथ आप इसी तरह की और पत्ते वाली सब्जियों को भी जून के महीने में लगा सकते हैं, जिसमें बथुआ, नौनिया, हरी भाजी, लाल भाजी जैसी बहुत सारी पत्तेदार सब्जियों को आप जून के महीने में लगा सकते हैं। यह सारे पौधे आप छोटे गमले में जिसकी हाइट 6 इंच हो उसमें लगा सकते हैं और यह सभी पत्तेदार सब्जियां सेहत के मामले में काफी ज्यादा फायदेमंद भी होती हैं। मई के महीने में आप मक्का या कॉर्न को भी अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं। मई में लगाया गया मक्का आपको अगस्त में खाने को मिलेगा। बरसात के सीजन में मक्का खाना काफी लोगों को पसंद होता है। मक्का लगाने के लिए आपको 15x15 इंच के गमले में 2 से 4 मक्का के बीज लगाने होंगे। मक्का या कॉर्न लगाने के बाद इसे फुल सनलाइट में रखने की जरूरत होती है। मक्के को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसमें पानी तभी दें जब ऊपर की मिट्टी आपको सूखी लगे। गर्मी का सीजन है तो आप पुदीना भी आसानी से लगा सकते हैं। पुदीना की कटिंग लगती है, आप पुदीना की कटिंग को बाजार से भी ले सकते हैं। पुदीना को लगाने के लिए आपको किसी विशेष प्रकार की मिट्टी की जरूरत नहीं है। जो भी मिट्टी आपके पास है आप उसमें पुदीना की कटिंग लगा दीजिए। पुदीना की कटिंग लगाने के लगभग 30 दिन बाद आपको उस कटिंग से पुदीना की पत्तियां हार्वेस्ट करने को मिलने लगेंगी। ध्यान रखें कि पुदीना को केवल अलग गमले में लगाएं, क्योंकि यह एक घास प्रजाति का पौधा है और एक बार यह बढ़ना चालू होता है तो फिर उसके बाद रुकता नहीं है। इसलिए इससे सेपरेट किसी गमले में लगाएं ताकि आपके दूसरे पौधे इससे खराब ना हो। मिट्टी में नमी बनाए रखने पर यह बहुत तेजी से अपनी ग्रोथ करता है। जैसे ही अभी जुलाई में बरसात आएगी और आप इसके गमले को खुली बारिश में रख देंगे तो इसकी ग्रोथ काफी तेज हो जाएगी और फिर आपको ढेर सारा पुदीना हार्वेस्ट करने को मिलता रहेगा। जून के महीने में आप फ्रेंच बीन्स को भी लगा सकते हैं। फ्रेंच बीन्स खाने में काफी पौष्टिक होती है और इसके पौधे को लगाना बहुत ही आसान है। आप 15x15 इंच या इससे बड़े ग्रो बैग या गमले को लेकर इसमें 4 से 5 फ्रेंच बीन्स के बीज लगा सकते हैं। फ्रेंच बीन लगाने के लगभग 45 से 60 दिन बाद हमें तोड़ने को मिलने लगती है। फ्रेंच बीन्स की 2 तरह की वैरायटी होती है। एक वैरायटी होती है बुश वैरायटी और दूसरी वैरायटी होती है मचान वैरायटी। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार फ्रेंच बीन्स की वैरायटी को सिलेक्ट कर उसे अपने होम गार्डन में जून के महीने में लगा सकते हैं। आप जून के महीने में एलिफेंट फुट, ओल या जिमीकंद या फिर जिसे हम सूरन कहते हैं उसे भी लगा सकते हैं। आप इसे कंद से लगा सकते हैं। जो कंद आप बाजार से खरीद कर लाते हैं आपको उसी को लगाना है। उसमें से सूरन का पौधा तैयार हो जाएगा और उसी की जड़ों में आपको बाद में जो है जिमीकंद भी हार्वेस्ट करने को मिलेगा। अच्छी बात यह है कि यह सीड लविंग प्लांट है और आप इसे किसी छायादार जगह में भी रख सकते हैं या फिर अपने बड़े पौधों के नीचे इसके छोटे गमले को रख सकते हैं। यदि आपकी बालकनी या छत पर ज्यादा धूप नहीं आती तो आप उस जगह पर भी सूरन के पौधों को लगा सकते हैं। यह देखने में काफी सुंदर लगता है। 12 से 15 इंच के गमले में आप सूरन को लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ सब्जियां जो आप जून के महीने में लगा सकते हैं। आपने अभी इन सब्जियों के लिए मिट्टी तैयार नहीं की है तो उसकी तैयारी कर लें और जून के महीने में इन सब्जियों में से जो भी सब्जी आपको पसंद है वो आप अपने होम गार्डन में लगाएं और उनसे ढेर सारी सब्जियों को हार्वेस्ट करें।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपके रेडियो साथी मनीष और आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। और अभी आपने हमारे किसान साथियों ने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को सुना और जाना कि किस तरीके से हम अपने घर पर, छत पर, अपने आसपास किस तरीके से बागवानी लगा सकते हैं, किस तरीके से सब्जी के छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं जिससे हमारी आय में भी वृद्धि होगी और साथ साथ में ताजी ताजी सब्जियां हमें खाने को मिलेगी। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे साथियों को, उन साथियों को पता नहीं है, उनके बारे में कुछ जानकारी हम अपने किसान साथियों को देना चाहते हैं। सब्जियों की पौध तैयार करना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रहती है जो हम अब इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बता रहे हैं। सबसे पहले अधिकतर सब्जी फसलें जैसे कि टमाटर हुआ, गोभी व प्याज, इनके बीज छोटे व पतले होते हैं, इनकी स्वस्थ और उन्नत पौधे तैयार कर लेना ही आदि फसल उगाने के बराबर होता है, क्योंकि स्वस्थ पौधे तैयार करने के लिए पौधशाला के स्थान का चयन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इससे जुड़ी बातें हैं जो हमारे किसान साथियों को समझना होगा, वो बातें क्या है कि सबसे पहली बात है कि स्थान ऊंचाई पर होना चाहिए जहां से पानी का निकास उचित हो, क्योंकि बरसात आने वाली है और ऐसे में हमारे किसान साथी लगा भी सकते हैं, सब्जियां भी लगा सकते हैं। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऊंचाई पर वो हम खेत होना चाहिए। दूसरी बात ध्यान में रखना होगा हमारे किसान साथियों को कि भूमि दोमट बुलाऊ जो मिट्टी रहती है वो होनी चाहिए। पीएच मान जो रहता है वो, यदि आपको समझ में नहीं आता पीएच मान, तो आप नज़दीकी जो कृषि विभाग है या फिर केबीके है वहाँ पर जाकर संपर्क करना चाहिए। पीएच का मान लगभग 6.5 होना चाहिए। स्थान पानी के स्रोत के समीप होना चाहिए। स्थान खुले में होना चाहिए जहाँ सूर्य की पहली किरण पहुँचे। स्थान देखरेख की दृष्टि से ही निकट होना चाहिए क्योंकि आपके आसपास हो। स्थान खेत के किनारे पर होना चाहिए ताकि कृषि कार्यों में रुकावट ना हो। अब हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि कैसे तैयार करें हम अपनी पौध को, तो वो भी हम कुछ वैज्ञानिक विधि आपको कार्यक्रम के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि कैसे तैयार करें अपनी पौध में, पौधशाला में पौध कैसे बनाएं। तो यदि भूमि का पहली बार उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि हमारे किसान साथी क्या करते हैं कि दो ही फसल बोते हैं या फिर तीन फसल बोते हैं, तो उनको वही रट्टा रहता है कि हमें बस यही फसल बोना है। तो चूंकि नई आप सब्जी लगाना चाहते हैं तो भूमि की पहली बार जो उपयोग हो रहा है उसे फफूंद रहित करने के लिए इसका जो फार्मेल्डिहाइड नामक रसायन से उपचार करना आवश्यक होता है। इसका 25 मिलीलीटर से 1 लीटर पानी से घोल बनाकर पौधशाला के लिए चुने गए स्थान पर अच्छी तरह से इसका छिड़काव कर यानी छिड़काव कर भिगोएं। तत्पश्चात इस स्थान को पॉलीथीन चादर से अच्छी तरह से ढक दें। लगभग एक सप्ताह पश्चात पॉलीथीन चादर हटाकर इस जगह की अच्छी तरह से 3 से 4 बार जुताई व खुदाई कर खुला छोड़ दें, जिससे रसायन का असर जो रहता है वो समाप्त हो जाए। इसके पश्चात भूमि को अच्छी तरह भुरभुरा बनाएं और लगभग उपचार के 15 दिन पश्चात बुवाई के लिए तैयार करें। यह उपचार कमर तोड़ एवं क्लेग्ड गलन यानी डैम्पिंग ऑफ नामक बीमारी की रोकथाम के लिए सहायता प्रदान करता है। क्यारी बनाते समय यह ध्यान रखें कि प्रति 10 वर्ग मीटर के लिए लगभग 20 से 25 किलोग्राम सड़ी गली गोबर की खाद यानी ट्राइकोडर्मा हाइजोनम के साथ 1:50 का अनुपात जो रहता है उसमें मिलाकर 200 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 15 से 25 ग्राम इंडोफिल M45 नमक फपूंद नाशक और कोई भी उपलब्ध धूल कीटनाशक मिलाएं। इसमें क्यारियां 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंची उठी होनी चाहिए। इनकी जो चोंच रहती है वो निकली होनी चाहिए। डाई लगभग 1 मीटर और लंबाई 3 मीटर होनी चाहिए। सुविधा के अनुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है। बीज का उपचार बुवाई से पहले 2 से 3 किलोग्राम बीज की दर से कैप्टन थीरम बेबस्टीन इत्यादि फपूंद नाशकों से हमें करना चाहिए। साथ साथ में अंकुरण होने पर घास हटा दें तथा फुब्बारे से हल्की सिंचाई और नमी बनाए रखें। कीटों व कमर तोड़ रोग से बचाव के लिए 0.25% इंडोफिल एम 45 या 2 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव अवश्य कर दें तथा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में के हिसाब से मेलाथियोन या फिर एंडोसल्फान का छिड़काव समय समय पर करते रहें। जब पौधा 8 से 10 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाए तो आप 0.3% यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं, थोड़ी कम मात्रा में करें ताकि जो बढ़वार है अच्छी से हो सके। 4 से 6 सप्ताह आयु वाले पौधों को 12 से 15 सेंटीमीटर ऊंची रोपाई के योग बनाएं। रोपाई से 3 से 4 दिन पूर्व सिंचाई रोक दें तथा उखाड़ने से 1 घंटे पहले हल्की सिंचाई कर दें। ऐसा करने से जड़ें नहीं टूटती हैं और स्वस्थ पौधे का रोपण यदि सायंकाल में यानी शाम के समय करें और उसमें हल्की सिंचाई करें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पौधे तैयार करने के लिए विभिन्न फसलों के बीज द्वारा क्यारियों का आकार करना चाहिए। तो ये बातें महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे किसान साथियों को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाह रहे थे। तो हमें जानकारी जो हमने प्रदान की, जो जानकारी आपको बताई है, हमें आशा है कि हमारे किसान साथियों को अच्छी लगी होगी। अब साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप नज़दीकी आप कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ में केवीके भी है, वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। आपको लगता है झाबुआ में अच्छे वैरायटी के बीज उपलब्ध हो तो वहाँ पर सबसे पहले अपने जो हमारे कृषि वैज्ञानिक रहते हैं उनसे सलाह लेकर बीजों का चयन करने, साथ साथ में नई तरीके से आप करें, आप अच्छी फायदा इसमें होगी, अच्छा मुनाफा होगा। साथ साथ में किसान भाई हमारे क्या कर सकते हैं, बागवानी लगा सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं, बकरी पालन कर सकते हैं, भेड़ पालन कर सकते हैं और जो आप फसल लगाते हैं उनको भी आप अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात है जो हमने पहले भी आपको बताई थी कि आप क्या करना है, गर्मी का मौसम है, गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में किसान साथी अपनी मेड़ बंधान का भी काम शुरुआत कर दें। साथ साथ में जो तालाब हैं आपके, जो तालाब खराब हो चुके हैं यानी मिट्टी भर चुकी है उनमें, उनकी साफ सफाई कर लें। साथ साथ में आसपास उनका मिट्टी चढ़ा दें और यदि आपको लगता है कि आप नहीं चढ़ा पाएंगे तो आप जो अपने नज़दीकी सरपंच हैं, सचिव हैं, उनसे संपर्क करके आप कर सकते हैं। अब हमें आशा है कि हमारे किसान साथियों को जो महत्वपूर्ण जानकारी दी वो उससे जरूर हमारे किसान साथी सीखेंगे। और ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, झाबुआ का पहला रेडियो स्टेशन है, ये आपके लिए है। आप आइएगा, कॉल लगाइएगा, बातचीत करिएगा और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर हमारे साथ जुड़कर आप अपनी बात को रख सकते हैं। वक्त हो चुका है कार्यक्रम से जाने का, फिर होगी आपकी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार,
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आप रेडियो, आपकी बातें।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: तेरे सनम मर मिटेंगे हम आ मेरी जिंदगी।
2: आइए दोस्तों, एक बिल्कुल ही नए सीजन के साथ मैं समीर और नितिन हाजिर हैं आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा प्रोग्राम अब नोटिस किया जा रहा है, पहचाना जा रहा है, कई प्रोडक्शन हाउसेस हमें अप्रोच कर रहे हैं हमारे टैलेंट्स की गायकी को सुनकर। ये बहुत ही अच्छा मौका है आगे बढ़ने का, ग्रो करने का और प्रोफेशनल सिंगर्स बनने का। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को आप सबके ही कोलैबोरेशन से। आइए दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है बिल्कुल एक नए एपिसोड में आज के कलाकार में। आज के कलाकार में आप सभी जानते हैं और अब पूरी दुनिया इस बात को जान रही है कि हम इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं नए टैलेंट्स को, जो आएं अपनी प्रतिभा दिखाएं, हमसे बातचीत करें, जैसे कि पूरी दुनिया उनको जान सके कि वो कौन हैं, क्या करते हैं। तो आज हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान, जो टैलेंट, जो गायिका हैं, वो हैं जयश्री जी। बाकी जयश्री जी खुद अपने बारे में बताएंगी। जयश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे प्रोग्राम में हमारे सुनने वालों को प्लीज अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ हैं, क्या करते हैं।
3: थैंक यू सो मच समीर जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम जयश्री है, मैं फिलहाल बैंगलोर में ही रहती हूँ। मैं एक्चुअली बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कोलकाता हूँ, बट द लास्ट 10 years आई एम स्टेइंग इन बैंगलोर।
2: बहुत बढ़िया। और आप क्या करते हो जयश्री जी?
3: हाँ जी, मैं एक्चुअली लेटेंटली फॉर द लास्ट 20 years मैं एयरलाइन इंडस्ट्री में हूँ। मैं सेल्स ऑपरेशंस देखती हूँ, कई इंटरनेशनल एयरलाइंस में मैंने काम किया है, तो अभी भी फिलहाल मैं वही कर रही हूँ। तो एंड प्लस जो है ये तो रहा मेरे करियर का बात, बट म्यूजिक जो था मेरा हमेशा से मेरा पैशन रहा है। बचपन से ही मैं म्यूजिक मतलब सीख रही हूँ। मैं जब मैं कुछ नहीं समझती थी तभी से मैं सीख रही हूँ। मेरे मम्मी पापा ने मुझे म्यूजिक क्लासेस में डाल दिया था व्हेन आई वाज अराउंड आई थिंक 4 years 4.5 years। तो तब से सीख रही हूँ। मैं साउथ इंडियन हूँ, तमिलनाडु से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने एक्चुअली कर्नाटक क्लासिकल सीखा हुआ है। एंड हाँ जी, तो बस वही है, म्यूजिक साथ में ही है, हमेशा मेरे साथ है। एंड इट्स यू नो इट्स लाइक स्ट्रेस बस्टर टू मी। और अभी फिलहाल काम के लिए जितना गाना होता नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ा समय निकाल के थोड़ा सा मतलब गाने गा लेती हूँ। और हमारा एक छोटा सा ग्रुप भी है फ्रेंड्स का, धुन बोल के हमारा एक ग्रुप है, हम उसमें छोटे छोटे परफॉर्मेंसेस भी करते हैं। और मैं म्यूजिक क्लासेस भी ले रही हूँ बच्चों के लिए। तो इस तरह से बस अच्छी तरह से कट रही है जिंदगी।
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों, आपने सुना कि जयश्री शेखर जी यूं तो तमिलनाडु को बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी कर्नाटका में रहती हैं और उन्होंने कर्नाटक क्लासिकल म्यूजिक में प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है, ट्रेनिंग भी लिया है और उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए वो आज की जनरेशन को, छोटे बच्चों को म्यूजिक सिखा भी रही हैं। ये तो बात म्यूजिक की हुई, लेकिन वो एक बहुत हार्डकोर इंडस्ट्री, एयरलाइंस इंडस्ट्री में काम भी करती हैं, विच कुड बी कंसिडर्ड एज ए वेरी यू नो अट्रैक्टिव इंडस्ट्री। लेकिन जाहिर सी बात है बहुत स्ट्रेसिंग इंडस्ट्री भी हो सकती है, बिकॉज बहुत ज्यादा केयरफुल होकर काम करना होता है। जयश्री जी बहुत बहुत प्यारी सिंगर हैं जो अपने पैशन को परस्यू कर रही हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जयश्री जी के ही गाए हुए इस प्यारे से गीत से।

0: बहुत बहुत सुंदर गाना, बहुत सुंदर गीत, बहुत ही सुंदर गायकी जयश्री जी, थैंक यू जयश्री जी। हम लोग जयश्री जी, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, वी आर कम्युनिटी बेस्ड एनिमल्स। हम लोग आपस में एक दूसरे से दोस्ती रखते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं और सब एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। आपने अभी बताया आपका एक ग्रुप भी है जिसको आप एंजॉय करती हैं, म्यूजिकल ग्रुप है वो
1: जी।
0: तो
1: जी जी जी सर जी,
0: उसमें आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, अपने किसी सबसे अच्छे दोस्त के बारे में हमें बताइए, क्या नाम है उनका, कौन है वो और उनके कौन से गुणों से आप बहुत इम्प्रेस्ड हैं।
1: यहाँ पे एक ट्विस्ट है समीर जी, जो मैंने अपने ग्रुप के बारे में बताया वो तो खैर हम फ्रेंड्स, हम मिलके, हम चारों मतलब चारों ही प्रोफेशनल्स हैं अपने अपने फील्ड्स में, तो हम ये जस्ट एक अपने एक शौक के लिए हमने ये ग्रुप ये किया है। बट आपका जो सवाल है जो दोस्ती के बारे में जो है, तो मेरा ये मानना है कि लाइफ में हम जो है हम कई दौर से गुजरते हैं, हमारे लाइफ में कई फेसेस होते हैं, जैसे हमारा बचपन है, स्कूल डेज है, कॉलेज है, फिर हमारी जो कल्चर, जो वर्क, जो जो एनवायरमेंट है, फैमिली है, सभी सभी में हम तरह तरह के लोगों से मिलते हैं। तो मेरा बेसिकली ये सौभाग्य रहा है कि हर जो फील्ड में मतलब हर स्टेज ऑफ लाइफ में मुझे कोई ऐसा जरूर मिला है जो मतलब जिसके साथ मेरी एक स्पेशल बॉन्डिंग हुई है। जैसे मैं मतलब चार पांच लोगों का नाम नहीं ले सकती हूँ क्योंकि बचपन में मेरे एक दो फ्रेंड्स थे जो बहुत ही मेरे क्लोज थे, फिर कॉलेज लाइफ में, फिर अभी यू नो जॉब के दौरान, तो एवरीबडी हैज बीन एन इंस्पिरेशन फॉर मी। सभी किसी ने मतलब मेरे लाइफ के टफ टाइम्स में सभी ने मेरा साथ दिया है हर मोड़ के, मतलब हर स्टेज पे यू नो। तो मैं ऐसे किसी पर्टिकुलर दोस्त का नाम नहीं ले सकती क्योंकि सभी सुन रहे होंगे अभी, तो एवरीबडी इज वेरी वैल्यूएबल टू मी। और सब में मतलब उनके सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, वो जो एक फ्रेंडशिप, वो जो बॉन्ड हम शेयर करते हैं। आज भी मैं अपने यू नो बचपन के दोस्त को फोन करती हूँ तो आज भी हमारा वही तरह से बातचीत होती है जैसे हम पहले करते थे यू नो। सो तो वो एक जो एक प्यार है, जो एक हमारा एक अपनापन है, वो हमेशा यू नो मेरे साथ रहा है। तो आई रियली वैल्यू दैट फ्रेंडशिप, आई रियली चेरिश इट एंड आई बी चेरिशिंग इट फॉर माई लाइफ टाइम।
0: अमेजिंग, बहुत बढ़िया। मैं बिल्कुल इस बात को अप्रिशिएट करता हूं मैम कि आपने किसी भी दोस्त का दिल ना तोड़ते हुए सब लोगों को आपने कहा है कि सब आपके अच्छे दोस्त हैं और आप उनकी इस क्वालिटी को चेरिश करती हैं कि आप लोगों के दोस्ती में एक थिकनेस है, एक प्यार है, मोहब्बत है। बहुत खूब
1: जी।
0: तो चलिए अगला गीत हम आपके सारे के सारे दोस्तों को ही समर्पित करते हैं जिनके साथ आपकी अच्छी फ्रेंडशिप है। बहुत बढ़िया, सुनते हैं दोस्तों अगला गीत।

0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जयश्री जी, मैं आपसे दोस्तों के ही संबंध में एक भी बात जानना चाहूंगा। अब आपकी मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं क्योंकि आपके सारे दोस्त आपके अच्छे दोस्त हैं, तो आप अपने दोस्तों को उनके जन्मदिन पर क्या गिफ्ट देना चाहेंगी?
1: ये टफ क्वेश्चन है, बट हाँ ये है कि अभी मैं डिपेंड करता है कि मैं किसको क्या दे रही हूँ। मतलब मैं जब भी किसी को कुछ गिफ्ट देती हूँ, मेरी क्लोज फ्रेंड्स को, तो उनके मतलब उनके पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हुए, उनके चॉइस को ध्यान में रखते हुए, उनके लाइफस्टाइल को भी ध्यान में रखते हुए मैं गिफ्ट सेलेक्ट करती हूँ। और मैं ये मानती हूँ कि जो मटेरियल

0: हमें कुछ गाना सुना दीजिए। तो किसी और का बर्थडे था तो उसमें भी उन्होंने मुझे एक गाना गाने को कहा, तो मैं गाने रिकॉर्ड करके भेज देती हूँ एंड दे फील वेरी हैप्पी। जैसे हैप्पी बर्थडे गा दिया, कभी कुछ उनका फेवरेट सॉन्ग गा दिया। ऐसे भी मैंने किया है बहुत बार। तो दिस इज रियली व्हाट आई यू नो वैल्यू।
1: बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कोई मेटेरियलिस्टिक चीज को हटा के अगर हम इसी तरह की कोई इमोशनल चीज भी अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं तो वो भी अपने आप में एक बड़ा गिफ्ट होता है। बहुत खूब दोस्तों, सोचिए, विचार कीजिए, क्या इसी तरह की कोई चीज हम भी कर सकते हैं क्या? चलिए तब तक एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: बहुत बढ़िया। तो जयश्री जी, आखिरी बार आपने कब कुछ बिल्कुल नया करने की कोशिश की थी? मतलब हम लोग करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट के लिए, कभी कोई नई डिश बनाते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, तो ऐसा आपने क्या करने की कोशिश की, कुछ नया जो आपने पहले ना किया हो?
1: एक्चुअली मैं बेसिकली ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ, लाइक आई डोंट टेक रिस्क मच इन लाइफ, बट एक बार मैंने कोशिश किया था बैंकॉक में, मैंने स्कूबा डाइविंग करने की कोशिश की थी। सो आई वॉज रियली वेरी स्कैर्ड उस समय, तो जब कुछ वो सारे इक्विपमेंट्स पहन के, मतलब दैट वाज समथिंग वेरी न्यू, समथिंग न्यू विच आई हैव नेवर डन इन माय लाइफ, और जब मैं पहली बार जो मैं करने वाली थी, तो वो सब गियर वगैरह पहन के आई वाज लाइक फीलिंग सो एक्साइटेड। तो ये चीज आई थिंक आई डिड इट एंड आई एम वेरी

0: हैप्पी, आई वॉज फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने ये चीज किया, तो ये चीज मेरे लिए समथिंग एक्साइटिंग था. अदरवाइज मैं ज्यादा कुछ बहुत कुछ एवरीडे कुछ एक्साइटिंग करने का नहीं सोचती हूँ. आई हैव अ वेरी नॉर्मल लाइफ एंड आई एम हैप्पी यू नो डूइंग व्हाट आई एम डूइंग. मैं कुछ डेंजरस या कुछ ऐसे अलग चीजें कोशिश नहीं करती हूँ. आई ऑलवेज प्ले ऑन द सेफ साइड. तो ये है, तो यही था मेरा एक्चुअली.
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. मेरा इस सवाल का पूछने का पर्पज उद्देश्य जयश्री जी सिर्फ इतना होता है कि जब भी हम कुछ नया करते हैं और नया जो है वो खतरनाक होना जरूरी नहीं है, खतरनाक होना जरूरी नहीं है. हो सकता है हम कहीं पर सुने, मूवी में देखें या रील में देखें या कहीं बाजार में देखें और कोई एक नई डिश बनाने की कोशिश करे. नाउ कैन यू रियली कॉल इट डेंजरस?
0: नो.
1: तो एंड कैन यू कॉल इट स्टेइंग सेफ? नो. सो कुछ नया मतलब वो भी होता है. चाय हम रोज बनाते हैं, लेकिन मैंने अभी 5 दिन पहले एक डिफरेंट तरीके से चाय बनाने की कोशिश की. अच्छा. मैंने मिट्टी के बर्तन में चाय बनाने की कोशिश की, तो क्या हम उसे नया नहीं बोलेंगे? मिट्टी के बर्तन में मैं चाहता था कि मिट्टी की खुशबू चाय में आए. तो आई जस्ट ट्राइड. और ये भी संभव है, ये भी पॉसिबल है कि मैं फेल हो गया हूं, लेकिन मैंने कुछ नया करने की कोशिश की और उस कोशिश के करने में मैं बहुत एक्साइटेड था. सेम वे जब आपने पहली बार स्कूबा डाइविंग करी तो आप बहुत एक्साइटेड थी और वो एक्साइटमेंट हमें आपकी आवाज में सुनाई दे रहा था. तो मेरा पर्पस ये क्वेश्चन पूछने का इतना ही होता है, किसी भी पर्सन को ये रियलाइज कराना कि वो एक्साइटेड कब होते हैं और खुश कब होते हैं. तो क्या उन चीजों को हम बार बार अपनी जिंदगी में रिपीट कर सकते हैं? बस इतना एक अवेयरनेस क्रिएट करने का मेरा पर्पस था.
0: जी,
1: बहुत बढ़िया. तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक प्यारा सा गीत सुनते हैं जयश्री जी की ही आवाज में.

0: बहुत बहुत बढ़िया। तो जयश्री जी, अगला क्वेश्चन जो बहुत इंटरेस्टिंग है, फर्ज कीजिए आपको 24 घंटों के लिए गायब कर दिया जाए, इनविजिबल, तो आप उन 24 घंटों में क्या करना पसंद करेंगी?
1: इनविजिबल यानी मिस्टर इंडिया की तरह मिस इंडिया। तो यस, ये बहुत ही एक अमेजिंग फैंटेसी है जो आई थिंक सभी कभी ना कभी ये बात सोचे होंगे कि काश मैं इनविजिबल होती और काश मैं ये कर पाती। तो दिस इज रियली, आई मीन, हाँ डेफिनेटली मैं एक चीज बोलूंगी, मैं लाइक मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो मैं ये करूंगी कि मैं आजाद पंछी की तरह कहीं भी चली जाऊं विदाउट एनी यू नो रेस्ट्रिक्शन, कोई वीजा नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, मैं कहीं भी उड़ सकती हूं, कहीं भी जा सकती हूं, कहीं भी जाके बैठ सकती हूं, कोई भी कंट्री में जा सकती हूं। आई थिंक दैट्स द फर्स्ट थिंग विच कम्स टू माई माइंड। और एक और है कि मैं अपने दोस्तों पे प्रैंक्स भी करना चाहूंगी, यू नो, उनको थोड़ा सा डराना, उसमें मजा भी आता है थोड़ा, यू नो, लिटिल फन पार्ट ऑफ अस।
0: Okay.
1: और एक और चीज है जो मैं मतलब करना चाहूंगी कि मतलब अगर कोई किसी को किसी तरह की हेल्प चाहिए तो मैं इनविजिबल होके उसको वो हेल्प करना चाहूंगी, यू नो, ताकि मतलब क्रेडिट वो ले जाए, क्रेडिट मुझे ना मिले, क्रेडिट उसको मिले, देखने वाला समझे कि उसने वो काम किया है। तो आई विल बी वेरी हैप्पी इन दैट कि मेरे वजह से किसी और को यू नो उस काम का क्रेडिट मिल रहा है, तो आई विल बी हैप्पी ऑन दैट। तो ये चीजें बेसिकली शायद मैं करना चाहूंगी।
0: बहुत खूब। अगेन दोस्तों, मेरा इस सवाल का पूछने का पर्पस भी यही होता है कि आप थोड़े से इमेजिनेटिव बनिए, क्रिएटिव बनिए, अपनी नॉर्मल रूटीन चलती हुई जिंदगी से ऊपर उठिए और सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं, और ये सोचिए कि क्या उसके लिए इनविजिबल होना ही जरूरी है, क्या विजिबल होते हुए भी वो काम नहीं किए जा सकते। सोचिए सोचिए, आई एम नॉट अ जज, ना तो मैं आंसर दे रहा हूं, ना मैं आंसर देने के लिए काबिल हूं, मैं तो सिर्फ सोचने की कोशिश कर रहा हूं बस। चलिए आगे बढ़ते हुए जयश्री जी की ही आवाज में सुनते हैं एक बहुत खूबसूरत सा गीत।

0: बहुत सुंदर। तो जयश्री जी, जब आप छोटे थे तो आपके आइडल, आपके हीरो कौन थे और भला क्यों?
1: हीरो मतलब आप आर यू डू यू वांट मी टू से अबाउट फिल्म हीरो या फिर लाइफ, लाइफ में जो मेरे हीरो थे वैसे उस टाइप के? लाइक आई लिटिल बिट आई वाज लाइक कंफ्यूज्ड इन दिस क्वेश्चन।
0: आई वुड रिक्वेस्ट यू नॉट टू बी कंफ्यूज्ड। आपके हीरो कौन थे? अब वो भगवान श्री राम भी हो सकते हैं, जीसस क्राइस्ट भी हो सकते हैं, धर्मेंद्र जितेंद्र भी हो सकते हैं, अब्दुल कलाम आजाद भी हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी भी हो सकते हैं, और ए आर रहमान भी हो सकते हैं। यू चूज।
1: ओके, तो मेरे हीरो तो मेरे पापा ही थे, क्योंकि बचपन में सबसे पहले हम अपने पापा, यू नो, अपने पापा को देखते हैं, वो किस तरह से वो यू नो काम करते हैं, यू नो घर संभालते हैं, तो उस तरह से मैं बहुत उनसे इंस्पायर्ड थी। तो मैं बचपन में मैं भी ये सोचती थी कि बहुत जल्दी यू नो मैं भी बड़े होके मैं भी यू नो काम करूंगी, अपना परिवार संभालूंगी, सब कुछ करूंगी, यू नो उस तरह से मैं बहुत इंप्रेस्ड होती थी अपने पापा से। धीरे धीरे जब यू नो थोड़ा थोड़ा हम बढ़ने लगे तो फिर बहुत कुछ यू नो बहुत कुछ चीजें हैं हमारे लाइफ में जो हम देखते हैं, कभी हम इसकी तरह बनना चाहते हैं, कभी हम उसकी तरह बनना चाहते हैं, बट आई थिंक मेरे आइडल हीरो मेरे पापा ही थे और वो ही रहेंगे हमेशा।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बहुत प्यारी बात। दोस्तों गौर कीजिएगा, अपने मन के अंदर झांकिएगा। ज्यादातर हम अपने पिताजी को या अपनी मां को ही अपना हीरो पाते हैं, क्योंकि हम उन्हीं से सब कुछ सीखते हैं। बहुत खूब, चलिए आगे बढ़ते हुए जयश्री जी के पापा को ही डेडिकेट करते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बहुत बहुत सुंदर जयश्री जी, थैंक यू। जयश्री जी, आपने अभी एक सवाल पहले ये जिक्र किया था कि अगर आप इनविजिबल हो जाएं तो आप खूब ट्रैवल करेंगी, तो आपकी ट्रैवल लिस्ट में कौन कौन सी जगहें हैं जहां आप जाना चाहेंगी?
1: ट्रैवल लिस्ट में तो वैसे मैं एयरलाइंस में रहने की वजह से मैं लकी थी कि काफी जगहें मैं देख पाई हूँ, बट अभी भी मेरे बकेट लिस्ट में कश्मीर है जो मैं अभी तक नहीं देख पाई हूँ। इस बार मैं जाने का सोच रही थी पर पता नहीं अब जा पाऊंगी कि नहीं नियर फ्यूचर। एंड स्विट्जरलैंड हैज ऑलवेज बीन माई ड्रीम, तो मैं जरूर जाना चाहूंगी एक बार वहां पे भी। तो ये दो जगह है मेरे लिए अभी।
0: ओके, ब्यूटिफुल। और इंडिया में सारी जगह तो आपने घूम ही ली होंगी, आई होप।
1: हाँ, इंडिया में मोर और लेस सब देखा है सर।
0: ओके, अंडमान निकोबार, मालदीव्स, मे बी राजस्थान में जैसलमेर,
1: राजस्थान गई हूँ, गुजरात नहीं गई हूँ मैं, मतलब एक दो जगह छोड़ के आई हैव बीन एवरीवेयर ऑलमोस्ट लाइक।
0: वाओ, ब्यूटीफुल। ये भी एक बहुत बड़ी नियामत होती है, बहुत बड़ी किस्मत होती है कि हम अपने ही देश को पूरी तरीके से घूम पाए, देख पाए। बहुत प्यारी प्यारी जगह हैं। चलिए दोस्तों, प्लान बनाइए, अपना टूर डिसाइड कीजिए और निकल लीजिए घूमने के लिए जैसे जयश्री जी करती है, और एक प्यारा सा गीत साथ साथ सुनते जाइए।

0: बहुत खूब। तो जयशव जी आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही सेंसिटिव सवाल पूछना चाहूंगा आपके लिए, क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा अहमियत रखती है, ज्यादा सुंदर है, प्यार करना या प्यार पाना?
1: ये दोनों ही लाइफ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये हर इंसान का अपना अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, ये उनके इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि वो यू नो क्या चाहता है। मैं अपने लाइफ में दोनों ही चाहूंगी, क्योंकि अगर हम किसी से प्यार करते हैं, मतलब सच्चा प्यार किसी से हम करते हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे फैमिली है, तो हमारा तो क्या होता है कि हमारे बीच एक इमोशनल, एक वेरी स्ट्रांग इमोशनल बॉन्डिंग बन जाती है जो लाइफ लॉन्ग रहती है, जिसकी मैं बहुत बहुत ज्यादा कदर करती हूँ। और हम में एक एक सेल्फलेसनेस भी आ जाती है, एक हमारी एक वो जो एक सेल्फिश फीलिंग है वो नहीं रहती है, वी यू नो वी आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर देम, तो वो एक भावना जो है वो हमारे अंदर आती है। तो ये चीज है, मतलब अगर हम किसी से प्यार करते हैं सच्चे दिल से, और कोई कोई अगर हमें प्यार करे, हमें वो प्यार मिले, उससे ज्यादा यू नो तकदीर आई डोंट थिंक किसी की हो सकती है। जिसको किसी का सच्चा प्यार अगर किसी को मिलता है तो हमें डेफिनेटली वो एक बिलोंगिंगनेस फील होती है, एक सिक्योरिटी भी फील होती है कि यस हमारे साथ ये है, हमारे कष्ट में, हमारे दुख में, हमारे सुख में हमारे साथ कोई है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक कॉन्फिडेंस भी आता है हमें, हमारे बेसिकली अगर कोई हमारा साथ दे, हमारे साथ है, तो हमें वो कॉन्फिडेंस भी आती है और हमारी सेल्फ एस्टीम का भी यू नो बहुत ज्यादा बूस्टिंग होती है यहाँ पे। तो प्यार अगर मिले तो इंसान क्या नहीं कर सकता, तो मेरे लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है सर, प्यार करना और प्यार पाना दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंगली ब्यूटिफुल डिस्क्राइब्ड, बहुत खूबसूरत। मेरा पर्सनल मानना यह है, अब आपको लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हो रहा हूं, स्वार्थी हो रहा हूं, लेकिन अगर हम अपने आप को इतना प्यार करें, इतना प्यार करें, ग्लास में पानी की तरह उसको भरते जाएं कि जब वो छलके तो सबको मिल जाए, हम अपने को इतना प्यारा बना लें कि हमारे प्यार से पूरी दुनिया भर जाए, तो प्यार करना और फिर उसके बदले में प्यार पाना, आपने कहा एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस्ड इमोशन है जिसको बहुत प्यार से चेरिश करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसे प्यार के नाम एक प्यारा सा गीत भी हो जाए फिर।

0: बहुत बहुत ही प्यारी गायकी। तो जयश्री जी, हमारे सुनने वालों के लिए, सिंगर्स के लिए, आपके म्यूजिकल ग्रुप धुन के लिए क्या संदेश है आपका?
1: यूं ही गाते रहो,
0: वाह,
1: मुस्कुराते रहो, बस यही कहना चाहूंगी। लाइफ है, इसको जीए। मैं लाइफ जीने में विश्वास करती हूँ। बस जिंदगी को फुल एंथुसियाज्म से जीना है आपको, और अपने ड्रीम्स को अचीव करने की कोशिश करनी है। थैंक यू सो मच अगेन एवरीवन। थैंक यू समीर जी, थैंक यू नितिन जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच
0: जयश्री जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन टू अवर प्रोग्राम। आपसे बातें करके, आपके गीत सुनकर बहुत मजा आया। थैंक यू
1: सो मच सर।
0: तो दोस्तों, न तो सुनना भूलिएगा और न ही पार्टिसिपेट करना, क्योंकि अब हमारा प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में तब्दील होने वाला है, जहां से कितने ही टैलेंट्स प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जाने वाले हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। बने रहिए हमारे साथ, मैं समीर और मेरे दोस्त नितिन के साथ।

नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सचते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें।

0: आज के कलाकार का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही अमेजिंग एपिसोड लेके दोस्तों मैं हाजिर हूं। आज हमारे साथ जो टैलेंट है वो बहुत लर्नेड, बहुत एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल है, लेकिन बड़ी मजेदार वाली बात है कि वो संगीत में भी उतने ही प्रबुद्ध हैं। तो हमें आज उनकी पर्सनालिटी की जानकारी के साथ साथ बड़े ही प्यारे प्यारे गीत भी सुनने को मिलेंगे। इट ऑलवेज ऑलवेज हैपन्स, अ पर्सन डेवलप्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू अनदर लेवल, अनदर फॉर्मेट, अनदर प्रोटोकॉल, अनदर ऑर्बिट आई मस्ट से। तो आज जो पार्टिसिपेंट, आज जो कलाकार, आज जो टैलेंट हमारे साथ हैं वो हैं डॉक्टर जितेंद्र वोरा साहब। बहुत ज़्यादा तो मैं क्या कह सकता हूँ, इनका प्रोफाइल मेरे सामने है। जब हम डॉक्टर वोरा साहब का प्रोग्राम एयर करेंगे तो उससे पहले उनका जो प्रोफाइल आपके सामने आएगा तो उसमें आपको सारी बातें पता चलेंगी। फिर भी डॉक्टर वोरा साहब हमेशा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के प्रबुद्ध प्रोफेसर रहे, टीचर रहे, बच्चों से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स तक उन्होंने पढ़ाया। उसके बाद अभी वो एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट हैं, म्यूजिक थेरेपिस्ट हैं, ग्राफोलॉजिस्ट हैं और ग्राफोथेरेपिस्ट हैं, PLR स्पेशलिस्ट हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर हैं और जाहिर सी बात है लाइफ कोच हैं। बाकी हम डॉक्टर वोरा साहब से ही पूछेंगे। डॉक्टर साहब, वेलकम टू अवर प्रोग्राम। आई एम ग्रेटफुल टू हैव यू इन फ्रंट ऑफ अवर फैंस, इन फ्रंट ऑफ अवर लिसनर्स। सो प्लीज थोड़ा सा हमारे लिसनर्स से बात कीजिए, थोड़ा अपने बारे में बताइए, कहाँ हैं आप, अभी क्या करते हैं आप?
1: धन्यवाद समीर साहब। मैं अभी मुंबई में बोरीवली में हूँ और कुछ सालों से अभी एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र के बारे में जो लोगों को ज्ञान वगैरह भी देता हूँ, मतलब सिखाता भी हूँ, और जो काउंसलिंग होता है और जो कंसल्टेंसी होती है वो भी मैं करता हूँ। तो पहले तो मेरा जो है 30 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग में रहा, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी वगैरह, लेकिन जो म्यूजिक जो है वो म्यूजिक मेरे साथ में चल ही रहा था। जैसे कि तो 1993 में जब वर्तक कॉलेज में, यहाँ पर वसई में जब मैं था, तब SYBSE में सबसे पहले मुझे गाने का मौका मिला और वहां से मुझे मालूम पड़ा कि हाँ, यस, मैं भी एक मस्क डियर हूँ और जो सुगंध जो आ रही है वो मेरे खुद के नाभि से ही आ रही है। तो वहां से चालू करते करते अभी तक मतलब संगीत का जो सफर है वो चालू ही है और कुछ शोज वगैरह भी करता हूँ। जो मेरा एस्ट्रोलॉजी का, वास्तु का जो काम है उसके अंदर मैं लोगों को जो दूसरी थेरेपी जो देता हूँ उसके साथ में म्यूजिक थेरेपी भी मैं लोगों को देता हूँ। और अभी अभी लास्ट मतलब कुछ 3 महीने में मैंने कुछ लाइव ऐसे 11 शोज भी किए हैं, तो इस तरह से लाइफ चल रही है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। डॉक्टर साहब, बस आउट ऑफ शीयर इनक्विजिटिवनेस आपने मेंशन किया, एंड ऑफ कोर्स आपके प्रोफाइल में तो मेंशन है ही म्यूजिक थेरेपी। जाहिर से बात है हमारा ये पूरा प्रोग्राम म्यूजिक को ही डेडिकेटेड है, गायकी, संगीत, और हमारे जितने भी सुनने वाले लोग हैं वो सब म्यूजिक से कनेक्टेड हैं। तो ऑफ कोर्स मैं ये जानना चाहूँगा, बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग अ ले मैन हियर, ये म्यूजिक थेरेपी क्या होती है डॉक्टर साहब, एंड हाउ डू यू, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट डू यू डू विद द म्यूजिक थेरेपी? म्यूजिक थेरेपी से सुनने में आता है कोई तकलीफ है जिसको हम ठीक करते हैं म्यूजिक से, सो इसकी सही डेफिनेशन क्या है?
1: सही डेफिनेशन देखिए ऐसी है कि एक तो होता है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति गाता नहीं है। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हमारे चक्रों पर असर करते हैं। देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि जिसको किसी भी चीज में, जैसे कि ऑफिस में, अपने पोजीशन में, अपने रिलेशन में या किसी बिजनेस में, किसी में भी अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो उसे हमेशा परकशन वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बजाने चाहिए या बजाते हुए सुनना चाहिए। उससे उस व्यक्ति का मूलाधार चक्र यानी जो रूट चक्र होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। ऐसा मैंने देखा हुआ है कि जो लोग खास करके ड्रम्स हैं या कोंगो बोंगो वगैरह हैं या ढोल है, मृदंग है या इस प्रकार के नगाड़े वगैरह जो हैं, वो अगर बजाते हैं या अगर सुनते हैं तो उनकी हमेशा स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, रिलेशनशिप में स्टेबल रहते हैं वो लोग, बिजनेस में, जॉब में, करियर में वो लोग बहुत, उनकी अच्छी स्टेबिलिटी होती है। दूसरा, मैं एक थोड़ा सा सीक्रेट मैं अगर बताना चाहूंगा कि अगर ऑरा स्कैनिंग अगर किसी भी ऑफिस के या कंपनी के लोगों का किया जाए तो जिसका मूलाधार चक्र जिसका स्टेबल होता है ना, उसको कंपनी वाले लोग नहीं निकालते, लेकिन जिनको जिनके मूलाधार चक्र जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं या वीक होते हैं, उनको ही ज्यादा करके लोग कंपनी से उनको रिलीव करवाया जाता है। तो अगर स्टेबिलिटी चाहिए किसी भी चीज में तो वो मतलब वो म्यूजिक थेरेपी काम में आती है। दूसरा, जैसे मैं वोकल का मतलब मैं बताऊं, फॉर एग्जांपल अगर आपको जैसे कि एसिडिटी है, आपने कुछ अगर ऐसा अनाप शनाप खा लिया और वो खाने के बाद में आपको एसिडिटी है, अभी एसिडिटी के बाद में अगर आपके पास में कोई भी एंटेसिड नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे एसिडिटी कम अगर हो, तो तुरंत ही आपको खमज राग के गाने गा लेने चाहिए या खमज राग के गाने सुन लेने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक गाना है, तुझो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, वो वाला जो गाना है ना, तो वो गाना छू कर मेरे मन कर, तो वो गाना जो है वो खमज राग का है। मैं आपको 100% मैं आपको कहता हूं कि आपकी एसिडिटी जो है ना तुरंत ही एकदम उसका शमन हो जाता है। जैसे ही पूरा ये गाना खत्म होते होते दूसरा अंतरा पूरा होता है, इतने में आपको लगेगा कि हाँ यस, जैसे छाती में चेस्ट में जलन जो है वो कम हो गई है। तो ये इस प्रकार के बहुत सारे मतलब जो है ना इसके एप्लीकेशन है म्यूजिक के। और म्यूजिक तो मेरा अगर ऐसा है, मैं आपको कहूं कि म्यूजिक अगर ना होता तो शायद मैं मर गया होता। और गॉड से कनेक्ट करने के लिए, प्रकृति से, निसर्ग से कनेक्ट करने के लिए म्यूजिक इज द ओनली टूल एंड दैट इज द बेस्ट टूल, जिससे आप मतलब आप प्रकृति से, निसर्ग से, एनवायरमेंट से, गॉड से आप कनेक्ट कर सकते हैं।
0: बहुत खूब, अमेजिंग। तो दोस्तों, यूं तो वोरा साहब से इस तरीके की बातचीत के लिए पूरा एक सेपरेट एपिसोड बनता है, जो हम जाहिर सी बात है डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे आगे बनाने की, लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे डॉक्टर साहब के म्यूजिक की। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारे से गीत से, जो डॉक्टर वोरा साहब ने हमारे लिए प्रिपेयर किया।

0: बहुत सुंदर। तो डॉक्टर साहब शुरुआत से शुरू करते हैं, आपने अपनी गायकी, आपने कहा ना कि आपको पता चला कि कस्तूरी आप ही के अंदर छुपी हुई है, तो आपने अपनी कस्तूरी की सुगंध कब पहचानी, कब आपको महसूस हो गया कि बस अब गाना है?
1: वो मैंने जब पहली बार हमारे कॉलेज में एनुअल फंक्शन था और उसमें मैंने डरते डरते मैंने गाना गाया था, और वो गाना जो है वो इतना फेमस हुआ, इसकी वजह से मैं इतना फेमस हुआ था कि शायद, और मैं आपको, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं अब, मतलब कोई वो ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन शायद मतलब कृष्ण भगवान को भी जैसे कि ऐसे लगा होगा कि अरे इसके पीछे ज्यादा लड़कियां पड़ गई हैं मेरे मेरे साथ में, मतलब इतना मैं मोहित नहीं कर सकता हूं जितना ये लड़का जो है इतना सबको मोहित कर रहा है।
0: ओके
1: वो कॉलेज को, वो जो SYBSC और TYBSC का जो मेरे जो दिन थे, वो मेरे सब लोग मतलब बस अभी तुम हमारे लिए गाने गाओ, और उस वक्त ऐसा था, एक आपको शायद पता होगा झंकार बीट्स करके एक
0: मूवी आई थी
1: उस टाइम पे, झंकार बीट्स करके थे, तो उसके जो एक व्यक्ति आए हुए थे तो उन्होंने मुझे सुना, और सुनने के बाद में वो स्टेज पर आए और उन्होंने मुझे बोला कि तुम क्या करोगे अभी BSc करने के बाद में, तो मैंने कहा मैं तो केमिस्ट बनूंगा, तो बोला नहीं नहीं तुम ये मत करो, तुम हमारे साथ में आ जाओ, तो तुम्हारी वजह से हम भी कमाएंगे और हमारी वजह से तुम भी कमाओगे। तो मैं फिर उनके साथ में फिर मैं शोज करने लगा, और वो शोज में मैं लिटरली, मेरे पास में अभी तो कोई वीडियोस वगैरह तो नहीं है, लेकिन लिटरली लोग मेरे पर पैसे उछालते थे, मतलब वो तो उस वो एक ऑर्केस्ट्रा का जमाना था ना, लोगों को लाइव परफॉर्मेंसेस वगैरह बहुत पसंद आते थे
0: जी,
1: तो लोगों को मतलब वो सब जो है बहुत पसंद आता था, और उसमें एक गोल्डन टाइम जैसे के मतलब था। बाद में फिर तो मोबाइल वगैरह आ गए तो वो सब ऑर्केस्ट्रा का सब क्रेज वगैरह कम हो गया।
0: ओके
1: और उसी वक्त से मतलब चालू है, धीरे धीरे धीरे धीरे करते करते सीखते सीखते सीखते अभी तक यहां तक आए हैं।
0: बहुत बढ़िया, अमेजिंग। तो ये थी वोरा साहब के संगीतमय यात्रा की कहानी, उनकी जर्नी कहां से शुरू हुई, सोशल मीडिया आ गया, डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड आ गया, हमें उसको इस्तेमाल करना आ गया, और हमारी रीच सिर्फ एक स्टेज परफॉर्मेंस के सामने मौजूद सुनने वालों से बढ़कर पूरी दुनिया में फैल गई। आइए तो एक फिर प्यारा सा गीत सुने आज वोरा साहब की आवाज में, जिसे हम पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं।

0: बहुत खूबसूरत। चलिए अपने संगीत के बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरीके का म्यूजिक पसंद करते हो डॉक्टर साहब आप? आई मीन टू से फोक म्यूजिक, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, गजल, भजन, ओरिजिनल, इंस्ट्रूमेंटल या कुछ वेस्टर्न, किस तरीके का म्यूजिक? पर्सनली मुझे मालूम है आपका जवाब होगा हर तरीके का म्यूजिक, म्यूजिक इज म्यूजिक। डॉक्टर साहब खाना हमारे सामने एक बफे में बहुत सारा रखा होता है, लेकिन फिर भी हम कुछ एक दो चीजें चूज करते हैं ना अपनी पसंद की, तो आपके पसंद का संगीत क्या है?
1: मेरी पसंद का जो संगीत है वो तो देखा जाए तो ज्यादा करके ऐसे गाने के जो रोमांटिक हो, जिसमें मतलब प्रेम या मतलब मोटी

0: मोटिवेशनल ऐसे गाने वगैरह हो, तो इस प्रकार के जो गाने होते हैं वो मुझे बहुत ज्यादा मेरी पर्सनालिटी को भी सूट करते हैं, मेरी आवाज को भी सूट करते हैं और लोगों को भी पसंद आता है। और मैं खुद मतलब जब वो गाता हूं मैं, तो मैं उसमें पूरा घुस जाता हूं, मतलब मैं उसमें, क्योंकि जब से मतलब मुझे षणमुखानंद हॉल के अंदर परफॉर्म करते हुए जब कुमार सानू जी ने जब मुझे देखा, तब उनके साथ में मिलते हुए मतलब जब उन्होंने मुझे पूछा ना मतलब कि तुम डरे हुए क्यों थे, तुम उस गाने में पूरा घुस क्यों नहीं जाते, तब जाकर के मतलब मैं जो है वो गाना जब मैं फील करके जब मैं गाता हूं तो मैं भी एंजॉय करता हूं और लोगों को भी एंजॉय करवा सकता हूं। तो मुझे जो है ना ज्यादा करके रोमांटिक गाने जो हैं वो गाने मुझे बहुत पसंद आते हैं, और मैं उसी प्रकार के गाने जो है ज्यादा करके प्रिफर करना मतलब प्रिफर करता हूँ। क्योंकि अगर ज्यादातर दर्द वाले जो गाने हैं वो भी, या एकदम जिस प्रकार के स्पिरिचुअल या भजन, इस प्रकार के गाने मैंने ज्यादातर ट्राई नहीं किए हैं, लेकिन ज्यादातर मैंने जो गाने हैं वो रोमांटिक गाने ही, मैंने पैपी सॉन्ग्स जो होते हैं जिस पर थोड़ा सा डांस आप कर सकें या थिरक सकें, इस प्रकार के गाने जो है वो लोगों को भी पसंद आते हैं और मैं भी उसका पूरा भरपूर आनंद लेता हूँ।
1: बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुनते हैं जितेंद्र सर की ही आवाज़ में।

0: हो।
1: बहुत खूबसूरत जितेंद्र सर, जाहिर से बात है इतने सारे गीत आप गाते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं, तो रियाज भी करते होंगे अपने वाद्य यंत्र यानी कि गले का, आवाज का आप ख्याल भी रखते होंगे। सो व्हाट डू यू डू, क्या ट्रिक्स हैं आपके पास या क्या डेली हैबिट्स हैं जिसे आप अपनी आवाज का ख्याल रखते हैं?
2: मेरी आवाज का ख्याल रखने के लिए एक तो चीज है कि ऑफ कोर्स रियाज तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे भी जैसे आप एक कहावत है कि बर्तन मांजत रहिए, रोज मतलब जो है वो बर्तन घिसने पड़ते हैं तो ही वो चमकते रहेंगे। तो उसी तरह से गले को भी अगर गर्म रखना है, गले को भी अगर आपको फ्लेक्सिबल रखना है, तो बहुत जरूरी है कुछ वोकल एक्सरसाइजेस मैं करता हूँ, क्योंकि मैं वॉइस कल्चर सीखा हुआ हूँ, तो अलग अलग आवाज निकालना, अलग अलग उसमें एक्सप्रेशंस फीलिंग्स डालना, तो ये सब मैं पहले से सीखा हुआ हूं, तो उसकी एक्सरसाइज मैं रोज करता हूं। मैं खाने पीने का बहुत ध्यान रखता हूं, जिस तरह से कोई गर्म तवा हो और उसके ऊपर अगर पानी के छींटे अगर मारे जाएं तो कैसे पानी की आवाज आती है और उस तवे पर कैसा असर होता है, वैसा ही अगर हम बहुत ठंडा अगर पानी पियेंगे या अगर बहुत ठंडी चीज या बहुत गर्म चीज अगर खाएंगे या पियेंगे तो वोकल कॉर्ड्स पर धीरे धीरे असर होती है और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। इसीलिए बॉडी टेम्परेचर का जो भी पानी या खाना हो वही मैं ज्यादा करके खाता हूं और इस तरह से मैं अपने गले का ध्यान रखता हूं।
1: बहुत सुंदर, अमेजिंग, दीज आर सम ब्यूटीफुल टिप्स दोस्तों जो हमारे काम आ सकती हैं। बहुत बहुत सिंगर्स हमारी फैमिली में हैं जो प्रैक्टिस करते होंगे, उनके पास अपनी ट्रिक्स होंगी। आई सिंसियरली अप्रिशिएट दैट एंड रिस्पेक्ट दैट, लेकिन जाहिर से बात है किसी एक्सपर्ट के टिप्स को सीख लें तो भला क्या बुराई है, हो सकता है हमारे काम आ जाए। आइए चलिए फिर एक प्यारे से गीत का आगाज करते हैं जितेंद्र साहब की ही आवाज में।

0: अमेजिंगली ब्यूटिफुल सिंगिंग। नाउ जितेंद्र साहब, अपने किसी सबसे अच्छे परफॉर्मेंस के बारे में हमें बताइए, कहाँ हुआ वो, क्या अकॉम्प्लिशमेंट, आपकी फीलिंग क्या हुई। देखिए, क्या दिया गया वो तो बहुत कुछ है, दिया जा सकता है, बट अपने इनर फीलिंग की बात होती है कि हाँ, आज मैंने मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, सबसे बेस्ट काम किया। सो ऐसे किसी अकॉम्प्लिशमेंट के बारे में थोड़ा हमें बताइए।
1: जी जरूर। उस दिन वो एक किसी एनजीओ का कोई प्रोग्राम था और षणमुखानंद हॉल में, यहाँ पर मुंबई में, जिसमें बहुत बड़े बड़े एमिनेंट ऐसे सिंगर्स भी आए हुए थे और जिसमें कुमार सानू साहब भी वहां पर प्रेजेंट थे। लगभग 700-800 की पब्लिक थी और उसमें मुझे गाने का परफॉर्मेंस करने का मुझे मौका मिला और उसमें मैंने वो हंसीनी वाला जो गाना है किशोरदा ने गाया हुआ, वो गाना मैंने गाया था। और उस गाने में थोड़ा सा स्लाइट, उसमें कहीं मुंह बराबर अच्छी तरह से खुल नहीं रहा था, तो कुमार सानू साहब ने पीछे, स्टेज के पीछे आकर के मुझे कहा था कि क्या तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या करते हो और तुम क्या सिगरेट पीते हो। मैंने कहा नहीं, मेरा नहीं, मैं सिगरेट वगैरह नहीं पीता। तो फिर कि तुम्हारा मुंह पूरा खुलता क्यों नहीं है। तो उन्होंने अब मेरे मुंह में चार उंगलियां ऐसे डाल करके देखी, चेक करने के लिए कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ, तुम्हारा मुंह तो पूरा खुलता है, तो फिर तुम वहां पे ऐसा क्यों तुमने परफॉर्म किया। थोड़ा सा स्लाइट, मतलब 99% तक तुमने एग्जैक्टली किशोरदा की तरह ही एग्जैक्टली गाया। आंख बंद करके अगर हम सुनेंगे तो ऐसे ही लगता है कि जैसे किशोरदा ही गा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दी कि ये 100% करने के लिए जो है ना, टिप्स मतलब जो है वो तुझे देता हूं। और उन्होंने कुछ मुझे टिप्स दी थी, उस टिप्स का मैं इस्तेमाल करता हूं और लोगों में प्यार फैलाता हूं मैं।
0: वाओ, दैट वाज वन ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस दोस्तों। तो चलिए, अपने एक्सपीरियंसेस को भी जरा याद कीजिए। सभी एक्सपीरियंसेस बहुत ही एक्सेलरेटिंग होते हैं। याद कीजिए और इस गीत का आनंद उठाइए।

0: बहुत खूब, बहुत खूब। जितेंद्र सर, जब किसी गीत को आप गाने चलते हैं, जैसे आपने बताया उस स्टेज पर आपने ओ हंसनी गाया किशोर कुमार साहब का, ऋषि कपूर जी के ऊपर फिल्माया गया था और फिल्म का नाम था बदनाम आदमी, ऐसा कुछ नाम था उसका फिल्म का नाम, एनीवेज। तो किसी गाने को जब चूज करते हैं आप, ये करते हैं कि इसको गाना चाहिए, आपने वैसे पहले ही बता दिया कि आप रोमांटिक गाने ही गाते हैं, तो उन रोमांटिक गानों में भी जब आप गाना चूज करते हैं तो कैसे करते हैं, किस कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखते हैं?
1: खास करके ये मैं ध्यान ज्यादा करके रखता हूँ कि लोगों ने पहले ये गाना सुना हुआ है और देखा हुआ है, तो वो गाने की जो सिचुएशन है वो सिचुएशन को मैं उस सिचुएशन के अंदर मैं खुद मैं घुस जाता हूँ, और जब हम उसमें अमालगम हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं या इम्बाइब हो जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे में से वो एक फीलिंग, वो एक एक्सप्रेशंस, वो उस प्रकार का वॉइस कल्चर, वो इस प्रकार का जो कहें वो एक हरकत है या टेम्पो है या जो एनर्जी है वो हमारे में आ ही जाती है। तो इसीलिए उस गाने को फील करते हुए जब हम गाते हैं तो वो गले से नहीं, वो दिल से नहीं, लेकिन वो नाभि से निकल करके वो गाना हमारे गले से बाहर निकलता है और लोग एंजॉय करते हैं।
0: ये बात तो मेथड की हुई डॉक्टर साहब कि आप उस गाने को ऐसे परफॉर्म करते हैं। मेरा हाँ। मैं पूछना ये चाह रहा था कि किसी गाने को जब आप चूज करते हैं तो वो किन किन पॉइंट्स पर चूज करते हैं कि मैं इस गाने को गाऊंगा या इस गाने को नहीं गाऊंगा, वो पूछ रहा था सर मैं। हाउ डू यू चूज अ सॉन्ग टू सिंग?
1: हाँ, उसमें खास करके मैं लिरिक्स का बहुत ध्यान रखता हूँ एक तो, और दूसरा सिचुएशन के हिसाब से, मतलब मैं चूज करता हूँ कि ये सिचुएशन कैसी है, और उस सिचुएशन के हिसाब से, पब्लिक के हिसाब से भी मैं गाने चूज करता हूँ और उस तरह से परफॉर्म करता हूँ।
0: ओके, ऑलराइट। तो चलिए दोस्तों, आप सोचिए आपका मेथड क्या है किसी भी गीत को सुनने का, चूज करने का। जैसे कि दो ऑफ कोर्स आई एम नो वे वाइज टू सजेस्ट एनीथिंग फ्रॉम माय साइड इन दिस प्रोग्राम, बिकॉज ये प्रोग्राम डॉक्टर जितेंद्र सर का है, लेकिन जिस तरीके गाने मैं आई एम नॉट अ सिंगर, मैं गाना नहीं गाता, बिल्कुल भी नहीं गाता। ऑफ कोर्स कुछ कुछ कोशिश कर रहा हूँ, एक गुरु है मेरे, बहुत ही बढ़िया गुरु है, मेरे दोस्त भी हैं, एनीवेज, बट मैं चूज करता हूँ एक मोटिवेशनल, ऐसे कुछ सॉन्ग्स जिनमें कुछ मैसेज हो, ना तो दुखी हो, ना रोमांटिक हो, ना बहुत मतलब किसी भी एक भावना की तरफ बहुत ज्यादा झुके हुए सॉन्ग्स ना हो, मुझे वो पसंद आते हैं। जैसे किशोर कुमार साहब की ही आवाज में है वो, एक तो रफी साहब की आवाज है, दिए जलते हैं फूल खिलते हैं, दोस्ती के ऊपर है ये गीत, तो इस तरीके के गीत मुझे ज्यादा पसंद आते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपको किस तरीके के गीत पसंद आते हैं दोस्तों, सोचिए किस तरीके का पसंद करते हैं आप। आइए तब तक आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुने जो डॉक्टर जितेंद्र सर ने हमारे लिए स्पेशली हमारे लिए तैयार किया, आइए ना।

0: बहुत खूबसूरत, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। जब हम लोग की बातचीत शुरू हुई डॉक्टर साहब, तो हम लोग बात कर रहे थे, पहले तो स्टेज परफॉर्मेंसेस हुआ करती थी, फोन्स नहीं होते थे, ये इस तरीके के डिजिटलाइज्ड टूल्स नहीं होते थे, लेकिन आज हम चारों तरफ घिरे हुए हैं। तो किसी एक कलाकार को, मतलब सिंगर को, ये जो सोशल मीडिया अवेलेबल है हमारे पास, उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कितना इम्पोर्टेंट हो गया है आज की डेट में सिंगर्स के लिए सोशल मीडिया।
1: देखिए, एक कहावत है कि जंगल में मोर नाचा और लेकिन किसने देखा। तो जंगल में अगर मोर नाचेगा और कितना भी अगर खूबसूरत तरीके से अगर नाच ले, या कितना भी अगर देर तक नाच ले, लेकिन अगर कोई देखने वाला, कोई सराहने वाला, अगर उस कला को पहचानने वाला अगर कोई नहीं होगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आज हमारी जो सोशल मीडिया है, उस सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट टूल, ओके, टू एक्सप्रेस अवर स्किल। हमारी जो स्किल है, हमारे में जो एक हुनर है, उस हुनर को एक्सप्रेस करने का बहुत ही अच्छा मीडिया, बहुत ही अच्छा मतलब एक जरिया है। और इसमें हमेशा हमें, हम जैसे कलाकारों को इसका बहुत अच्छा उपयोग करना ही चाहिए।
0: ऑलराइट, ऑफ कोर्स, जाहिर से बात है इसके दोनों पहलू होते हैं दोस्तों, नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। तो ये हमारी समझ पर निर्भर करेगा कि हम इस टूल का किस तरीके से इस्तेमाल करें। अमेजिंग। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक और बहुत ही खूबसूरत से गीत का आनंद उठाएं और फिर वापस आएं डॉक्टर साहब के पास।